मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी पटना है। आज दिन है शुक्रवार, तिथि 8, ज्येष्ठ माह, शक संवत 1948, तदनुसार अंग्रेजी माह का 29 मई 2026। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:48 हो चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज की पहली सभा। इस सभा में आपके साथ मैं हूं जया। आप सभी का बहुत स्वागत, आप सभी को प्रणाम।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से, आइए सुनिए आज का चिंतन।
1: गांधी जी को हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया सम्मान की दृष्टि से देखती है। महात्मा गांधी को आमतौर पर बापू व राष्ट्रपिता अथवा सत्य व अहिंसा के ऐसे पुजारी व करुणा, क्षमा और शांति के परोपकार, ऐसे महामानव के रूप में जानते हैं जिनकी असाधारणता से अधिक, जिनकी असाधारणता से अभिभूत होकर महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, भविष्य की पीढ़ियों को इस बात पर विश्वास करने में बहुत मुश्किल होगी कि हाड़ मांस से बना हुआ उनके जैसा कोई व्यक्ति भी कभी धरती पर आया था। गांधी जी का मानना था कि शांति के लिए सामाजिक समानता, आर्थिक न्याय और मानवाधिकारों के साथ उसका संबंध होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार शांति को संघर्ष की अनुपस्थिति के रूप में नहीं बल्कि संघर्ष से निपटने की क्षमता के रूप में देखा जाना चाहिए। गांधी जी का मानना था कि शांति पाने के लिए लोगों के मन में और दिल में बदलाव करना जरूरी है। इसके साथ ही एक न्याय संगत सामाजिक व्यवस्था का भी होना जरूरी है। गांधी जी के मुताबिक शांति की स्थायी संस्कृति का निर्माण दुनिया के कल्याण के लिए जरूरी है। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा शांति की

0: संस्कृति को विकसित करने में अहम भूमिका निभा सकती है। गांधी जी के अनुसार शांति के लिए खंडन के बदले सामंजस्य, टकराव के बदले सहयोग और पारस्परिक विनाश के बदले सह अस्तित्व जैसे तरीके अपनाए जा सकते हैं। गांधी जी का शांति दर्शन उनके दर्शन का सबसे बुनियादी सिद्धांत अहिंसा है, जो प्रेम, जीवन और सृजन का नियम है। हिंसा या हिंसा के विपरीत जो घृणा, मृत्यु और विनाश का कारण है, गांधी जी के अनुसार अहिंसा के सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों का न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विकसित किया जाना चाहिए। यदि हम व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों से बचना चाहते हैं, यह संघर्ष से बचने का एक बहुत शक्तिशाली साधन है, क्योंकि यह सभी मनुष्यों की समानता के आंतरिक बोध से उत्पन्न होता है। पारस्परिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा को परोपकारी दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अन्याय का विरोध करने की एक शांतिपूर्ण तकनीक के रूप में इसमें एक ठोस कार्यक्रम शामिल है। पूर्ण निरस्त्रीकरण समय की मांग है, लेकिन यह तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हथियार बनाने, बेचने और खरीदने वाले लोगों के दिलो दिमाग में बदलाव न आ जाए। जन दबाव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। संगठनों को व्यक्तिगत शांतिवादियों के अलावा सरकारों या नीति निर्माताओं पर समस्याओं का हल करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके अपनाने के लिए दबाव डालना चाहिए। यह देखना बहुत ही चौंकाने वाला है कि शैक्षणिक संस्थानों और पाठ्यक्रमों में शांति अध्ययन के लिए मानवीय खोज पर कोई गंभीर और निरंतर विचार नहीं किया जाता है, जबकि हमारा विश्व परमाणु दिग्गजों और नैतिक शिशुओं से भरा हुआ है। दुनिया के प्रत्येक नागरिक को संघर्ष से बचने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि अंततः व्यक्ति स्वयं ही संघर्ष समाधान में एक दुर्गम बाधा है। प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति को इस तथ्य से अवगत कराया जाना चाहिए कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से संबंधित मुद्दे मूल रूप से प्रत्येक नागरिक के हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सांप्रदायिक दबाव, धार्मिक निष्ठा और अन्य हितों आदि से ऊपर उठने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। शांति के लिए शिक्षा की जो अवधारणा है, वह ऐसे ज्ञान, कौशल, अभिरुचि और मूल्यों का पोषण करती है जिससे शांति की संस्कृति निर्मित होती है। शांति के लिए शिक्षा समग्रता मूलक है। मानवीय मूल्यों के जिस ढांचे के भीतर बच्चों का भौतिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास होता है, शांत चित्त वाले लोग ही दूसरों के साथ शांतिपूर्ण रह सकते हैं और समाज में ऐसी संवेदनशीलता का विकास कर सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, गांधी जी का शांति संबंधी अवधारणा। वाचनकर्ता थे मनोज कुमार सिन्हा। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से, आइए सुनिए कृषि चर्चा। इस कार्यक्रम में आपको जानकारी देंगे पोषण वाटिका के लाभ।
2: किसान भाइयों नमस्कार। हमारे घरों के आसपास जो भी थोड़ी बहुत खाली जमीन उपलब्ध है, उसमें योजनाबद्ध तरीके से आप साग सब्जियां और फल उत्पादन कर सकते हैं, और इसे ही किचन गार्डन या पोषण वाटिका, गृह वाटिका हम कहते हैं। पोषण से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति जिन फलों से, जिन सब्जियों से होती है और जहाँ पर उनको हम लगाते हैं, उसे ही पोषण वाटिका का नाम देते हैं। वैसे तो संतुलित आहार के लिए प्रत्येक सामान्य व्यक्ति को कुछ हरी सब्जियां, कुछ फल और कुछ अनाज, दूध, दही का प्रयोग करना चाहिए। तो ये साग सब्जियां जो हैं और फल जो हैं, जो कि छोटे क्षेत्र में हो सकते हैं, उन्हें आप अपने पोषण वाटिका में लगा सकते हैं। पोषण वाटिका के कुछ लाभ और कुछ उद्देश्य भी होते हैं। परिवार को पोषण सुरक्षा प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। परिवार के प्रत्येक सदस्य को उनकी आवश्यकता अनुसार, पसंद, इच्छा अनुसार संतुलित भोजन इससे उपलब्ध होता है। फल और सब्जियां विटामिन ए और खनिज लवण के अच्छे स्रोत होते हैं। गृह वाटिका द्वारा हम भोजन में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं। घर के समीप की खाली पड़ी भूमि का सदुपयोग हो पाता है। घर के उपयोग से प्राप्त व्यर्थ जल

0: एवं भोजन अवशेषों का सदुपयोग हो पाता है। वर्ष भर स्वास्थ्यवर्धक गुणवत्ता युक्त सस्ते फल एवं सब्जियों की सुलभता बनी रहती है। रसायन सहित सब्जियों के उत्पादन एवं सेवन को बढ़ावा मिलता है। गृह वाटिका लगाकर महिलाएं परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में अपना योगदान दे सकती हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से स्वयं उगाई गई सब्जियां बाजार की फल और सब्जियों से अधिक स्वादिष्ट लगती हैं। अब बात आती है कि गृह वाटिका का निर्माण हम कैसे करें। तो गृह वाटिका हेतु ऐसी जगह का चयन करें जहां पर कम से कम 6 घंटे से अधिक सूर्य की रोशनी प्राप्त हो। जहां तक संभव हो गृह वाटिका का निर्माण घर के नजदीक किया जाए ताकि इसका प्रबंधन भली भांति किया जा सके। गृह वाटिका हेतु ऐसी जगह का चुनाव करें जहां पानी का स्रोत बराबर बना रहे और जहां किसी भी प्रकार छाया का पड़ाव नहीं हो, यानी कि छाया वहां पर न पड़ती हो। गृह वाटिका हेतु चयनित भूमि की मृदा जांच प्रत्येक 3 साल के अंतराल पर भी करानी चाहिए। गृह वाटिका हेतु चयनित भूमि समतल होनी चाहिए क्योंकि ढलवा होने पर पोषक तत्वों के क्षय होने की आशंका होती है। अब बात ये आती है कि इसमें किस किस तरह की सब्जियां लगा सकते हैं। तो खरीफ मौसम वाली सब्जियां जो हैं जून जुलाई के महीने में आप लगावें। इसमें भिंडी, लौकी, करेला, तोरई, बैंगन, टमाटर, ग्वार, लोबिया, मिर्च, अरबी इत्यादि है। रबी मौसम में जो सब्जियां लगाएंगे वो सितंबर अक्टूबर माह में लगाते हैं। इस समय बैंगन, सरसों, मटर, चना, प्याज, लहसुन, आलू, टमाटर, शलजम, फूलगोभी, बंद गोभी आदि सब्जियां होती हैं। गृह वाटिका हेतु जो जमीन की तैयारी होती है वो आप यदि क्षेत्र बड़ा है तो मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें, नहीं तो कुदाल या खुरपी से उसका प्रबंधन आप कर सकते हैं। कंकड़ पत्थर उसमें से हटा दें। गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट का ही प्रयोग करें। मिट्टी भुरभुरी रहती बना लें और उसमें कार्बनिक खाद और जीवांश तत्वों से भरपूर मिट्टी है उसमें ही गृह वाटिका लगाने का आप प्रयास करें और आवश्यकता अनुसार अपने क्षेत्र को छोटी छोटी क्यारियों में बांट लें। प्रत्येक क्यारियों में अलग अलग सब्जियां आप लगाएं, जैसे किसी में आपने प्याज लगाया, किसी में लहसुन लगाया, किसी में मटर लगा दिया, किसी में टमाटर लगा दिया, किसी में भिंडी, लौकी। तो इससे ये होगा कि आपको जो है हर तरह की सब्जी उपलब्ध हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि कुछ सब्जियां होती हैं जो एक साथ तैयार हो जाती हैं, जैसे कि गोभी है, तो आप एक ही दिन में पूरी क्यारी में गोभी की फसल अपनी नहीं लगावें, बल्कि 2-4 पौधे 2-3 दिनों के अंतराल पर लगावें ताकि लंबे समय तक आपको उससे गोभी की सब्जी मिलती रहे।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को ये तय करना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेल

0: और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
1: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी पटना है, आइए सुनिए कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम में हम आपको सबसे पहले सुनवा रहे हैं ये देशगान।

आकाशवाणी पटना से इस वक्त आप सुन रहे हैं वंदना कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आप सुनिए ये गीत देवी नेहा सरस्वत की आवाज में।

ये कृष्ण भजन आप सुन रहे थे देवी नेहा सरस्वत से। कार्यक्रम में अब सुनिए ये भजन विपिन सचदेवा की आवाज़ में।

0: इस भजन के साथ ही संपन्न हुआ आज का वंदना कार्यक्रम। कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी पटना से। आइए सुनिए रामचरितमानस।
1: एपिसोड 118 118।

मंडप में श्रीराम और सीता का विवाह संपन्न हो चुका है। दूल्हा दुल्हन अब एक आसन पर बैठे हैं। पुत्र के विवाह संस्कार के साथ पिता के मन में अपने वंश वृक्ष के फूलने फलने की कल्पना मूर्त रूप धारण करने लगती है। वशिष्ठ मुनि की आज्ञा पाकर राजा जनक ने अन्य कन्याओं मांडवी श्रुतकीर्ति तथा उर्मिला को मंडप में बुलवाया। कुछ ध्वज की ज्येष्ठ कन्या मांडवी, जो गुण शील सुख और शोभा की प्रतिमूर्ति थीं, पूरे विधि विधान के साथ राजकुमार भरत को ब्याही गईं। उसी प्रकार उर्मिला का ब्याह लक्ष्मण से हुआ। सुंदर नेत्रों वाली श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न की भार्या बनी। अपने चारों पुत्रों को वधुओं सहित देखकर अवध नरेश ऐसे आनंदित हो रहे हैं मानो उन्होंने यज्ञ श्रद्धा योग तथा ज्ञान इन चार राजसी क्रियाओं द्वारा अर्थ धर्म काम और मोक्ष प्राप्त कर लिया हो।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस, यह कार्यक्रम आकाशवाणी पटना से प्रसारित किया जा रहा था। अब सुनिए स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में बच्चों का टीकाकरण, ध्यान देने योग्य बातें, इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर राकेश कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार, हमारे आज के कार्यक्रम के मेहमान हैं डॉक्टर राकेश कुमार, जो NMCH के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, और ये हमें बताएंगे कि बच्चों के टीकाकरण में हम किन बातों का ध्यान रखें।
2: प्रसव हमारे यहाँ 80% प्रसव जो है संस्थानों में हो रहा है, तो बच्चे की छुट्टी से पहले जन्म पे 3 टीके लग जाने चाहिए और वहाँ पे MCP कार्ड बनता है, वो बनवा लेना चाहिए। और हमारे यहाँ ये भी प्रथा है कि पहले बच्चे जो हैं यूजुअली नानी घर होते हैं, तो कभी स्थान बदलने के बाद वो MCP कार्ड छूट जाता है, ये नहीं होना चाहिए। और बच्चे का जन्म से लेकर के 5 साल तक का टीकाकरण नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या आंगनवाड़ी केंद्र में भी होता है, ये सुनिश्चित करें कि हर बार आप अपना कार्ड ले जाएं और वहाँ सारे टीकाकरण कराएं। जन्म पे बच्चे को BCG, हेपेटाइटिस बी और पोलियो के ड्रॉप लगते हैं। फिर बच्चा जैसे ही 1.5 महीने का होता है तो उनको पेंटावैक, मतलब 5 रोग उसमें एक साथ होता है, DPT का, एक H इन्फ्लुएंजा टाइप बी जो हम बच्चों में निमोनिया, गले नाक कान का इन्फेक्शन करता है वो, और हेपेटाइटिस बी, और साथ ही साथ इंजेक्टेबल पोलियो। पोलियो पहले ओरल देते थे, अब इंजेक्शन देते हैं पोलियो का, वो लगता है। और साथ में एक रोटावायरस वैक्सीन जो दस्त का सबसे प्रमुख कारण है, उस वो दिया जाता है। और उसके बाद एक और इंजेक्शन जो लगता है वो निमोकोकल वैक्सीन, वो भी बच्चे में संक्रमण करता है इनकी। और बच्चा फिर तो 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना, आप हर बार कार्ड ले जाएं और इसको छोड़े नहीं। अगर अभिभावक ये सारे प्रक्रियाएं करते हैं तो उनको एक अच्छा अभिभावक माना जाता है। तो कोशिश ये करना है कि अपने कार्ड हमेशा साथ रखें और जो भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ जाएँ और टीके लगवाएँ। उसके बाद 9वें महीने में MR का टीका लगता है, प्लस हमारे यहाँ पर्टिकुलरली जैपनीज इंसेफ्लाइटिस का भी टीका लगता है। उसके बाद बच्चा जब

0: डेढ़ साल का होता है और 15 महीने का होता है, तो MMR और DPT का टीका रिपीट होता है, और फिर वही 5 साल में भी रिपीट होता है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि जितनी भी टीकाएं हैं ये ऐसे बीमारियों के लिए हैं जो ठीक, मतलब अगर एक बार संक्रमण हो जाए तो बच्चा गंभीर रूप से बीमार हो सकता है। तो हमें ये कोशिश करना है कि हम पूरे अच्छे तरीके से टीकाकरण कराएं। टीकाकरण कराने के दौरान बच्चे में साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जिसमें बुखार, सूजन या दर्द की संभावना होती है। तो आजकल पारासीटामोल का ड्रॉप, वो जो बहन या दीदी या सिस्टर्स जो आपको बताते हैं उसी तरीके से उसका इस्तेमाल करें। बुखार नहीं भी है लेकिन अगर बच्चा दर्द में है और दूध कम पी रहा है तब पर भी उसे दिया जा सकता है। इसके अलावा प्राइवेट में भी कुछ टीकाएं अभी मार्केट में आ रही हैं और शायद भविष्य में सरकार भी उसे लगाएंगे।
1: वो कौन कौन सी बीमारियां हैं?
0: जैसे आप देखते हैं कि बच्चे जो हैं तैयारी करने जाते हैं और वहां बाहर का दूषित खाना खाते हैं तो जॉन्डिस हो जाता है, टाइफाइड की संभावना बढ़ जाती है बाहर के खाने से, तो इसके भी टीकाकरण हैं। और साथ ही साथ एक मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस के भी टीके अवेलेबल हैं और कोशिश करना चाहिए कि वो करवा लिए जाएं।
1: जी, और डॉक्टर साहब कई बार होता है कि जिस दिन टीकाकरण की तारीख है या जिस दिन आपके आंगनबाड़ी केंद्र में टीकाकरण होना है
0: जी,
1: किसी कारण से आप उस दिन नहीं जा सके।
0: जी, कोशिश यही करनी है उस स्थिति में जब आपने अपने डोजेज मिस किए हैं तो 7 दिन के अंदर उसको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जा कर के लगवा लेना चाहिए। और मिस्ड डोजेज के भी उनके पास अपने शेड्यूल होते हैं, अगर मान लीजिए कोई जन्म पे ही नहीं लगाया तो भी वहाँ शेड्यूल बना होता है, आप वो बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन टीकाकरण छोड़ना नहीं है, ये आपको गांठ बांध लेना है,
1: हर हालत में टीकाकरण कराना
0: जी।
1: तो डॉक्टर साहब आपने हमारे सुनने वालों को बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा। इसके अंतर्गत बच्चों में टीकाकरण ध्यान देने योग्य बातें, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर राकेश कुमार। आइए अब आपको जानकारी दिए चलते हैं आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की।

अब से कुछ देर के बाद आप सुनेंगे आपका पसंदीदा कार्यक्रम हालचाल। बज़्मे कव्वाली इस कार्यक्रम का वक्त होगा सुबह 7:15 पर। शास्त्रीय संगीत आप सुन सकते हैं 7:25 पर। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण सुबह 9:10 पर किया जाएगा और फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे रसमंजरी 10:00।

सुगम संगीत का कार्यक्रम एक बार पुनः आप सुन सकते हैं सुबह 10:30 पर और 10:45 से आप फिल्म संगीत सुनेंगे। बिहार का लोक संगीत इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा दोपहर 12 बजे हेलो डॉक्टर यह कार्यक्रम प्रसारित होगा 12:30 पर। फिल्म संगीत दोपहर 1:30 पर आप सुन सकते हैं और आपके लिए विशेष रोजगार सूचना भी प्रसारित किया जाएगा दोपहर 2:10 पर।

यो वाणी इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा संध्या 5 बजे। भोजपुरी कार्यक्रम आरती सुन सकते हैं 5:30 पर, भोजपुरी बुलेटिन 6:05 पर, चौपाल आप सुनेंगे संध्या 6:30 पर और खेती गृहस्थी का प्रसारण होगा शाम 7 बजे।

आज की रात फिल्म संगीत का यह विशेष कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात्रि 10 बजे और 10:30 पर एक बार पुनः फिल्म संगीत का प्रसारण किया जाएगा।

श्रोताओं, ये संक्षिप्त जानकारी थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार, प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: संवेदनशीलतां धारयेयुः। राष्ट्रपतिः गतवासरे गंगटोक नगरे आयोजिते अलंकरण संचलने सिक्किमारक्षकदलाय प्रतिष्ठितं राष्ट्रपतिध्वजसम्मानं प्रदाय एवं उक्तवती। तया राज्ये विधिव्यवस्थायाः पालने सहैव आपत्प्रबन्धने सिक्किमारक्षकदलस्य भूमिकायाः भूरिशः प्रशंसा कृता। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् अद्य आरभ्य अस्य मासस्य एकत्रिंशत् दिनाङ्कपर्यन्तं कर्णाटक गोवा केरल राज्यानां त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति। अद्य सः कर्णाटके बेंगलुरु नगरे आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इत्येतस्य संस्थानस्य पञ्चचत्वारिंशत् वर्षपूर्त्यवसरे आयोजिते वैश्विक समारोहे सहभागं करिष्यति। तदनन्तरं सः कर्णाटकस्य दावणगेरे स्थितस्य विश्वविद्यालय बीडीटी अभियांत्रिकी महाविद्यालयस्य प्लैटिनम जुबली इति महारजत जयंत्युत्सवे अपि सहभागं करिष्यति। कर्णाटकस्य मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इत्यसौ गतवासरे लोकभवने राज्यपालस्य सचिवाय औपचारिक रूपेण स्वकीयं त्यागपत्रं समर्पितवान्। वार्ताहरान् संबोधयन् सः प्रमाणितवान् यत् त्यागपत्रं सचिवाय औपचारिक रूपेण प्रदत्तमिति। अत्रावसरे सः राज्यपालं नूतन मुख्यमन्त्रिणः पदभार ग्रहणाय आमन्त्रयितुं साग्रहं निवेदितवान्, यतोहि विधानसभायां षट्त्रिंशदधिकैकशताधिक विधायकानां समर्थनेन कांग्रेस दलस्य पूर्ण बहुमतं वर्तते। तेन सूचितं यत् कांग्रेस उच्चाधिकारिभिः तस्मै राज्यसभायाः सदस्यता प्रस्ताविता आसीत्, परञ्च सः राष्ट्रिय राजनीतौ स्वकीयाम् अरुचिं प्रकटयन् उक्तवान् यत् सम्प्रत्यसौ राज्यस्य जनानां कृते एव निरन्तरं कार्यं करिष्यति। भारतीय अर्थविभागेन अनुमितं यत् देशस्य उत्तर पश्चिमीय दिग्विभागस्य कतिपय क्षेत्रेषु अतिताप घटनायाम् अपचितिः भविष्यति। अन्ते क्रीडावार्तासु, आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य उपान्त्य चक्रीये द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन समं स्पर्धिष्यते। स्पर्धा सायं सार्धसप्तवादने आरप्स्यते इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को ये तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजाति समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी ऑफ बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लैटिनम जुबली समारोह में

0: भाग लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। श्री शाह ने कहा कि अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। दो बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा बढ़ा दी है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी पटना है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:05 हो गए हैं और इसके साथ ही वक्त हो गया है कार्यक्रम हालचाल का। कार्यक्रम के साथ हम आपसे रूबरू हैं। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं जया। आज इस कार्यक्रम में बात करेंगे सबसे पहले देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की। आज ही के दिन यानी 29 मई 1987 को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का निधन हुआ था। चौधरी चरण सिंह एक भारतीय राजनीतिज्ञ, किसान नेता, लेखक और स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। चौधरी चरण सिंह जुलाई 1989 से जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनका यह कार्यकाल बेशक बहुत ही छोटा था, लेकिन इस कार्यकाल के दौरान भी उनकी पहचान सशक्त रही। चौधरी चरण सिंह को व्यापक रूप से किसानों का चैंपियन माना जाता है, जो किसानों के कल्याण और अधिकारों की वकालत के लिए समर्पित थे। चौधरी चरण सिंह का जन्म मेरठ जिले में 23 दिसंबर 1902 को हुआ था। 1923 में उन्होंने आगरा कॉलेज से विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की और फिर 1925 में इतिहास में कला स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। 1927 में उन्होंने मेरठ कॉलेज से विधि स्नातक पूरी की। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ वे अहिंसक संघर्ष में गांधी जी का अनुसरण करते हुए कई बार जेल गए। 1930 में नमक कानूनों के उल्लंघन के लिए अंग्रेजों ने उन्हें 12 साल के लिए जेल भेजा था। नवंबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए एक साल के लिए उनको फिर से

भेजा गया। अपने जीवन काल में ज्यादातर वे कांग्रेस के सदस्य रहे, लेकिन बाद में उन्होंने लोकदल पार्टी की स्थापना की। 2024 में मरणोपरांत उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में अभी और भी बातें करेंगे, कुछ और जानकारियां आपसे साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लीजिए ये गीत।

ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म बैजू बावरा से। यह गीत रफ़ी साहब के बेहतरीन गीतों में से एक माना जाता है। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब बात कर लेते हैं भारतीय इतिहास में 29 मई क्या खास रहा। 29 मई 1981 को भारतीय फिल्म अभिनेता एजाज खान का जन्म हुआ। 1982 में भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के तमिल लेखक काबिलन मैरा मुथु का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। भारतीय फिल्म अभिनेता, रंगमंच अभिनेता और निर्देशक आनंद तिवारी का जन्म 29 मई 1983 को हुआ। भारतीय अभिनेत्री और मॉडल अनुप्रिया गोयनका का जन्म 29 मई 1987 को हुआ, जो हिंदी और तेलुगु फिल्मों में दिखाई देती हैं। भारतीय फिल्म अभिनेता और संगीतकार श्रीनाथ भासी का जन्म भी 29 मई 1988 को हुआ, जो मलयालम फिल्मों में काम करते हैं। भारतीय

टेलीविजन अभिनेत्री सुरभि ज्योति का जन्म 29 मई 1988 को हुआ, जिन्हें कुबूल है में जोया के किरदार के लिए जाना जाता है। भारतीय रंगमंच टेलीविजन और फिल्म अभिनेता पंकज कपूर का जन्म भी आज ही के दिन यानी 29 मई 1954 को हुआ। भारतीय रंगमंच टेलीविजन मराठी फिल्म और बॉलीवुड फिल्म अभिनेता विजय पाटकर का जन्म भी 29 मई को हुआ 1961 को। भारतीय रंगमंच और हिंदी फिल्म उद्योग के अग्रणी पृथ्वीराज कपूर का निधन आज ही के दिन यानी 29 मई 1971 को हुआ। श्रोताओं, पृथ्वीराज कपूर की यादगार फिल्मों में एक मुगले आजम आपको याद होगा, आइए उनको श्रद्धांजलि देते हुए ये गीत सुनते हैं।

इसी के साथ संपन्न होता है आज के हालचाल का यह कार्यक्रम। कार्यक्रम में फिर हम हाजिर होंगे अगले दिन आपके साथ और बातें करेंगे। आज यहीं पर इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। अब आप सुनेंगे बज़्मे कव्वाली।

0: याद मही गरीब खड़े मही गरीब खड़े है जा हमारे सामने एक रोज यूं भी आ जाओ
1: हमारे सामने एक रोज यूं भी आ जाओ
0: कोई हिजाब ना हो

0: ठिका ना कहा हरि गुनवा।
1: जफर हुसैन कव्वाल और साथियों से अभी आप सुन रहे हैं कव्वाली कार्यक्रम है बज़्म-ए-कव्वाली।

इसके साथ ही संपन्न हुआ कार्यक्रम बज्मे कव्वाली। कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी पटना से। आइए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सितार वादन सुनेंगे पंडित निखिल बनर्जी से।

शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे थे। इस कार्यक्रम में आपने सुना सितार वादन पंडित निखिल बनर्जी से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। कुछ ही देर बाद हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर।
1: आजकल भारत
0: आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: www.radiomirchi.in पर। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसांख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है।

0: उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
1: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वह वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृह मंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
2: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
0: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगू से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री नवीन ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भोपाल में एक्ट्रेस त्रिशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्रिशा

0: सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में त्रिशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावटगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटंस पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने सीबीएसई प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है, समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली

0: नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर। हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धरमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिव कुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है, और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Home Minister Amit Shah says Center's high-level committee on artificial demographic changes to also assess requirement of law to tackle the issue. National Security Advisor Ajit Doval calls for decisive action against terrorism, says there cannot be double standards in fight against the menace. BJP appoints party presidents for Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. Air India extends suspension of its flights to Israel till July end amid continued geopolitical uncertainties in West Asia. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Gujarat Titans in all-important qualifier 2 in New Chandigarh this evening. Union Home Minister Amit Shah has said that the Centre's high-level committee on artificial demographic changes due to illegal immigration and other unnatural causes will also assess whether a law is required to tackle the issue. Mr. Shah said the committee will examine the causes behind the artificial demographic shifts that have occurred across the nation. It will deliberate on the remedial measures required and should the enactment of any specific legislation be necessary. The Home Minister was addressing a function in Gandhinagar yesterday after inaugurating and laying foundation stone of development projects worth 340 crore rupees. He said the committee, headed by retired Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Naulekar, would submit its report within a year.
3: Removing infiltrators from the country is a commitment of our government. And for this, Prime Minister Narendra Modi has decided to form a demographic change committee. This high-powered committee will examine the reason behind the demographic changes that have taken place across the country and look into the possible solutions. It will also consider where there is a need to bring any new law regarding this issue.
2: Union Home Minister Amit Shah will visit the strategically significant and sensitive Harami Nala and Creek areas along the international border in Kutch on the second day of his Gujarat tour today. During the visit, he will review the security arrangements made by the Border Security Force and discuss border security challenges with senior officials. The Home Minister will inaugurate Border Outpost G7 and interact with BSF.

0: uncertainty for business. Dailies have paid tributes to poet Bashir Badr, who died yesterday. Bashir Badr, master Urdu poet of love and melancholy, passes away, headlines the Times of India. In the next 5 years, the earth is likely to surge again and again past the international climate threshold set as safe, according to new United Nations climate projections, reports the Statesman. And finally, in a landmark development for wildlife conservation in Himachal Pradesh, forest officials in Chamba have captured the first ever video evidence of brown bear in Siabehi Wildlife Sanctuary, reports the Tribune. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Renu. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Home Minister Amit Shah says Centre's high-level committee on artificial demographic changes to also assess requirements of law to tackle the issue. National Security Advisor Ajit Doval calls for decisive action against terrorism, says there cannot be double standards in fight against the menace. BJP appoints party presidents of Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. Air India extends suspension of its flights to Israel till July end. Amid continued geopolitical uncertainties in West Asia, and in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Gujarat Titans in all-important qualifier 2 in New Chandigarh this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashvani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मसनूई आबादियाती तब्दीलियों से मुतालिक मरकज की आला सतही कमेटी इस मामले से निमटने के लिए कानूनी जरूरत का भी जायजा लेगी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इस लानत से निमटने के सिलसिले में दोहरा मेयार नहीं हो सकता। बीजेपी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए पार्टी के सदर मुकर्रर किए हैं। मगरबी एशिया में जारी जुग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान एयर इंडिया ने जुलाई के आखिर तक इसराइल के लिए अपनी परवाजें मुअत्तल रखने में तौसी की है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम न्यू चंडीगढ़ में क्वालिफायर 2 के अहम मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मरकज की आला सतही कमेटी गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने और दीगर गैर फितरी वजूहात के सबब मसनूई आबादियाती तब्दीलियों के सिलसिले में इस बात का भी जायजा लेगी कि क्या इस मामले से निमटने के लिए कानून की जरूरत है या नहीं। जनाब शाह ने कहा कि ये कमेटी मुल्क भर में हो रही मसनूई आबादियाती तब्दीलियों की वजूहात का भी जायजा लेगी। उन्होंने कहा कि वो जरूरी इस्लाही इकदामात पर तबादला ख्याल करेगी और इस बात का पता लगाएगी कि क्या किसी मखसूस कानून की अमलदारी लाजिमी है।
3: उस पे देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारण और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
2: वजीर दाखिला कल गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने और संगे बुनियाद रखने के बाद एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। जनाब शाह ने मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हुकूमत की बांग्लादेश से दरअंदाजी के लिए नुक्ताचीनी की और दावा किया कि रियासत में असेंबली इंतखाबात के बाद सूरत हाल तब्दील हुई है।
3: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
2: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात के अपने दौरे के दूसरे दिन कच्छ में बैनुल अक्वामी सरहद से मुत्तसिल इंतहाई अहमियत के हामिल और हसास हरामी नाला और दीगर छोटे नालों के इलाकों का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वो सरहदी हिफाजती फोर्स की जानिब से किए गए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेंगे और सीनियर ओहदेदारान के साथ सरहद पर सिक्योरिटी चैलेंजों के सिलसिले में तबादला ख्याल करेंगे। वजीर दाखिला बॉर्डर आउटपोस्ट G7 का इफ्तिताह करेंगे और BSF एहलकारों के साथ बातचीत करेंगे। वो OP टावर 1170 पर कंट्रोल रूम भी जाएंगे।

0: और हरामी नाला खित्ते का कश्ती में जायजा लेंगे। बाद में दिन में जनाब शाह भुज में बीएसएफ सेक्टर हेडक्वार्टर्स में सरहद से मुतालिक मामलात पर एक आला सतही मीटिंग की सदारत करेंगे। जनाब शाह का 6 माह के अंदर ये कच्छ का दूसरा दौरा है। उन्होंने गुज़श्ता बरस नवंबर में बीएसएफ के कौमी योम तासीस की तकरीबात में शिरकत के लिए भुज का दौरा किया था। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने दहशतगर्दी के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई पर जोर दिया है और कहा है कि इससे निमटने के सिलसिले में दोहरा मेयार नहीं हो सकता। रूस में बैनुल अक्वामी सिक्योरिटी से मुतालिक एक फोरम से खिताब करते हुए जनाब डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार ममालिक को अपने इंतखाब का जायजा लेना होगा और ये फैसला करना होगा कि क्या वो दहशतगर्दी को शह देने वालों की मदद फराहम करना चाहते हैं या उससे निमटने के लिए फैसला कुन कार्रवाई करना चाहते हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में मॉस्को में भारतीय सिफारतखाने ने कहा है कि जनाब डोभाल ने मॉस्को में बैनुल अक्वामी सिक्योरिटी के पहले फोरम और सलामती से मुतालिक उमूर के लिए आला नुमाइंदों की 14वीं मीटिंग में शिरकत की। इस मीटिंग की मेजबानी रूसी फेडरेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने की थी और इसमें कसीर कुतबी दुनिया में बैनुल अक्वामी सिक्योरिटी को लाहिक चैलेंजों और खतरात पर तबादला ख्याल किया गया। बीजेपी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए पार्टी के नए सदर मुकर्रर किए हैं। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन ने मशरकी दिल्ली के रुकन पार्लियामेंट और मरकजी वजीर हर्ष मल्होत्रा को पार्टी की दिल्ली इकाई का सदर मुकर्रर किया। डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा बीजेपी की सरबराह और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब बीजेपी का नया सदर मुकर्रर किया गया है। अभिषेक देब्रोय त्रिपुरा के बीजेपी सदर होंगे। इन तकर्रियों के साथ जनाब नवीन ने मुल्की सतह के साथ साथ रियासतों में जिम्मेदारी निभाने वालों की नई टीम के इंतखाब का अमल शुरू कर दिया है। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 रोजा दौरे पर हैं। आज अपने दौरे के दूसरे दिन वो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। पहले दिन देहरादून में पार्टी दफ्तर में कौमी सदर की जेर सदारत रियासती वुजरा ग्रुप और कोर कमेटी की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में तंजीम की सतह पर तौसी, बूथ को मजबूत करने, अवाम से राबता मुहिम और आइंदा प्रोग्रामों के खाके पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बीजेपी के रियासती सदर महेंद्र भट्ट ने कहा है कि पार्टी लीडर साबिका इंतखाबात में जहां पार्टी को कम वोट मिले उन बूथ पर जाएंगे।
1: माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोर कमेटी वाला मार्ग किया, मुख्य रूप से 2027 चुनाव में बूथ प्रबंधन पे आपका मार्गदर्शन रहा। जो बूथ हम लोकसभा चुनाव में और उसके पहले विधानसभा चुनाव में जो बूथ हम जीत नहीं पाए थे उन बूथों के लिए हमने टीम बनानी है। कोर कमेटी के हमारे सभी सदस्य है दो दो दिन के प्रवास पर उस विधानसभाओं के अंदर रहेंगे जहाँ उस विधानसभा की कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में कबायली सिक्योरिटी फोरम के नुमाइंदों से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि कबायली बिरादरी के तई मजकूरा नुमाइंदों का जज्बा काबिल सताइश है। उन्होंने बताया कि मीटिंग के दौरान कबायली बिरादरियों की तरक्की और उन्हें बाइख्तियार बनाए जाने से मुतालिक मुख्तलिफ मौजूद पर बामानी तबादला ख्याल किया गया। नायब सदर जमहूरिया सी पी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे। वो आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 साल मुकम्मल होने की आलमी तकरीब में शिरकत करेंगे। बाद अजां दिन में जनाब राधाकृष्णन कर्नाटक के देवांगिरी में बीडीटी यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज की प्लेटिनम जुबली तकरीबात में शिरकत करेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। मगरबी एशिया में जारी सियासी जुग्राफियाई खैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान एयर इंडिया ने इसराइल के लिए अपनी परवाजों को मुअत्तल रखे जाने में जुलाई के आखिर तक तौसी दे दी है। इससे कबल एयरलाइंस ने तेल अबीब दिल्ली के रास्ते पर परवाजों को जून महीने के आखिर तक मुअत्तल किया था। एयर इंडिया के एक आला एहलकार ने बताया कि ऐसा खित्ते में जारी सियासी जुग्राफियाई सूरत हाल के मद्देनजर किया गया है। मगरबी एशिया जंग की वजह से एयरलाइंस को ईंधन की कीमतों में इजाफा और फजाई हदूद से मुतालिक पाबंदियों समेत मुतादिद चैलेंजों का सामना है जिसकी वजह से कार्रवाई जाती अखराजात में इजाफा हुआ है। सीबीआई ने त्रिशा शर्मा की मौत के मामले में गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और एक रिटायर्ड जिला और सेशंस जज है। पेश है हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
2: गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी कल भोपाल में हुई। इससे कबल सीबीआई की टीम ने गिरिबाला के घर की तलाशी ली थी और उनसे पूछताछ की थी जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इससे एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनकी पेशगी जमानत को मुस्तरद कर दिया था। कोर्ट ने

0: कहा कि मामले की संगीनी, सबूत और तहकीकात के मरहले को मद्देनजर रखते हुए गिरीवाला को जमानत देना मुनासिब नहीं है। त्रिशा शर्मा की मौत 12 मई की शब भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में मशकूक हालात में हुई थी। त्रिशा के ससुराल वालों का कहना है कि यह खुदकुशी का मामला है, जबकि त्रिशा के घर वालों ने उनके शौहर और ससुराल के लोगों पर कत्ल का इल्जाम लगाया है। भोपाल से अभिनव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। इन रियासतों में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस बात को यकीनी बनाने के अहदबंद हैं कि मुल्क में कोई भी गरीब कच्चे मकान में ना रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: इम्तिहानात के निकाल से मुतालिक कौमी एजेंसी NTA ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट CUET UG 2026 इम्तिहानात में शामिल होने वाली तमाम मरकजी और शरीक यूनिवर्सिटियों को इम्तिहान की नई तारीखें और एडमिट कार्ड जारी किए हैं। ये इम्तिहानात अब इस माह की 31 तारीख और आइंदा माह की 6 और 7 तारीखों को होंगे। ईद उल अजहा की वजह से कल होने वाले इम्तिहानात की नई तारीख तय की गई है। NTA ने बताया कि इतवार के रोज होने वाले इम्तिहान में शामिल होने वाले उम्मीदवार NTA की सरकारी वेबसाइट CUET.NTA.NIC.IN से अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर सकते हैं। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के मुख्तलिफ हिस्सों में आंधी और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात कौमी राजधानी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, जिसकी वजह से शदीद गर्म लहर और हब्स के हालात से राहत मिली। IMD के मुताबिक बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आज गरज चमक के साथ आंधी आने का इम्कान है, जिसकी रफ्तार 80 किलोमीटर फी घंटा तक होगी। छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल के गंगा के तराई वाले इलाकों, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह के हालात रहेंगे। केरलम में चंद इलाकों में भारी बारिश के इम्कान के मद्देनजर कुल 14 अजला में से 6 अजला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज सुबह से केरलम और लक्षद्वीप में मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन मराकज पर 5 मिलीमीटर से 15 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस दौरान जनूब मगरबी मॉनसून का सरकारी ऐलान आज या कल होने का इम्कान है। IPL क्रिकेट में आज शाम न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह बैनुलअक्वामी क्रिकेट स्टेडियम में एक अहम क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसकी फातह टीम इतवार के रोज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में IPL 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना करेगी। गुजरात टाइटंस की टीम क्वालिफायर 1 में डिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार गई थी, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर 1 में सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया था। जेम्स फोर्ड के काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में 3 मैचों पर मुश्तमिल T20 बैन अल-अक़वामी क्रिकेट सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को बहुत आसानी से 38 रन से शिकस्त देकर 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। इंग्लैंड ने टॉस जीता और भारत ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 188 रन बनाए। दूसरा T20 बैन अल-अक़वामी मैच कल भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे ब्रिस्टल में खेला जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं शगुफ्ता यास्मीन।
3: शुक्रिया नितिका। ईद उल अजहा की तातील के पेश नजर राजधानी दिल्ली से उर्दू अखबारात मंजरे आम पर नहीं आ सके, लिहाजा आज के अंग्रेजी अखबारात की कुछ अहम शह सुर्खियां इस तरह से हैं। कर्नाटक के वजीर आला की हैसियत से सिद्धारमैया के मुस्ताफी होने की खबर को आज के बेशतर अखबारात ने अपने सफाई अव्वल पर नुमाया हैसियत से जगह दी है। हिंदुस्तान टाइम्स की शह सुर्खी है, कर्नाटक में इकतदार की मुंतकली में सिद्धारमैया ने DK शिवकुमार के लिए राह हमवार की। सितंबर में भारत में होने वाली ब्रिक्स सरबरा कॉन्फ्रेंस में चीन के सदर शी जिनपिंग

की शमूलियत पर पसोपेश के दरमियान भारत और चीन ने LAC और सरहद से मुतालिक तनाज़े पर तामीरी बातचीत की। इस खबर को द एशियन एज ने अहम खबर के तौर पर शाया किया है। साहित्य अकादमी अवार्ड याफ्ता नामवर उर्दू शायर बशीर बद्र की वफात की खबर भी बेशतर अखबारात की नुमायां खबर के तौर पर मौजूद है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की छह सुर्खी है, इश्क रुमान के सरकर्दा शायर बशीर बद्र का इंतकाल। और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मसनू आबादियाती तब्दीलियों से मुतालिक मरकज की आला सतह कमेटी इस मामले से निमटने के लिए कानूनी जरूरत का भी जायजा लेगी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इस लानत से निमटने के सिलसिले में दोहरा मियार नहीं हो सकता। बीजेपी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए पार्टी के सदर मुकर्रर किए हैं। मगरबी एशिया में जारी जुग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान एयर इंडिया ने जुलाई के आखिर तक इसराइल के लिए अपनी परवाजें मुअत्तल रखने में तौसी की है। और IPL क्रिकेट में आज शाम क्वालिफायर 2 के अहम मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

undergone 9 revisions. Colleague with 903 rating. नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति

0: बढ़ती जारी रहेगी। पंचायत सचिवों ने 50 दिनों से चल रही बेमियादी हड़ताल समाप्त कर 1 जून से काम पर लौटने का किया फैसला। और पटना, गया, नालंदा, वैशाली और सीतामढ़ी समेत कई जिलों में हो रही है तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठी की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री शाह गुजरात के गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकी बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का भी आकलन करेगी।
1: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसांख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की प्रतिबद्धता दोहराई है। पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों के लिए जेल के दरवाजे हमेशा खुले हैं।
2: एक ही रास्ता है जिससे आप समृद्ध हो सकते हैं और वो है ज्ञान अर्जन करना। इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं, जो शॉर्टकट अपनाता है उसको बेउर जेल ही जाना होगा। जो अचानक अमीर बनना चाहता है वो इंटरनेट डे आपको पेपर में मिलता होगा उसके घर पर छापा पड़ा। और आगे भी मैं आश्वस्त करता हूँ बिहार की जनता को, जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके लिए बेउर जेल का ही गेट खुला है।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री राष्ट्रपति को भागलपुर के तिलकपुर गांव में स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण देंगे।
3: हाँ, महिम राष्ट्रपति जी से मिलकर उनको आग्रह करने वाला हूँ कि बिहार आप आइए। हमारे लिए गौरव की बात है कि महामहिम आदिवासी समाज से आती है और पहली बार कोई आदिवासी समाज के लोग इस देश में महामहिम राष्ट्रपति बनी। तो मैं उनसे आग्रह करने वाला हूँ कि आप चलकर बिहार की धरती पर जो तिलका मांझी यूनिवर्सिटी है वहाँ उनका एक भव्य मूर्ति लगा है उसका उद्घाटन करने का काम करें।
0: इससे पहले कल श्री चौधरी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। इस दौरान बिहार के विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में पदस्थापित बिहार कैडर के IAS और IPS अधिकारियों के साथ भी संवाद किया। उन्होंने अधिकारियों से विकसित बिहार बनाने के संकल्प में सहयोग की अपील की। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। श्री सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ हुई भेंट में विकसित बिहार और कृषि क्षेत्र के उन्नयन में युवाओं और महिला उद्यमियों की सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने के विषय पर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। पंचायत सचिवों ने 50 दिनों से चल रही बेमियादी हड़ताल समाप्त कर दी है। 1 जून से सभी पंचायत सचिव अपनी पंचायत और प्रखंड में योगदान देंगे। हालांकि पंचायत सचिवों ने स्पष्ट किया है कि वे अभिकर्ता नहीं बनेंगे। बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने बताया कि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश और पंचायती राज निदेशक नवीन कुमार सिंह के साथ अलग अलग वार्ताओं के बाद हड़ताल समाप्त करने पर सहमति बनी। उन्होंने कहा कि सरकार ने संघ की सभी 5 मांगों को मानने का भरोसा दिया है। खान एवं भूतत्व विभाग ने ओवरलोडिंग की रोकथाम के लिए प्रत्येक बालू घाट पर इलेक्ट्रॉनिक धर्म कांटा लगाना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही बंदोबस्तधारी को धर्म कांटा और विभाग द्वारा निर्धारित स्थान पर अनिवार्य रूप से CCTV लगाने के निर्देश दिए गए हैं। ये दोनों उपकरण केंद्रीय सर्वर से जुड़े होंगे जिससे विभाग केंद्रीकृत स्तर पर ओवरलोडिंग की निगरानी कर सकेगा। इस संबंध में विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।

0: विशेष निगरानी इकाई ने सरकारी ठेके में भ्रष्टाचार मामले के आरोपी ठेकेदार ऋषो श्री को गिरफ्तार कर लिया है। बाद में उसे पटना स्थित निगरानी की विशेष अदालत में पेश किया गया। कोर्ट के आदेश के बाद उसे न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार ठेकेदार पर सरकारी ठेके हासिल करने के लिए कई अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप है। लोक भवन ने मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय तथा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्ति की प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। इस संबंध में राज्यपाल सचिवालय की ओर से अलग अलग अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के चौथे चरण का विज्ञापन जल्द निकालने की मांग को लेकर छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने श्री कुमार से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों में कल अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी आयोजित होगी। यह संगोष्ठी मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण विषय पर आयोजित की जाएगी। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। पटना, गया, नालंदा, वैशाली, बक्सर और सीतामढ़ी समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। पटना और आसपास के इलाकों में दिन में ही रात जैसा नजारा हो गया। आंधी के कारण कई जगहों पर पेड़ पौधे और बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, जिससे आवागमन और बिजली आपूर्ति व्यवस्था बाधित हुई है। इधर मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है।
2: राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों मधुबनी, शिवहर एवं सीतामढ़ी जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले तीन दिनों के दौरान राज्य के अनेक भागों के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। तत्पश्चात अगले 4 दिनों में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का पूर्वानुमान है।
0: म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग कल एक दिवसीय दौरे पर बोधगया आ रहे हैं और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
3: म्यांमार के राष्ट्रपति विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा करेंगे। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्टमंडल भी मौजूद रहेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गया से धर्मवीर भारती।
0: कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में आज से 3 दिवसीय सर्वोदय संकल्प शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा तथा उनके सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाना है। सीएनजी की कीमत में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। पटना में सीएनजी की कीमत अब 2 रुपए प्रति किलो बढ़कर 92.90 रुपए प्रति किलो हो गई है। कोसी नदी के जलस्तर में हुई अचानक वृद्धि से खगड़िया जिले के कोगड़ी प्रखंड के कपसिया बिरबास पीपा पुल के दक्षिणी छोर का एक हिस्सा पानी में धंस गया। इससे खगड़िया सहित मधेपुरा, सहरसा और भागलपुर जिले से इस इलाके का संपर्क भंग हो गया है। पीपा पुल का इसी साल 28 जनवरी को उद्घाटन हुआ था।

0: पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन परिसर से टीआरआई की टीम ने एक पिकअप वैन से 7,500 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त की है। मौके से दो तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। इधर पटना के ही रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक कंटेनर से 50 लाख रुपए मूल्य की 30,000 बोतल कफ सिरप जब्त की है। इस मामले में उत्तर प्रदेश के एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पटना के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के रानीसराय में शराब बिक्री की सूचना पर छापेमारी करने कई उत्पाद विभाग की टीम पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। हमले में कई कर्मी घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। रोहतास जिले के डेहरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक पिकअप वैन से 2.5 करोड़ रुपए मूल्य के 5 क्विंटल गांजा के साथ चालक को गिरफ्तार किया है। सिवान जिले के महादेवा थाना क्षेत्र के कुशवाहा मोड़ के पास एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं समस्तीपुर जिले के हलई थाना क्षेत्र अंतर्गत चकलाल शाही चौक पर अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार दंपति और उनकी पोती की मौत हो गई। मुंगेर जिले के असरगंज थाना क्षेत्र के तरबना पोखर के पास ई रिक्शा और कार के बीच हुई टक्कर में ई रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मगध रेंज के आईजी विकास वैभव ने जहानाबाद साइबर थाने में तैनात इंस्पेक्टर पंकज कुमार को अनुसंधान में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया है। शिवहर जिले के श्यामपुर भटा थाना क्षेत्र अंतर्गत पहाड़पुर गांव में आपसी विवाद में हुई हिंसक झड़प में एक युवक की मौत हो गई। कटिहार में 4 दिवसीय बिहार राज्य अंडर 13 शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में 19 जिलों के बच्चे शामिल हो रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में होने वाले फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ेगी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, विकसित बिहार के संकल्प में सहयोग करें अफसर। दैनिक जागरण की सुर्खी है, कर्नाटक में सिद्धरमैया का इस्तीफा, डीके का रास्ता साफ। प्रभात खबर ने लिखा है, बिहार में अब लू नहीं, मॉनसून तक ठनके के आसार। दैनिक भास्कर लिखता है, नीट रीटेस्ट पेपर को ले जाने में वायुसेना की मदद लेने की तैयारी, रक्षा मंत्रालय ने दी हरी झंडी। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, सूबे के सभी प्रखंडों में बतौर मॉडल स्कूल सरस्वती विद्यानिकेतन खुलेंगे, मुख्यमंत्री। आज अखबार ने लिखा है, संविदा महिला कर्मियों को स्पेशल छुट्टी, बिहार बना देश का पहला राज्य। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। पंचायत सचिवों ने 50 दिनों से चल रही बेमियादी हड़ताल समाप्त कर 1 जून से काम पर लौटने का किया फैसला। और पटना, गया, नालंदा, वैशाली और सीतामढ़ी समेत कई जिलों में हो रही है तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: और इस गीत के बाद
2: छाया गीत
3: और इंडिया रेडियो।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से, कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम अंजुमन।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: बशीर बद्र का ये शेर के मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। उनकी ज़बान सादा मगर पूरा सर, रोज़मर्रा की बोलचाल के करीब और अलामतों से आरास्ता है। बशीर बद्र ने अपनी शायरी को फ़लसफे और जज्बात का ऐसा इम्तिज़ाज दिया है जो क़ारी को सोचने पर मजबूर करता है। आज भी उनके अशार मोहब्बत, एहतजाज और इंसानियत की तर्जमानी करते हैं, जिसकी वजह से वह अवाम और ख़ास दोनों में मकबूल थे। मुख्तसरन, बशीर बद्र की शायरी असर हाजिर की तड़प, मायूसी और उम्मीद का आईनादार हैं और रहेंगे। तो सामीन, इसी के साथ आपको अब लिए चलते हैं बातें जिनसे ज़िंदगी सवरती है के तहत। आइए अब समाअत फरमाएं कनात और शुक्रगुजारी के मौजू पर। यह मकाला पेश कर रही हैं रेशमा नाज।
1: कनात और शुक्रगुजारी एक दूसरे के बहुत करीब पाए जाते हैं। जहां इंसान कनात पसंदी अख्तियार करेगा, वहां शुक्रगुजारी भी आ जाएगी। मज़हब इस्लाम में इस बात की बार बार ताकीद की गई है कि एक इंसान को अपने हुसूल ज़िंदगी के लिए हमेशा शुक्रगुजार और कनात पसंद होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जिसमें शामिल हो गईं उसके लिए ज़िंदगी पुरसकून और आसान हो जाती हैं। आज की चकाचौंध ज़िंदगी में लोग ज़्यादा से ज़्यादा की तलाश में सरगर्दा हैं, सुबह और शाम उसी जद्दोजहद में गुजर जाती है। ऐसी सूरत हाल में कभी कभी इंसान हलाल व हराम की तमीज़ भी भूल जाता है। कुरान में हलालन तैयबन का जिक्र आया है और अपने रब का शुक्र अदा करने की हिदायत भी है। कनात के लगवी मानी किस्मत पर राजी रहना है और सूफिया की इस्तलाह में रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के ना होने पर भी राजी रहना कनात है। हज़रत मोहम्मद बिन अली तर्मजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कनात यह है कि इंसान के किस्मत में जो रिज्क लिखा है उस पर उसका नफ्स राजी रहे। अगर तंगदस्ती होने और हाजत से कम होने के बावजूद सब्र किया जाए तो उसे भी कनात कहते हैं। कनात की तफसीली तारीफ यूं है, हर वो शख्स जिसके पास माल ना हो और उसे माल की ज़रूरत हो और उसकी हालत यह हो कि माल में रग़बत की वजह से उसके नज़दीक माल का होना ना होने की निस्बत ज़्यादा पसंदीदा हो, लेकिन ये रग़बत इस हद तक ना पहुँची हो कि हुसूल माल के लिए भाग दौड़ करे, बल्कि अगर बासानी हासिल हो तो खुशी से ले ले और अगर हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़े तो छोड़ दे। इस हालत को हज़रत सैयदना साद बिन आबी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्वजल परहेज़गार, कनात पसंद और गुमनाम बंदे को पसंद फरमाता है। कुरान के मुताबिक कनात मोमिन की पहचान है। सब्र, शुक्र और परहेज़गारी कनात के जुज्व हैं। एक मोमिन हमेशा हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है। अल्लाह ने अपनी नेमत उसे जितनी मकदार में अता की है उस पर वो कायम रहता है और ज़्यादा की तवक्का नहीं रखता है। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है और जिसे चाहता है नाप कर देता है, और बहुत को तंगदस्ती, डर, भूख और कारोबार में खसारे के जरिया आजमाइश लेता है। लिहाजा एक मोमिन हर आजमाइश पर खर्रा उतरता है। हर इंसान के दिल में जलन और हसद मौजूद होता है और वो दूसरों की खुशहाली, दौलत और वसाइल को देखकर खुद भी उन वसाइल के हुसूल के लिए कोशा रहता है। ये ख्वाहिश कभी कभी गलत सूरत अख्तियार कर लेती है और वो दुनियावी आसाइश के हुसूल के लिए हर तरह के हरबे इस्तेमाल करने लगता है। उसे जायज़, नाजायज़, हलाल, हराम और सही व गलत का होश नहीं रह जाता। कुरान इंसान के उस जज्बे पर तंबीह करते हुए कहता है, और हवस मत करो।

जिस चीज में बढ़ाई दी अल्लाह ने एक को एक पर। सूरह निसा 32 नंबर। कुरान कहता है कि अल्लाह कुछ लोगों को दुनिया में ज्यादा रिस्क, माल, दौलत, जायदाद और वसाइल अता करता है, तो उसमें इसकी मसलहतें हैं। वो लोगों को माल व दौलत से आजमाता है, जिस तरह कुछ लोगों को भूख और अफलास के जरिए से आजमाता है। लिहाजा दूसरों को देख कर रौनक, दुनिया और आसाइश के हुसूल के लिए परेशान रहना हमाकत है। कुरान कहता है, तेरे रब की दी हुई रोजी बेहतर है और बहुत बाकी रहने वाली। सूरह ताहा 131। कनात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम और औलिया इकराम की मुबारक सौगात है। हर मुसलमान को चाहिए कि इस सौगात को हासिल करे, कनात से अल्लाह अज़्वजल का महबूब बने, उसकी रजा पाने, कब्र व हशर में आसानी फराहम करने और जन्नत में ले जाने वाला काम करे। किताब निजात दिलाने वाले अमाल की मालूमात सफा नंबर 77। कनात का जहन बनाने और उसे अख्तियार करने के कुछ तरीके बताए गए हैं। कनात के हुए फजाइल पर मुश्तमिल 6 रिवायत मुलाहिज़ा हैं। उस शख्स के लिए जिसे इस्लाम की तरफ हिदायत हासिल हुई, उसकी रोजी बकदरे कुफायत है और उस पर वो कनात करता है। अल्लाह अज़्वजल के नज़दीक एक पसंदीदा बंदा वो है जो अपनी रोजी पर कनात अख्तियार करे। जब उसके अज़्ज़ा हासिल हो जाएंगे तो कनात भी खुद ब खुद हासिल हो जाएगी। कनात 3 चीज़ों से मुरक्कब है, अमल, सब्र और इल्म। पहली चीज़ अमल है, यानी मईशियत में इतदाल और ख़र्च में कुफायत अख्तियार करना। जो शख्स कनात में बुजुर्गी चाहता है उसे चाहिए कि कम खर्च करे। हदीस पाक में रिशाद है, यानी तदबीर से काम लेना निस्फ़ मईशियत है। दूसरी चीज़ सब्र है कि बंदा अपने नफ्स पर सब्र करे और ख्वाहिशात को कम करे ताकि वो किसी दूसरे हाल में भी हाजत की वजह से परेशान ना हो। तीसरी चीज़ ये इल्म है कि वो इस बात को जान ले कि कनात में इज्जत है जबकि तमाम जिल्लत ही जिल्लत है, बस यूं हर्ष से जान छुड़ा ले और कनात को पाले। शुक्र की तारीफ। शुक्र के लगवी माने एहसान की शनाख्त और नेकी करना। इसी तरह दूसरों को उनकी तशवीक करने को शुक्र कहा गया है। इस्तलाह में शुक्र की तारीफ खुदा की नेमत को याद करना और उनका दिल जबान व अमल से इजहार करने को शुक्र कहा गया है। कुरान करीम में शुक्र के मुतलिक बहुत सी आयत हैं जिसमें फरमाया गया है कि जिंदगी दी ताकि शुक्र अदा करो, और कभी फरमाया कि तुम्हें आँख कान दिल दिए लेकिन फिर भी शुक्र करने वाले कम हैं। औसाफ खुदाबंदी यह है कि वो शाकिर भी है और मशकूर भी, और कई बार इंसान को हुक्म दिया कि शुक्रगुजार बने, और जो लोग शुक्र नहीं करते या कम शुक्र करते हैं उनसे नाराज़गी का इजहार भी किया और फरमाया कि शुक्र करने का फ़ायदा यह है कि तुम्हें फ़ायदा पहुँचता है। शुक्र करने वाला इंसान कभी शैतान के जाल में नहीं फंसता, और शैतान ने खुदा से कहा, मैं सबको गुमराह करूँगा और हर तरफ से इंसान के पास आऊँगा लेकिन उनमें तेरे शुक्रगुजार नहीं होंगे। हाँ, ना शुक्र इंसान ही शैतान के जाल में फंसता है, जैसा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नेमत का शुक्र करने वाले और ना शुक्रे के लिए इम्तिहान बताया था। अल्लाह ने शुक्रगुजारी को मुख्तलिफ नेमत, चाहे मादी हो या मानवी, इंसान के रूही और जिस्मी रशद के लिए करार दिया है, और ऐसा ना करने वाला इंसानियत और आदमियत का मुखालिफ है। इसलिए अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल शुक्र मफरूज, शुक्र करना वाजिब है। शुक्र की हकीकत नेमतों का इजहार करना है, और इसी तरह कुफरान नेमत इजहार ना करने में है। नेमत के इजहार से मुराद उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना और नेमत देने वाले की जबान से तारीफ करना है। रागिब अस्फहानी ने शुक्र की तारीफ में कहा है कि शुक्र इबारत है नेमतों का इजहार कुफर के मुकाबले में, इसी तरह नेमत को भूल जाना और छुपाना है। जब वो नेमत के समुद्र में चले जाएं और मादी हवाले से उन्हें कोई कमी ना हो तो उस वक्त वो कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह। उनसे कहा जाए कि ठीक है, ये भी शुक्र है, लेकिन कामिल और हकीकी शुक्र नहीं है, बल्कि ये शुक्र का एक मर्तबा है। इसीलिए तो रिवायत और आयत में शुक्र के मुरातिब बयान हुए हैं। अल्लाह कुरान में कहते हैं, बहुत कम बंदे शुक्र करते हैं, इसलिए हमेशा अपने जिस्म और सेहत के लिए भी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अल्लाह अपने बंदों को हमेशा
हमेशा आजमाता है, देखना चाहता है कि बंदा कितना शुक्र करता है। इसलिए हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा शुक्र करने का लफ्ज अपनी जबान पर कायम कर ले। इंसान के पास ये ताकत है कि वो अपने खालिक से राज व न्याज कर सकता है और गिड़गिड़ा के ये कह सकता है कि अल्लाह ताला मैंने गलत किया, तू करीम है, मुझे बख्श दे, मैंने हमेशा तेरी नेमतों की कद्र नहीं की और मैं जिन नेमतों के काबिल

0: नहीं था, लेकिन तुमने लुत्फ व करम से वो मुझे अता की। अल्लाह ताला की नेमतों को याद करना ही शुक्र है। इंसान को हमेशा अपने अल्लाह की नेमतों का शुक्र गुजार होना चाहिए। जैसा कि कुरान में भी जिक्र है, शुक्र करने वाले कभी शैतान के जाल में नहीं फंसते। इसकी अतात में शामिल है जैसे नमाज का पढ़ना, रोजा रखना और लोगों की खिदमत करना है। नाशुक्र पस्त लोग हैं और हक ये बनता है कि उनसे नेमतें सल्ब कर ली जाएं, जैसा कि कुरान ने भी उनका ठिकाना जहन्नम बताया है। क्योंकि ऐसे लोग नाशुक्र गुजार तो होते ही हैं, बल्कि आप अपने आसपास के लोगों को भी अपना साथी बना लेते हैं। बेहतरीन रास्ता शुक्र करने का यह है कि ईमान का मजबूत होना। शैतान को भी एक बहुत बड़ी रुकावट कहा गया है कि जिसकी वजह से हम शुक्र अदा नहीं करते हैं। इंसान को चाहिए कि बुराइयों से बचे और अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों में हो जाएं, ताकि नेमत का इजाफा हो और उनकी वजह से कमाल तक जा पहुंचे। ज्यादातर लोगों में देखा गया है कि अक्सर लोग जब चाहते हैं कि खुदा का शुक्र अदा करें, तो वो चाहते हुए या ना चाहते हुए बुखल से काम लेते हैं और यही उनकी जहालत की दलील है। शुक्र की मकदार औलियाए किराम अलैहिस्सलाम से सीखना चाहिए। मिसाल के तौर पर जब असीरों का काफिला करबला से चलता है, तो कोफो शाम में उन बच्चों से सवाल किए जाते हैं। इस तरह जब फातिमा जहरा रज़ियल्लाहु अन्हा से सवाल किया गया, तो जवाब में फरमाती हैं कि ऐसी हालत में भी वो अल्लाह का शुक्र करती हुई नजर आ रही हैं। हमें चाहिए कि हम भी ऐसी हस्तियों को अपने ऊपर नाफिज करें और उनकी तरह शुक्र अदा करें। हम भी कहीं अल्हम्दुलिल्लाह बारिश के कतरों के बराबर अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। शहदा के खून के बराबर अल्लाह का शुक्र, हर सांस आह के बराबर अल्लाह का शुक्र करने से अल्लाह ताला भी उसी तरह हमें सवाब अता करेंगे। शुक्र अदा करने की कैफियत और मकदार को समझना है तो अमीरुल मोमिनीन से सीखें। फरमाते हैं कि खुदाया हम्द फकत तेरे लिए है, हर उस चीज पर जो तुम चाहते हो और हर उस चीज पर जो तुमने अता की और हर उस चीज पर जिसमें तुमने आफियत बख्शी और हर उस इम्तिहान में के जिसमें तुमने मुब्तला किया। ऐसी हम्द की जिसमें तेरी रजाइयत और अफजल तरीन हम्द तेरे लिए है। हजरत अपने इस नूरानी कलाम में हमें सिखा रहे हैं कि हम जब चाहते हैं कि कहीं अल्हम्दुलिल्लाह फकत अपनी नेमतों के लिए ना हो, बल्कि दूसरों की नेमतों के लिए भी अल्लाह की तारीफ करें।
1: अभी आप समाप्त फरमा रहे थे बातें जिनसे जिंदगी सवरती है के तहत कनात और शुक्रगुजारी पेश कर रही थी। ये मकाला रेशमा नाज सामईन। आज अब हम बात करेंगे सुहैल अजीम आबादी और उनके अफसानों के बारे में। सुहैल अजीम आबादी उर्दू अदब के एक मशहूर शायर, नावल नगार, अफसाना नगार, सहाफ़ी और नक़ाद थे। उनकी पैदाइश 16 जुलाई 1911 ईस्वी को पटना ज़िले के इस्लामपुर इलाके में हुई। सुहैल अजीम आबादी का शुमार उर्दू अफसाने के उन अहम नामों में होता है जिन्होंने जनूबी हिंद के मखसूस मुआशरती और तहजीबी पस मंज़र को अपने फ़न का मौजू बनाया। उनके अफसाने जदीद उर्दू अफसानवी रिवायत में एक नुमाया मुकाम रखते हैं। उनके अफसानों का सबसे नुमाया मौजू तारीख और रवायत है। वह माजी के तहजीबी किस्सों को बड़ी महारत से अपनी कहानियों का हिस्सा बनाते हैं। ख़ास तौर पर कदीम शहर पटना की तहजीब व सकाफत, नवाबी अंदाज ज़िंदगी और रफ्ता रफ्ता माजी का हिस्सा बनती रवायत उनके अफसानों में जानदार किरदारों की सूरत में नज़र आती हैं। जदीद दौर में इंसान जिस नफ्सियाती उलझनों और दाखिली कशमकश का शिकार है, सुहैल अजीम आबादी ने उसे बड़ी गहराई से पेश किया है। उनके किरदार अक्सर अपने माजी, अपनी यादों और मौजूदा हकीकत के दरमियान उलझे होते हैं। सुहैल अजीम आबादी के अफसानवी असलोब सादा, खां, रवां और बामानी हैं। वह ज़बान की छोटी छोटी बारीकियों से काम लेते हैं। उनके फ़िक्रों में ख़ास रवानी और संगीनी है, जिसे पढ़ते हुए कारी खुद को उस मंजरनामे का हिस्सा महसूस करने लगता है। किरदारों की नफ्सियात को समझने और उनके जज्बाती सफ़र को अल्फाज देने में उन्हें ख़ास महारत हासिल है। तो सामईन,

फरिश्तों का एक इज्तहाम होता है, वहाँ फरिश्तों का एक इज्तहाम होता है, जो नक्शे पाए हबीबे खुदा पे चलते हैं, जो नक्शे पाए हबीबे खुदा पे चलते हैं, जो नक्शे

जन्नत मकाम होता है, उन्हीं का दोस्त तो जन्नत मकाम होता है। और नाते पाक का मतला हाजिर कर रहा हूँ, समात फरमाएं, तवज्जो चाहूंगा।

किस्मत से बना जिनका घर बार मदीने में। या और हजरत तकसीर समात फरमाए या

बारिश का ये मौसम आया, लेके रहमत की घटा रहमत आलम आया, लेके रहमत की घटा रहमत आलम आया। कितना ऊंचा हुआ उस दाई हलीमा का नसीब, कितना ऊंचा हुआ उस दाई हलीमा का नसीब, कितना ऊंचा हुआ उस दाई हलीमा का नसीब, कि जिनकी आगोश में एक मुहसिन आज़म आया, जिनकी आगोश में एक मुहसिन आज़म आया। कोई

यसरब पे जो एक फातह आलम आया, अर्द यसरब पे जो एक फातह आलम आया, और छट गए कुफरो जलालत के वो सारे बादल, छट गए कुफरो जलालत के वो सारे बादल, छट गए।

0: आया। और मक्ता का शेर समाप्त फरमाए, तवज्जो चाहूंगा कि पाई हर शख्स ने एक मंजिले इरफान आदिम, पाई हर शख्स ने एक मंजिले इरफान आदिम, पाई हर शख्स ने एक मंजिले इरफान आदिम, वाह क्या खत्मे रसूल रहबरे आजम आया, वाह क्या खत्मे रसूल रहबरे आजम आया, रहमत व नूर की बारिश का ये मौसम आया, लेके रहमत की घटा रहमत आलम आया।
1: अभी आप समाअत फरमा रहे थे, नादिया कलाम पेश कर रहे थे वली मोहम्मद। सामीन, आज हम बात कर रहे हैं सुहैल अज़ीम आबादी और उनके अफसानों के बारे में। सुहैल अज़ीम आबादी के अफसानों में मोहब्बत और ताल्लुक़ का अलमिया भी बार बार उठने वाला मौजू है। ये मोहब्बत सिर्फ़ आशिक व माशूक के दरमियान नहीं, बल्कि एक इंसान का अपनी ज़मीन, अपने शहर, अपनी ज़बान और अपनी सकाफत से जज्बाती लगाव भी है। उनके बहुत से किरदार बचपन की यादों, पुरानी मोहब्बतों और खोए हुए ताल्लुकात की आरजू में मुब्तला होते हैं।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमंजरी।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है, तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं। ओ, जैसे UPI से।
5: अच्छा।
4: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
5: वो क्या है मम्मी जी?
4: तुम्हारी मुँह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
5: आम भी ना मम्मी जी।
6: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
0: फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत, आप सभी को प्रणाम। इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं जया। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं फिल्म पार्टनर के इस गीत के साथ।

होगी प्यार की जीत। इस फिल्म का गीत सुनवाते हैं जसपिंदर नरूला और रूप कुमार राठौर की आवाज़ में समीर के बोल, आनंद मिलिंद का संगीत।

अब आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म मुझसे शादी करोगी का ये गीत, साजिद वाजिद का धुन और अरुण भैरव ने बोल लिखे हैं।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए फिल्म हीरो नंबर वन से साधना सरगम और विनोद राठौर की आवाज़ है समीर के बोल आनंद मिलिंद ने तर्ज बनाई है।

0: नगीना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। इस गीत के साथ ही संपन्न हुआ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमंजरी। कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी पटना से मेरे यानी जया के साथ। अब इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। थोड़ी ही देर बाद सुगम संगीत के साथ हम फिर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: और इस गीत के बाद छाया गीत।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। आइए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं वेद नारायण राय की आवाज में कुछ भजन।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में वेद नारायण राय से आपने कुछ भजन सुना। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। अगला कार्यक्रम फिल्म संगीत का इस अंतराल के बाद।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक

0: सपना तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक, हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत। आप सभी को नमस्कार। आपके साथ मैं हूं जया। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं।

एक और गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म मुगले आजम से, शकील बदायनी के बोल हैं और संगीत नौशाद का।

0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यही संपन्न हो रहा है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। कुछ ही देर बाद आप पुनः फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनेंगे।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत। आप सभी को नमस्कार। कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं जया।

अब सुनिए फिल्म हेरा फेरी का ये गीत किशोर कुमार और महेंद्र कपूर की आवाज में, इंदिवर के बोल।

रोटी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार की आवाज़ में आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की धुन थी। इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी पटना से।

लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज है। फिल्म का नाम दिल तो पागल है।

अब सुनिए कामचोर फिल्म का ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में, इंदिवर के बोल, राजेश रोशन की तर्ज।

हसन कमाल के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन, कविता कृष्णमूर्ति और सुदेश भोसले की आवाज़, फिल्म का नाम साहबजादे। सुनिए ये गीत।

अब सुनिए यशोदास की आवाज़ में फिल्म स्वामी का ये गीत, अमित खन्ना के बोल, राजेश रोशन का संगीत।

लता मंगेशकर, शमशाद बेगम और साथियों की आवाज़ में सुनिए फिल्म मुगले आजम का ये गीत। शकील बदायनी ने संगीत दिया है, क्षमा करेंगे, शकील बदायनी ने बोल लिखे हैं और नौशाद ने संगीत दिया है।

0: इसी गाने के साथ फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, आप सुन रहे हैं हमारी पहली सभा के कार्यक्रम। एक अंतराल के बाद सुनेंगे अगला कार्यक्रम।
1: और इस गीत के बाद

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 12 बज चुके हैं। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में अब सुनिए संस्कार गीत।
1: विवाह के बाद स्त्री एक नए जीवन में प्रवेश करती है, किंतु वैवाहिक जीवन की सार्थकता मातृत्व में मानी जाती है। ऐसी स्थिति में यदि कोई स्त्री मां नहीं बन पाती तो वह स्वयं को अधूरा महसूस करती है। कोई संतानहीन स्त्री गंगा में डूब जाना चाहती है, किंतु गंगा माता तो सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली हैं। वे पूछती हैं, हे सुंदरी, तुम्हें सास ननद का दुख है या तुम्हारे पति परदेश में है? किस दुख से तुम डूबना चाहती हो? सुंदरी कहती है, मुझे कोई दुख नहीं है, किंतु पुत्र न होने के कारण मेरा जीवन निरर्थक है। गंगा मैया कहती हैं, हे सुंदरी, रो मत, आंसू न बहाओ, मेरी कृपा से तुम पुत्र पाओगी।

कोई स्त्री पुत्र प्राप्ति के लिए अपने आराध्य भगवान शंकर एवं माता गौरी की आराधना करती है। पलंग पर महादेव विराजमान हैं और मचिया पर गौरी। पुत्रवती होने के लिए कोई स्त्री रविवार को छठ व्रत करना चाहती है, सूर्य की पूजा करना चाहती है और मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनसे पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना करती है। वह कुरुक्षेत्र की पवित्र मिट्टी मंगाकर उसे गंगा जल में सानकर शिवलिंग बनाएगी और कांसे की कटोरी में फल फूल रखेगी। अपने आराध्य को वह अक्षत, चंदन, बेलपत्र, धतूरे के फूल और भांग देकर प्रसन्न करेगी। प्रदोष व्रत करते हुए एक दो पक्ष ही बीते होंगे कि उस स्त्री की मनोकामना पूर्ण हो गई और उसे पुत्र होने की आशा प्रबल हो गई।

इतने दिनों का उजड़ा वन आज हरा भरा हो गया। सीता को गर्व रहा और सबके मन आनंद से भर उठे। सीता सोचती हैं, कौन बांस काटेगा, कौन मेरी खाट बुनेगा, कौन अयोध्या जाकर श्री राम को ये समाचार देगा। ऋषि लोग बांस काटकर खाट बुनेंगे, हनुमान अयोध्या जाकर श्री राम को शुभ समाचार देंगे। सीता के मन में ये इच्छा है कि वे पीली साड़ी पहन बच्चे को गोद में लेकर राम की अर्धांगिनी के रूप में उनके पार्श्व में बैठें और माता कौशल्या उनका चुमावन करें।

धारण की स्थिति में किसी भी स्त्री के मन में तरह तरह की इच्छा उठती है, कुछ विशेष खाने की, पहनने की या कहीं भ्रमण करने की। प्रस्तुत साध या दोहद गीत में किसी स्त्री को झुलनिया पहनने की साध होती है। उसका पति उसे छेड़ता हुआ कहता है, कोयल जैसी काली देह पर तुम्हें झुलनी शोभा कैसे देगी। स्त्री क्रोध करके कहती है, तुम काली पत्नी की सेज पर मत जाना, नहीं तो तुम्हारा रंग सांवला हो जाएगा। मचिया पर बैठी अपनी सास से वह कहती है कि हे सासू जी, अपने बेटे को कह दें कि मेरी सेज पर न आए, नहीं तो उनका रंग काला हो जाएगा। सास भी बहू के ही तेवर में जवाब देती है, हे बहू, अपनी मांग का सिंदूर त्याग दो, आंखों में काजल लगाना छोड़ दो, तो मैं भी बेटे को तुम्हारे पास जाने को मना कर दूंगी।

गर्भावस्था में मात्र यही परिवर्तन नहीं होता कि किसी स्त्री के मन में तरह तरह की साध उठती है, उसके शरीर की स्थिति भी बदलती रहती है। स्त्री के गर्भ धारण करते ही घर के लोग विघ्नहर्ता गणेश के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। प्रथम माह में लोग सुदिन का विचार करते हैं तो दूसरे महीने में गर्भ के लक्षण प्रकट होने लगे, तीसरे महीने में खाने पीने की रुचि नहीं रही, चौथे महीने में मुख पीला पड़ने लगा, पांचवें महीने में पांव भारी होकर डगमग पड़ने लगे तो छठे मास में शरीर में अधिक ताप का अनुभव होने लगा, सातवें महीने में रसोई में जाने की इच्छा नहीं रही, आठवें महीने में गर्भ के भार से शरीर के वस्त्र नहीं संभलते, नवी मास में स्त्री अपने पति से कहती है कि संतान के आने का समय आ गया है, वे शीघ्र ही मोहरे मंगा लें।

पुत्र जन्म का समय आ गया है। स्त्री प्रसव वेदना से व्याकुल हो रही है। चंदन की खाट बनी है और रेशम का पैताना है, उस पर वेदना से व्याकुल स्त्री लेटी है। अन्य दिन तो वह स्त्री एक ही सेज पर थी, आज अकेली सेज पर अपने स्वामी से जैसे बैर किए हुए है। वह कहती है, कच्चे बांस का खटोला बुनवाऊंगी और प्रियतम से लड़ झगड़ कर अपनी वेदना बांटूंगी। पति कहता है, हे टोला पड़ोस की माँ बहनों, आप ही मेरी प्रिया को समझाइए। पड़ोसिनी कहती हैं, तुम्हारी स्त्री उम्र की कच्ची है और गर्भ के भार से दोहरी हो रही है, इसलिए जब पुत्र हो जाए तभी उसे समझाना बुझाना होगा।

0: सुन रहे थे। इसी के साथ बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। एक अंतराल के बाद सुनेंगे अगला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए फोन इन कार्यक्रम। हेलो डॉक्टर।
1: श्रोताओं नमस्कार। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज का विषय है किडनी और पेंक्रियाज। इससे संबंधित जो बीमारी है उससे आप सवाल कर सकते हैं और आपके सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं पटना के जाने माने किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धीरज कुमार। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
2: जी नमस्ते, धन्यवाद।
1: बातचीत को आगे शुरू करेंगे इससे पहले हम अपने श्रोताओं को बता दें कि श्रोताओं हेलो डॉक्टर कार्यक्रम जिसकी रिकॉर्डिंग हम प्रत्येक बुधवार को 3:30 बजे से करते हैं और आप फ़ोन करके अपनी समस्याओं का जो भी संबंधित विषय है उससे संबंधित जो समस्या है आप जान सकते हैं और उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है एसटीडी कोड पटना का 0612 और इसका फ़ोन नंबर है 4026349 और एक और नंबर है हमारा 2222500। इसके पहले का एसटीडी कोड 0612 लगाना ना भूलें। तो श्रोताओं आप इस पर कॉल करके प्रत्येक बुधवार को अपने जो सवाल है रिकॉर्ड करा सकते हैं और जिसे आप प्रत्येक शुक्रवार को 12:30 बजे सुन सकते हैं। तो हम अपने जो है आज का विषय को शुरू करते हैं और डॉक्टर साहब आते हैं शुरुआत करते हैं इससे पहले हमारे श्रोता भी जुड़ चुके हैं तो आइए उनका हम कॉल लेते हैं और जानते हैं कि उनका क्या है। हाँ जी हेलो।
3: हेलो,
1: हाँ जी आप
3: बेगूसराय
1: जी जी
3: से लक्ष्मी यादव बोल रहे हैं।
1: जी लक्ष्मी जी
3: साहब से जानना था कि गर्म पानी पीने से किडनी को फायदा होता है या नुकसान।
1: जी जी डॉक्टर साहब
2: जी बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि गर्म पानी पीना सही है या नहीं है। तो गर्म पानी पीने से कोई भी नुकसान किसी भी अंग पे नहीं होता है, पहली बात। और पूरी तरह से पानी को गर्म करके उसको थोड़ा हल्का ठंडा करके पीने से इवन पानी की क्वालिटी जो होती है उसमें जो कीटाणु होते हैं वो भी मर जाते हैं, तो वो आपके लिए सेहतमंद है। बट बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं पीना है, उसको पानी को गर्म करके थोड़ा सुसुम सुसुम पानी जिसको आप बोलते हैं उसका सेवन करें। ठंड भी चल रहा है, ठंड के मौसम में मैं श्रोता उनको कहना चाहूँगा कि सुसुम पानी का सेवन करने से कोई भी तकलीफ ना तो किडनी को होती है ना लीवर को होती है, आपके पेट के लिए भी अच्छा होता है।
1: जी तो लक्ष्मी जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब काफ़ी श्रोता तो जुड़े हुए उनके कॉल लेते हैं। कई बार जैसे किडनी जो हमारे शरीर का काफ़ी महत्वपूर्ण अंग है इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। कई प्रकार के जो ये हैं हमारे शरीर में जैसे रक्त को फिल्टर करता है, पीएच मान वगैरह लेवल करता है, कितना महत्वपूर्ण अंग है हमारे जो शरीर का या किडनी, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: किडनी हमारे शरीर में दो किडनी होती है जो इतना ही समझिए कि 24/7
1: जी जी जी
2: हमेशा काम करते रहता है और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण काम है।
1: जी जी
2: जैसे आप यूरिन करते हैं, पेशाब करते हैं, उसका जो फॉर्मेशन है
1: जी
2: वो फिल्ट्रेशन है वो आपका किडनी करता है
1: जी जी
2: और बहुत सारे चीज़ों को ये बॉडी के अंदर कंजर्व करके रखने में भी मदद करता है। जो इलेक्ट्रोलाइट जो बोलते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रोलाइट हैं हमारे शरीर में
1: जी जी
2: जिसको
1: जी
2: किडनी बैलेंस करके हमारे शरीर में उसको बना के रखता है।
1: जी डॉक्टर साहब बात को हम आगे जारी रखेंगे, हमारे श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। जी आप हेलो।
4: हेलो,
1: हाँ जी आप अपना परिचय दें, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप,
4: हम यहाँ से मतलब गोलमा तिलकेश्वर दरभंगा जिला से बोल रहे हैं।
1: कौन बोल रहे हैं।
4: मेरा नाम अंशु कुमार हुआ।
1: जी अंशु जी आप अपना सवाल पूछे, आप डॉक्टर साहब आपके सवाल सुन रहे हैं।
4: ये हेलो फरमाइश है।
1: नहीं ये हेलो डॉक्टर है जिसमें किडनी से संबंधित अगर कोई समस्या है या पेंक्रिया से संबंधित तो आप डॉक्टर साहब से सवाल पूछ सकते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर धीरज कुमार जी।
4: हाँ मतलब मेरा सवाल है, कोई भी तरह का दिक्कत जो होता है किडनी में, जैसे वो एक किडनी खराब हो जाता है तो ये कैसे होता है, यही मेरा सवाल है।
1: ये इनका डॉक्टर साहब मिलनी है कि किडनी में जो है
2: अंशु
1: किसी
2: जी
1: को
2: अंशु जी पहली बात
4: हाँ
2: जो किडनी जो खराबी होती है ना तो ये जो इसका लक्षण आता है ये जनरली दोनों किडनी खराब होने के बाद ही दिखना शुरू होता है। और किडनी जो भी खराब हो रही है, एक किडनी हो, दो किडनी हो, उसमें बहुत सारे कारण होते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है चीनी की बीमारी, डायबिटीज जिसको बोलते हैं आप, मधुमेह,
4: हाँ
2: और दूसरी होती है बीपी की बीमारी, ब्लड प्रेशर किसी भी को अगर है तो ब्लड प्रेशर में किडनी खराब भी होता है और किडनी खराब होने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ये

0: दोनों चीजें एक दूसरे का पूरक है। तीसरी जो चीजें हैं कि बचपन में किडनी में कोई इन्फेक्शन हुआ, वो इन्फेक्शन बाद में बड़ी बड़ी बीमारी का रूप ले सकता है, और बहुत सारी दवाइयां हैं जिसके सेवन करने से भी किडनी पर असर पड़ता है और किडनी खराब हो सकती है। उसके अलावे आपका एक पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होता है, किडनी में सिस्ट का बन जाना, उसमें भी किडनी की खराबी हो सकती
1: जी,
0: है।
1: तो ये कुछ इनके कारण हैं। हमारे एक और श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं, हम ले लेते हैं इनका कॉल। डॉक्टर साहब फिर बात को जारी करेंगे। जी हेलो, हेलो
2: हेलो।
1: जी, बताएं कौन बोल रहे हैं आप, अपना परिचय दें।
2: हम सर दरभंगा जिला के धमसेन गांव से बोल रहा हूँ,
1: जी कौन बोल रहे हैं आप?
2: राजेंद्र ठाकुर
1: जी राजेंद्र जी, अपना सवाल करें, डॉक्टर
2: सर।
1: साहब आपको सुन रहे हैं। जी
2: जी
1: जी आप पूछें।
2: हाँ सर, कहे
1: जी जी
2: जो ये बार बार पेशाब आना,
1: हाँ,
2: ये भी सही लक्षण है क्या?
0: राजेंद्र जी बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। बहुत लोग ये शिकायत लेके आते हैं कि बार बार पेशाब होता है। पहली बात तो जो बार बार पेशाब होता है, इसमें किडनी की समस्या भी हो सकती है, और किडनी के नीचे एक प्रोस्टेट नाम का ऑर्गन होता है, उसके बढ़ जाने से
2: जी
0: खास करके बड़े उम्र में, उम्र जैसे 50 साल 60 साल की उम्र में लोगों को बार बार पेशाब जाने की समस्या शुरू हो जाती है, और पेशाब नहीं रुक पाता। एक बार पेशाब लग गया तो रोक नहीं पाते हैं, या करने समय उसकी धार पतली हो जाती है, ठीक है, और करने के
2: कहीं
0: बाद
2: तो
0: भी
2: नहीं
0: ऐसा,
2: होता है सर?
0: हाँ, और करने के बाद भी ऐसा लगता है कि पेशाब अच्छे से हुआ नहीं है, वो थैले में रखा हुआ है। तो ये सारी समस्या जो है, ये एक प्रोस्टेट की बीमारी है जिसको हम
2: नहीं, प्रसाद
0: लोग,
2: के बाद ऐसा हमको महसूस नहीं होता।
0: हाँ, तो बार बार पेशाब लगना, पेशाब में इन्फेक्शन भी हो सकता है आपके, जिसको यूटीआई बोलते हैं, उसमें भी बार बार पेशाब
2: सर
0: लगता
2: ये
0: है।
2: दिन में नहीं होता है, अक्सर रात में कभी कभी हो जाता है, कभी कभी।
0: अच्छा, कभी कभी हो जाता है, लेकिन तब भी मैं कहूंगा कि आप
1: एक
0: एक
1: बार जांच
0: यूरोलॉजिस्ट
1: करें।
0: से, मूत्र रोग विशेषज्ञ से अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड में जो प्रोस्टेट है उसके साइज को देख सकते हैं। उसके अलावा ब्लैडर भी कभी कभी इरिटेट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, जो ब्लैडर के इरिटेशन के कारण भी बार बार आदमी को पेशाव लग सकता है, ठीक है। तो उसमें
2: जी
0: ओवर एक्टिव ब्लैडर, उसको एक टर्म देते हैं कि ब्लैडर आपका एक्टिव हो गया है, बार बार वो पेशाव लगवा दे रहा है, तो ये सारी चीजें उसमें हो सकती है। इसका इलाज संभव है, पहली बात, ठीक है, इसका
2: जी
0: प्रॉपर
2: सर,
0: जांच करके इसका इलाज हम लोग
2: किडनी
0: करते हैं।
2: संबंधी नहीं ना कोई गड़बड़ी है
0: नहीं
2: सर?
0: नहीं नहीं किडनी, अगर बात करें किडनी के खराबी में, इस तरह का लक्षण ये देखने को नहीं मिलता है।
2: जी
1: जी
2: धन्यवाद सर,
0: धन्यवाद,
2: धन्यवाद
0: धन्यवाद, धन्यवाद।
2: सर।
1: जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब, लक्षण जैसे कई हमारे श्रोता परेशान रहते हैं कि जो किडनी है बीमार, कई बार लोग सुनने में भी आता है कि पता नहीं चल पाता है, कई बार होता है लास्ट स्टेज में पता होता है, तो शुरुआती जो लक्षण है कि कैसे पहचाने कि हमें इससे संबंधित, किडनी से संबंधित समस्या है?
0: ये किडनी के साथ सबसे बड़ी जो समस्या है, बिल्कुल सही कहा आपने, कि शुरुआती दिनों में इसके लक्षण बहुत क्लियर नहीं हो पाते हैं,
1: जी जी
0: और जो लक्षण होते हैं बड़े वेग होते हैं,
1: जी
0: वो
1: जी
0: नहीं समझ में आता है किडनी के कारण ही है।
1: जी
0: तो जैसे इसमें किडनी जब खराब होना शुरू होता है, तो इसमें बहुत सारे चीज जो शरीर में बढ़ने लगती है, इसमें यूरिया बढ़ने लगता है, क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है, जो
1: जी
0: रिपोर्ट में आके दिखता है, और ये यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने से यूरेमिक सिम्टम आता है, यूरिया
1: अच्छा
0: के बढ़ने से, जिसमें
1: जी
0: बहुत सारे सिम्टम है जैसे कि भूख कम लगना, उल्टी जैसा लगना,
1: अच्छा
0: उल्टी होते रहना,
1: जी जी
0: ठीक
1: जी
0: है, और आगे जाते जाते पैर और शरीर का फूलना शुरू हो जाना, चेहरे का सूजन, पैर का सूजन, सूजन होने लगना।
1: डॉक्टर साहब एक और कॉल ले लेते हैं फिर जारी
0: बिल्कुल
1: रखेंगे।
0: बिल्कुल
1: हाँ हेलो
2: जी, नमस्कार।
1: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं, एक बार परिचय अपना दे दें।
2: रामविलास पर
1: जी रामविलास
2: बगहा पूर्वी चंपारण से।
1: जी, रामविलास जी अपना सवाल करें।
2: जी, सीना में दाएं साइड में हल्का हल्का दर्द होता है, तो इसका कारण क्या है, और किडनी खराब होने पर उसका लक्षण क्या होता है, कुछ बताइए विस्तार पूर्वक।
1: हाँ, उस पे ही
0: जी
1: बात हो
0: जी
1: रही है,
0: बिल्कुल
1: आप
0: बिल्कुल,
1: डॉक्टर साहब को
0: आपका
1: सुनाएं।
0: पहली बात तो सीने में जो आपके राइट साइड दर्द हो रहा है, तो वो
2: जी
0: जो ऊपरी हिस्से में, सीने के निचले हिस्से में अगर मैं बात करूं, जस्ट पेट के ऊपर दर्द होता है, पेट के या बहुत
2: जी
0: ऊपर,
2: पेट के ऊपर, सीना के
0: हाँ,
2: छाती है उसके नीचे।
0: तो पेट के ऊपर, सीना के नीचे, एक तो पहली बात की गैस्ट्राइटिस में भी ऐसा हो सकता है, गैस बन गया उसके कारण अगर तनाव पड़ रहा है, वहीं गॉल ब्लैडर का भी जगह, गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन हो गया है वहां भी, उसके कारण भी वहां दर्द हो सकता है। तो सीने के लक्षण से नहीं, पेट के जो अंग हैं उसमें भी अगर कहीं दिक्कत हो रहा है, जैसे आपके गॉल ब्लैडर हो गए, पेट का गैस्ट्राइटिस हो गया, उसमें भी वहां दर्द होता है। उसके अलावा अगर निमोनिया हो गया है, ठीक है, फेफड़ा में सूजन हो गया, उसमें भी वहां दर्द हो सकता है। हार्ट की बीमारी में जनरली दर्द जो होता है वो बाएं साइड होता है, दाहिने साइड नहीं होता, ज्यादातर बाएं साइड होता है, ठीक है।
2: जी,
0: और
2: किडनी बाएं साइड होती है,
0: नहीं, हार्ट, हार्ट की बात कर
1: हार्ट
0: रहा हूं
1: की
0: मैं,
1: बात
0: हार्ट
1: कर
0: की
1: रहे
0: बात कर
1: हैं
0: रहा हूं। अब मैं किडनी की
2: जी।
0: बात
2: हाँ
0: करता
2: सर,
0: हूं, किडनी का जो खराबी का लक्षण है, उसमें जो सबसे बड़ा लक्षण है कि शरीर का फूलने लगना, शरीर फूल जाना, ठीक है,
2: जी
0: और उल्टी लगना, भूख में कमी आने लगना, आपका जो उल्टी जैसा लगना, ठीक है ना, पेट में दर्द भी हो सकता है। तो ये सारे लक्षण जो हैं ये किडनी के खराबी में मिलते हैं। अगर हम बात करें, अगर किडनी पूरी तरह से खराब हो चुकी है, तो उसमें और भी बहुत बड़े बड़े लक्षण मिल सकते हैं, फेफड़ा में पानी जमा हो जाना, सांस लेने में तकलीफ होने लगना, ठीक है, दिमाग काम नहीं
2: जी
0: करना,
2: जी

0: मिर्गी आना, ये सब भी अब किडनी के लास्ट स्टेज में देखने को मिल सकता है, जिसमें क्रिएटिनिन बहुत बढ़ गया है तो उसमें डायलिसिस की जरूरत पड़ जाती है। उसमें डायलिसिस करके हम पेशेंट को ठीक करते हैं, उसको बचाते हैं।
1: राजेंद्र जी, आपका
0: जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के
0: जी
1: लिए। डॉक्टर साहब, किडनी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका अगर ये खराब होता है तो कहीं कहीं भी कुछ भी, जैसे कि आपने बोला फेफड़ा में भी पानी जम जाता है, तो इसके क्या कारण है? किडनी मतलब किस प्रकार के इसके लक्षण
0: हाँ, तो
1: के?
0: मैंने बताया था कि किडनी का एक दो तीन इंपॉर्टेंट काम बहुत ब्रीफली जो समझने बात है कि
1: जी
0: पानी को ये संतुलित करता है,
1: जी
0: आपके
1: जी
0: शरीर के पानी को बैलेंस करता है। किडनी में खराबी आएगी तो वो पानी का बैलेंस खराब होगा, पेशाब की कमी हो जाएगी, पेशाब कम होगा और वो वाटर रिटेंशन शरीर के अंदर पानी जमाने लगेगा, तो ये अलग अलग शरीर जगह पे वो अपना इफेक्ट दिखाएगा। फेफड़ा में पानी जमाना,
1: जी
0: हार्ट के
1: जी
0: चारों तरफ पानी जमाने लगना, पेट में पानी होने लगना, ये होगा। दूसरा, ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है, तो उसमें पोटेशियम का बढ़ जाना,
1: जी
0: पोटेशियम के बढ़ने से
1: जी
0: हार्ट अटैक भी आ सकता है, हार्ट का चाल भी खराब हो सकता है, सोडियम का घट जाना, तो ये सब के कारण भी लक्षण देखने को
1: जी
0: मिलते हैं।
1: डॉक्टर साहब, एक हमारे श्रोता जुड़ रहे हैं, इनका सवाल ले लेते हैं। जी हेलो।
2: हेलो सर,
1: हाँ जी, बताएं अपना परिचय दें, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मैं जागेश्वर प्रसाद बोल रहा हूँ सर, गया जिला से। जी
1: जी जागेश्वर जी, अपना सवाल पूछे, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं।
2: सर,
1: जी पूछिए अपना सवाल।
2: पेनक्रियाज के बारे में बताइए सर। और तो आजकल बहुत से रोग हो जाते हैं, जैसे स्टोन
1: जी
2: वगैरह
1: जी
2: में दिक्कत
1: डॉक्टर साहब,
2: दिक्कत
1: पैंक्रियाज के बारे में ये पूछना चाह रहे हैं कि पैंक्रियाज भी हमारा शरीर का काफ़ी महत्वपूर्ण है, पाचन, इसके कई प्रकार के
0: बिल्कुल
1: पाचन
0: बिल्कुल,
1: ग्रह
0: बहुत
1: होने के।
0: बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। पैंक्रियाज जो आपका है ना, उसको अग्नाशय बोलते हैं। पैंक्रियाज बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, उससे बहुत सारे हार्मोन्स एंड एंजाइम्स निकलते हैं। एक हार्मोन तो बहुत ही नामी है, इंसुलिन बोलते हैं, जिसको भी पैंक्रियाज से ही निकलता
1: जी
0: है,
1: जी वहाँ
0: और बहुत
1: से।
0: सारे एंजाइम है जो आपके खाने के पाचन को हेल्प करता है। अब पैंक्रियाज में दो तरह की प्रॉब्लम होती है जो कॉमन है, एक एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, एक क्रोनिक। एक्यूट का मतलब बहुत जोर से पेट में दर्द उठता है, उसमें लक्षण नहीं है, बहुत जोर का पेट में दर्द, बाएं साइड दर्द उठेगा, पीठ की तरफ जाएगा, उल्टी हो सकता है उसके साथ, और उसमें पेशेंट बहुत असहाय महसूस करता है। और ये किस कारण से हो सकता है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस? तो फीमेल में कॉमन होता है, और ये गॉल ब्लैडर में स्टोन होने के कारण भी पैंक्रियाटाइटिस होता है, सबसे कॉमन कारण है। गॉल ब्लैडर स्टोन हुआ, स्टोन के कारण उसको पैंक्रियाटाइटिस हो जाता है। दूसरा कारण है शराब, शराब के सेवन करने से भी आपको पैंक्रियाटाइटिस का अटैक आता है, ये अटैक जो है जानलेवा भी हो जाता है। तो इस अटैक में बहुत जोर का पेट में दर्द उठे तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना, और पैंक्रियाटाइटिस जैसी बीमारी को हम लोग तुरंत पकड़ सकते हैं। कुछ ब्लड टेस्ट होता है, एमाइलेज लाइपेज देखते हैं, उससे हम लोग उसको पकड़ सकते हैं, अल्ट्रासाउंड से हम लोग उसको पकड़ सकते हैं, और उसका इलाज संभव है। अब दूसरी बात आपने पूछी थी कि स्टोन, जो किडनी में स्टोन है या रीनल स्टोन हो गया या यूरेटर में हो गया, तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो लक्षण है वो दर्द का होता है। और दर्द होता कहाँ है, तो आप नाभि के नीचे देख लो, नाभि के नीचे जाके बाएं साइड, अगर बाएं साइड स्टोन तो और बाएं चले जाओ थोड़ा पीछे, और या दाहिने साइड थोड़ा पीछे, वहां पे बहुत जोर का दर्द उठेगा, इतना जोर होगा लगेगा कि इतना जोर का दर्द कभी हुआ ही नहीं था, वो लक्षण। या फिर पेशाव करने में समस्या आएगी, अगर स्टोन नीचे फंस गया तो पेशाव भी होने में पास होने में तकलीफ होने लगेगी, तो उसमें हम लोग समझते हैं कि कहीं ना कहीं स्टोन की समस्या है जो यूरेटर या किडनी में कहीं उसको हो रखा है, तो हम लोग उसके लिए मूत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं, अल्ट्रासाउंड में
1: जी
0: वो चीज़ पता चल जाती है।
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब, स्टोन की जैसा कि इन्होंने जिक्र किया, स्टोन किडनी में बनता है, नली में भी कई बार फंस जाता है और ब्लैडर में भी हो जाता है, कारण क्या है, ये स्टोन बनते क्यों हैं?
0: ये स्टोन बनने के बहुत सारे कारण हैं, उसमें दो तीन तरह का स्टोन होता है,
1: जी
0: जैसे
1: जी
0: बात करें तो कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोन कॉमन पाया जाता है, यूरेट
2: हेलो
0: स्टोन होता है।
2: डॉक्टर,
1: हमारे श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। जी हाँ, कौन बोल रहे हैं, अपना परिचय दें।
2: मैं हनुमान नगर से मनोज सिन्हा बोल रहा हूँ।
1: जी, मनोज जी आप अपना सवाल करें, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं।
2: पहले आप दोनों को नववर्ष, अग्रिम नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, सही
0: मनोज जी
2: कहते
0: धन्यवाद,
2: हैं
0: आपको भी नववर्ष की शुभकामना।
1: जी। आप अपना
2: डॉक्टर
1: सवाल
2: साहब से
1: करें।
2: हम जानना चाहते हैं
1: जी
2: कि किडनी के प्रारंभिक लक्षण क्या है।
0: हाँ मनोज जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे किडनी में पहले मैं बताया बता रहा हूँ कि किडनी जो है दोनों खराब हो जाने के बाद जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं बहुत नॉन स्पेसिफिक होते हैं, उससे आप नहीं समझ सकते हैं। इसमें जो लक्षण है, जैसे भूख में कमी आने लगना, आपको उल्टी जैसा लगना, यूरेमिक सिम्टम बोलते हैं उसमें, यूरिया बढ़ने के कारण, यूरिया बढ़ने के लक्षण मिलना। यूरिया क्या क्या लक्षण हो सकता है भैया आपको? सर उल्टी जैसा लग रहा है, हमको उल्टी हो रहा है, ठीक है,
1: जी
0: पेट में दर्द होना, पेशाव में कमी आ जाना, जितना पहले पेशाव में कर पा रहा था उससे पेशाव में, जैसे 1 लीटर पेशाव करता था, पेशाव घट के 500 ml जैसा हो गया है, ठीक है, पेशाव में
2: अरे
0: झाग आना, शरीर फूलना, शरीर फूलना भी एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है, पैर फूलने लगना, चेहरे में सूजन आ जाना। जनरली किडनी का जो प्रॉब्लम होता है उसमें सूजन जो है चेहरे से शुरू होती है, हार्ट वाले प्रॉब्लम में सूजन जो है पैर से शुरू होती है, एक बेसिक जो हम लोग एज ए डॉक्टर और पेशेंट को भी समझाते हैं, अगर आपको समझना है तो इस तरह से हो सकता है, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है, आपका पैर भी पहले सूज सकता है किडनी की बीमारी में, तो ये सारे जो
2: डॉक्टर साहब,
0: हाँ,
2: डॉक्टर साहब हम आप क्षमा चाहते हैं,
0: हाँ
2: रात में बार बार पेशाब आता है, क्या ये भी किडनी के लक्षण है? क्या किडनी
0: रात में
2: खराब होता
0: बार
2: है?
0: बार पेशाब आता है तो

0: किडनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट किडनी के बाद वाले जो अंग होते हैं, जैसे यूरेटर हो गए, ब्लैडर हो गया, प्रोस्टेट हो गया, उनके बीमारी में ये ज्यादा चीज देखने को मिलता है। जैसे प्रोस्टेट का बढ़ जाना, यूटीआई हो जाना, यूरिन में इन्फेक्शन हो गया, ये बहुत कॉमन कारण है। बार बार पेशाब लगना, पेशाब में जलन होना, ठीक है, या प्रोस्टेट का बढ़ जाना, ये दो बड़ा कॉमन कारण है। किडनी के बीमारी में बार बार पेशाब लगना ये कॉमन नहीं है, ठीक है, ये किडनी के नीचे वाले अंग की समस्या में ज्यादा कॉमन है।
1: जी जी
0: अगर
1: मैडम,
0: किडनी का रोग किसी को हो जाए तो पहले कहाँ जाना चाहिए?
1: देख, किडनी का रोग अगर हो जाए तो एक आजकल तो बहुत अच्छा स्क्रीनिंग चलता है, लोग बहुत लोग अवेयर होते हैं, तो यूरिया क्रिएटिनिन की जांच, आरएफटी, किडनी फंक्शन टेस्ट कराते रहते हैं। उसमें अगर क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आ गया, यूरिया बढ़ा हुआ या आ गया, या यूरिन रूटीन में, कभी कभी पेशाब के जांच में भी कुछ चीज़ें ऐसी आती है जिससे हम पकड़ लेते हैं किडनी की बीमारी हो रही है, या कुछ ऐसे लक्षण हैं, डॉक्टर ने जांच कराया तो पकड़ में आ गया, तो आप किडनी के विभाग में मिल सकते हैं, किडनी के किसी भी स्पेशलिस्ट है, इवन एमडी मेडिसिन के जो डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, उनको भी बहुत अच्छा आइडिया होता है इस बीमारी का, वहाँ से आप इलाज शुरू कर सकते हैं। इसमें दवाइयाँ बहुत लिमिटेड हैं, इसमें जो लक्षण होते हैं हम लोग लक्षण का इलाज करते हैं, और साथ में किडनी के बीमारी को और बढ़ने नहीं देते, उसका इलाज करते हैं, तो बहुत ही।
0: डॉक्टर साहब,
1: हाँ,
0: हमारे एक परिचित हैं, उनका पांव इन दिनों फूल रहा है, क्या ये किडनी रोग
1: हो
0: की
1: सकता है,
0: निशानी है?
1: हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उनका उम्र देखना होगा, उनका ब्लड प्रेशर देखना होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहता हूँ आपके थ्रू, कि अगर किडनी का मरीज जो है, इसमें जनरली बीपी बढ़ने लगता है, तो अगर आपको लग रहा है कि पाँव फूल रहा है और उनका बीपी भी बढ़ा हुआ आ रहा है, तो फिर आप अलर्ट हो जाइए। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आना, सूजन होना, ये सारे के सारे लक्षण एक साथ किडनी की ओर इशारा कर सकते हैं। जी
0: उनका
1: मनोज जी,
0: ब्लड प्रेशर जरूर नाप कराएं।
1: आपका बहुत बहुत
0: और कोई
1: धन्यवाद।
0: जानकारी?
1: डॉक्टर साहब, हम लोग थे स्टोन के विषय में बात कर रहे थे, उससे पहले एक जैसा कि इनके बातचीत से हम लोगों को पता लगा कि पेशाब बार बार लगना, रात में लगना, तो क्या फ्रीक्वेंसी, मतलब कितना बार, कैसे समझे कि मुझे बार बार पेशाब आ रहा है?
0: जैसे पेशाब बार बार लगना, अगर आपने पानी बहुत पी लिया किसी दिन, उस दिन
1: जी
0: पेशाब लग रहा है, तो ये नॉर्मल है,
1: नॉर्मल
0: क्योंकि
1: हुआ,
0: आप जितना पानी पीते हैं उस हिसाब से आपका यूरिन आउटपुट बनता है।
1: बिल्कुल
0: आपने कम पानी पिया, यूरिन आउटपुट कम बनेगा। ठंड के दिनों में ऐसे भी लोग पानी पीना कम कर देते हैं, तो पेशाब का जो फ्रिक्वेंसी है थोड़ा घट
1: कम हो
0: जाता
1: जाए।
0: है,
1: जी
0: ये नॉर्मल फेनोमेना है। लेकिन अगर आप जो बोलते हैं पेशाब बार बार लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल बेसिस पर वेरी करता है। ये एक पेशेंट या एक पर्सन अपने हिसाब से वो बताता है कि 10 दिन पहले तक मुझे रात में पेशाब नहीं लगता था, अब मैं 10 दिन से रात में 2 या 3 बार पेशाब करने जा रहा हूँ। मतलब वो जो 10 दिन पहले था उसका कोई फ्रिक्वेंसी नहीं था, तो वो पैथोलॉजिकल है, बीमारी है। अब कोई बचपन से ही बोलता है कि नहीं, मैं बचपन से ही मुझे
1: जी
0: रात में
1: जी
0: दो बार पेशाब करना ही करना होता
1: वो
0: है,
1: समान
0: ये
1: है।
0: नॉर्मल है। तो एक इंडिविजुअल बेसिस पे हम इसका आकलन करते हैं
1: जी
0: और उसके बाद उसका हम लोग जाँच करते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ श्रोतागण को कि कभी भी पेशाब बार बार लग रहा है, तो इसको हमेशा डॉक्टर से मिलना है, इसमें कोताही नहीं बरतनी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी बीमारी का लक्षण भी हो सकता है, प्रोस्टेट जैसी बीमारी का इन्फेक्शन हो सकता है पेशाब में, ठीक है, और ये इन्फेक्शन सीवियर रूप भी ले सकता है। तो डायबिटीज़ में ये बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है, बार बार पेशाब लगना, प्यास ज़्यादा लगना, तो
1: जी
0: डायबिटीज़ का भी एक सिम्टम ऐसा हो सकता है जो कॉमन चीज़ है।
1: स्टोन की बात हम लोग कर रहे थे कि स्टोन कई प्रकार के होते हैं और क्यों बनते हैं, तो क्या एहतियात करना चाहिए?
0: तो स्टोन की अगर मैं बात करूं, तो स्टोन जो है उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे खाने की चीज़ें होती हैं जिनके सेवन से स्टोन बनने का जो चांस है वो बढ़ जाता है, तो हम लोग उस पर ध्यान देते हैं और उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। जैसे जो
1: जी
0: जो भी चीज़ जिसमें यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे पालक पनीर, ये सब जो सब्जियाँ हैं, या फिर आपका ओवर, बहुत लोग कोविड में ही हो रहा था, बहुत ओवर कैल्शियम का सेवन बहुत बढ़ा दिया था टैबलेट के फॉर्म में, वो
1: जी
0: भी
1: जी
0: आपके
1: जी
0: लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आप एक्सेसिव कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट भी ले रहे हैं, तो वो भी सही नहीं है, उस पर भी रोक लगाना होता है। और उसके अलावा अगर किसी को प्रॉब्लम है, कुछ पेट की बीमारियां भी ऐसी हैं जिसमें कि जो बड़ी आंत में, जो छोटी आंत का लास्ट पार्ट है, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो उसमें भी स्टोन बढ़ने की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है।
1: जी सामान्य तौर पर जो बीमारी होता है, क्रिनिक हम लोग कहते हैं, ये जो क्रॉनिक किडनी रोग है, तो ये टर्म यूज होता है, क्या इसमें कौन कौन सी बीमारी होती है या कोई विशेष ये स्पेशल?
0: क्रोनिक किडनी डिजीज की जो मैं बात करता हूँ, तो कहा जाता है कि किडनी डिजीज जो जो 3 महीने से ज़्यादा परसिस्ट करे, तो उसको
1: जी
0: हम लोग क्रोनिक किडनी डिजीज के रूप में लेबल करते हैं। तो क्रोनिक किडनी डिजीज में बहुत सारी डिजीज आती है, इसमें या तो किडनी का स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम हो,
1: जी
0: या फिर किडनी का फिल्ट्रेशन जो है, फिल्टर करने का जो ताकत है वो कम हो गया हो, जो ईजीएफआर से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसी हिसाब से हम लोग स्टेज बनाते हैं
1: जी
0: कि लेस देन 90, 90 से 60, 60 से कम, तो वो बहुत बेसिक टेस्ट है। आपका ब्लड टेस्ट जो होता है सीरम क्रिएटिनिन, उससे हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि आप किस स्टेज में आपका किडनी डैमेज होना शुरू हो गया है। और अल्ट्रासाउंड जो होता है उसमें किडनी का साइज छोटा हो जाता है, नॉर्मल किडनी का साइज मान के चलिए 9 से 11 सेंटीमीटर के बीच में अगर है, तो 9 सेंटीमीटर से कम का साइज, दोनों साइज किडनी का छोटा हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि इसको क्रोनिक किडनी डिजीज हो रखा है, या फिर कोई सिस्ट बन गया बहुत सारा किडनी में,
1: जी
0: जिसको हम
1: जी
0: लोग पोलिसिस्टिक, वो भी सीकेडी के अंदर आता है। तो कोई भी बीमारी जो 3 महीने से ज़्यादा चल रही है, क्रिएटिनिन बढ़ने लग रहा है, वो नॉर्मल नहीं आ पा रहा है, बेसलाइन टच नहीं कर रहा है फिर से, तो उसको हम लोग सीकेडी के रूप में मान के चलते हैं।
2: CKD क्रॉनिक किडनी रोग, तो क्या
0: किडनी।
2: इसका कोई भी सामान्य लक्षण जैसे हमें पकड़ लें कि
0: हाँ बिल्कुल, जो मैंने अभी जो भी लक्षण की मैंने

0: बात की, वो सीकेटी के ही लक्षण की मैं बात कर रहा था, जैसे कि इनडाइजेशन, भूख में कमी, या फिर उल्टी जैसा लगना, या फिर लेट स्टेज में पैर हाथ का फूलना, फेफड़े में पानी जम जाना, आपका खून की कमी, बहुत कॉमन है सीकेटी में, हम लोग खून की कमी बोलते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा शरीर में खुजली होना, शरीर का रंग काला पड़ने लगना, काला हो जाना, ये सब भी लक्षण आपके सीकेडी का, या इसके
1: सीकेडी
0: अलावा आपका नर्व का प्रॉब्लम होने लगना, बहुत सारे लक्षण हैं। और जनरली सीकेडी डायबिटिक लोगों में होता है, तो डायबिटीज वाले लक्षण भी साथ साथ सीकेडी वाले लक्षण के साथ साथ वो अपने
1: मिलते
0: आप को वो रिप्रेजेंट करते रहता है।
1: जी। हम लोग किडनी के पथरी की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे किडनी के पथरी जो कितने प्रकार के होते हैं टाइप आपने बताया, तो इलाज के लिए अगर हम बात करें तो क्या इसका कैसा इलाज है, और क्या ये पूरी तरह से ठीक होते हैं या फिर ऑपरेटिव या किस प्रकार के इसके इलाज
0: जो
1: संभव है?
0: जो जो इसमें एक डिपार्टमेंट होता है, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, वो इसको डील करते हैं। तो इसमें साइज अगर छोटा हो
1: जी
0: और
1: जी
0: वैसे जगह पे हो जहाँ से निकलना आसान हो, तो हम लोग पहले कंजर्वेटिव मेथड, जैसे 5 mm या 5 mm से कम के स्टोन में हम लोग कंजर्वेटिव मेथड भी रख सकते हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी दे सकते हैं जिससे कि जहाँ फंसा हुआ वहाँ का यूरेटर डायलेट हो और वो स्टोन बाहर आ जाए, खूब सारी पानी पिला सकते हैं, उससे बाहर आ जाता है। लेकिन साइज बड़ा हो और वो उसके कारण किडनी में सूजन आ रहा हो, हाइड्रो इरेट्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं,
1: जी जी
0: फंस गया स्टोन, उसके कारण किडनी में पानी जम रहा हो, तो उस केस में हम लोग अर्जेंट बेसिस पे उसको सर्जरी करते हैं।
1: जी
0: सर्जरी जो है लेजर से कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब हमारे साथ श्रोता जुड़ रहे हैं, आइए।
2: जी हेलो डॉक्टर साहब जी, मैं बरौनी से ब्रजभूषण सिंह।
1: जी ब्रजभूषण जी, आप अपना सवाल पूछे, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं।
2: ये एक लड़की है जिसे कुछ छोटा सा स्टोन किडनी में हो गया है और वो बराबर परेशान रहती है, तो डॉक्टर ने कहा कि अभी स्टोन को हम दवा से गलाते हैं, यदि वो नहीं होता है तो इसका ऑपरेशन किया जाएगा, तो इसमें क्या चांस
0: और उसकी
2: है
0: समस्या क्या है?
2: कुछ
0: दर्द होती है
2: होता
0: उसको?
2: है?
0: दर्द होती है?
2: हाँ, दर्द होता है,
0: दर्द कभी कभार होता है, डेली होता है?
2: नहीं कभी कभार
0: कभी
2: होता
0: कभार
2: है।
0: होता है। अगर उसको दर्द हो रहा है, और ये कितने दिनों से हो रहा है, कितने दिनों से ये लक्षण है?
2: ये 5-6 महीना से
0: तो
2: ऐसा
0: नहीं,
2: हो
0: तो
2: रहा है।
0: 5-6 महीने से लक्षण है, तो कोई भी दवाई ऐसी नहीं आती है ब्रजभूषण जी जो स्टोन को गला दे। पहली बात इसको समझिए आप, अगर वो 5-6 महीने से है, वो बाहर नहीं आ रहा है, तो उसको ऑपरेट कराना ही सही है। और उसके बहुत सारे साधन हैं, उसमें ओपन करने का भी जरूरत नहीं है, लेजर से भी हो जाता है। और उसको जल्दी कराएं, क्योंकि स्टोन से किडनी खराब हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपने उसको छोड़ दिया तो कम उम्र की बच्ची है, बाद में हो सके आपको किडनी की भी प्रॉब्लम शुरू हो जाए। तो आप जल्दी से जल्दी आप किसी यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, या IGMS में यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, IGMS में यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में,
2: IGMS
0: IGMS यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, यूरोलॉजी मूत्र रोग विशेषज्ञ,
2: जी।
0: हाँ,
2: अच्छा,
0: वहाँ जाके आप जल्द से जल्द संपर्क करें, जल्द से जल्द संपर्क करें, ठीक है? हाँ, ओके,
1: कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजभूषण जी आपका। जी
2: थैंक
1: डॉक्टर साहब, जैसा हम लोग अभी बात ही कर रहे थे किडनी के बारे में, तो स्टोन का साइज पे क्या इसका इलाज डिपेंड करता है?
0: हाँ, तो स्टोन की साइज अगर बड़ी है, या फिर
1: जी जी
0: ऐसे जगह पे जहाँ के कारण किडनी में सूजन आ रहा है,
1: जी
0: तो हम
1: जी
0: लोग अर्जेंट उसका इलाज करते हैं। पहली बात, अगर किडनी में सूजन आ चुका है, इन्फेक्शन हो चुका है, तो पहले हम लोग एक पाइप लगा के पहले किडनी के प्रेशर को कम करते हैं, उसके पानी को निकालते हैं।
1: जी
0: उसके बाद एक टाइम सुनिश्चित करके उसको लेजर से, लेजर की सुविधा के स्टोन को तोड़ देते हैं, और लेजर के से तोड़ के स्टोन को बाहर कर सकते हैं। उसमें कोई चीरा लगाने की जरूरत नहीं
1: कोई
0: पड़ती,
1: ओपन सर्जरी
0: ओपन
1: इसमें नहीं?
0: सर्जरी की जरूरत। पहले ये सर्जरी हमेशा ओपन होती थी, अब लेजर की सुविधा होने के कारण ओपन सर्जरी का भी इंसिडेंस कम हो रहा है, हम लोग इसको लेजर से कर सकते हैं।
1: जी इसके अलावा जैसे बच्चों की बात करें, भारत में जैसे लगभग 20% ऐसे बच्चे हैं जिनमें किडनी रोग ऐसा पाया जाता है एक रिकॉर्ड के, एक सर्वे के अनुसार, तो बच्चों में किडनी जैसे उनमें किसी प्रकार का लक्षण नहीं है लेकिन परेशान होते हैं, जांच होती है तब पता चलता है कि किडनी की बीमारी है, तो ये क्यों होता है ऐसा और क्या एहतियात रखने चाहिए छोटे बच्चों में?
0: देखिए, बच्चों में किडनी डिजीज जो है ना, इसमें बहुत बड़ा कारण है कि इन्फेक्शन होता है।
1: जी
0: इन्फेक्शन के पास पोस्ट इन्फेक्टिव, इसको PSGN बोलते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी बहुत तरह के प्रकार का होता है, एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। तो
1: जी जी
0: बच्चों में
1: जी
0: खास करके जो लक्षण है, सबसे ज़्यादा होते हैं शरीर का फूलने लगना,
1: जी
0: बच्चे का शरीर पूरा फूलना शुरू हो जाएगा, चेहरा फूल जाएगा, जब पता चला कि इसको किडनी की समस्या है। वो होता क्यों है? यूरिन से उनका प्रोटीन लॉस होने लगता है, एल्बुमिन का लॉस होने लगता है
1: जी
0: यूरिन
1: जी
0: से। क्यों होने लगता है? क्योंकि किडनी का जो फिल्टर है वो खराब हो गया है,
1: जी
0: उसमें जो ग्लोमेरुलस है उस पर डैमेज हुआ है, उसके कारण उसका प्रोटीन रिस रहा है शरीर से, तो शरीर फूलने लगता है। तो उसका एक तो उसमें दो तीन प्रकार है, मिनिमल मिनिमल चेंज डिजीज है, मेम्ब्रेनस नेप्रोपैथी है, बहुत सारे तरह का नेप्रोपैथी। उसमें हम लोग बायोप्सी करते हैं किडनी का,
1: जी
0: ठीक है? उसमें जो किडनी वाले डॉक्टर होते हैं किडनी की बायोप्सी निकालते हैं, और बायोप्सी से ये पता चलता है किस तरह का बीमारी उनके किडनी को हुआ है। और मैं बताना चाहूँगा श्रोतागण की, बच्चों में जो किडनी का जो बीमारी है, उसका इलाज बड़ों से अच्छा है, संभव है,
1: जी
0: उसमें हम लोग इलाज कर सकते हैं, और ये ठीक होने वाली बीमारी होती है बहुत बार। तो उसमें घबराना नहीं है, डॉक्टर से मिलना है। किडनी बायोप्सी के बाद उसमें बहुत सारी दवाइयाँ दी जाती है, इम्यूनोसप्रेशन

0: ड्रग के रूप में स्टेरॉयड दिया जाता है, और वो अल्टीमेटली बहुत बार किडनी की समस्या को पूरी तरह से उसी समय ठीक कर दिया जाता है।
1: नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो खासकर अधिक उम्र के बजाय कम उम्र के बच्चों
0: कम
1: में
0: उम्र के
1: होता है,
0: बच्चों में नेफ्रोटिक
1: और इसका
0: सिंड्रोम
1: पूरी
0: देखा
1: तरह
0: जाता
1: इलाज भी संभव
0: है,
1: है
0: बिल्कुल
1: जांच अगर करा लिया जाए
0: जांच
1: समय
0: करा
1: पर।
0: लिया जाए समय पे
1: जी,
0: और उसका इलाज सही से किया जाए तो इसका इलाज पूरी तरह संभव है।
1: किडनी से संबंधित बीमारी कहीं जिसे लिंग पर आधारित महिला और पुरुष की अगर बात करें तो क्या दोनों में समान या संभावनाओं किन में महिलाओं में ज़्यादा होता है? कई बार ऐसे सुनने में आता है कि किडनी से संबंधित जो है समस्याएं महिलाओं में ज़्यादा आती हैं, ऐसा कुछ?
0: ऐसा ऐसा कहना सही नहीं रहेगा। एक्चुअली किडनी की समस्या डायबिटिक लोगों में ज़्यादा आती है,
1: जी,
0: तो अगर जो डायबिटिक का जो केस है उसमें अगर 15 से 20 साल अगर कोई लोग डायबिटिक हैं तो उनमें किडनी खराब होने की समस्या जो है नॉर्मल पॉपुलेशन से बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई हाइपरटेंशन है किसी को, बीपी की बीमारी और डायबिटीज की बीमारी दोनों एक ही पर्सन को है, उसमें किडनी की खराबी की बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम लोग उसको महिला पुरुष से अगर हटा के देखें तो अगर उसको पहले से किडनी बीपी या डायबिटीज की बीमारी अगर है तो उसकी समस्या बढ़ने का डर ज़्यादा रहता है। और खास करके ऐसे लोग जो बीपी डायबिटीज के इलाज के लिए कोई जड़ी बूटी या वैसे सेवन कर रहे हैं जिनका उनको खुद आइडिया नहीं है वो क्या खा रहे हैं, अल्टीमेटली वो भी किडनी को और फर्दर डैमेज ही करता है। तो उससे भी बचना चाहिए दर्शक श्रोतागण हमें, कि हमें जान बूझ कर कोई ऐसी दवाइयां नहीं खानी चाहिए जिसके बारे में ना हमें पता है ना डॉक्टर को पता है कि वो क्या है।
1: जी, किडनी के संबंधित तो लक्षण में हम लोग कई बार देखते हैं, सुनने में भी आता है कि प्रोटीन की मात्रा पेशाब में ज़्यादा आ रही है, तो ये कैसे पहचाने और उसका इलाज के लिए तत्पर हों
0: बहुत
1: कैसे
0: बार
1: हों?
0: पेशेंट खुद कहता है कि सर सफेद होने लगा है पेशाब मेरा या फिर झाग आ रहा है, तो कभी कभी प्रोटीन बहुत आने से झाग सफेद होना
1: जी जी
0: होता है।
1: जी
0: उसमें बहुत एक सिंपल सा टेस्ट होता है यूरिन रूटीन, उसमें तुरंत हम लोग को पता चल जाता है, तुरंत जानकारी मिल जाती है, सस्ता टेस्ट है कि उसमें प्रोटीन आ रहा है। अगर प्रोटीन आ रहा है तो प्रोटीन आने से उसका लक्षण क्या होगा, सबसे पहला लक्षण होगा शरीर का फूलने लगना,
1: जी
0: शरीर में सूजन आना, क्योंकि प्रोटीन आपके फ्लूड को बैलेंस करता है, आपके वेसल्स के अंदर फ्लूड को रखता है, तो शरीर फूलने लगता है और शरीर में कमजोरी होने लगती है। तो ये लक्षण और उसका जांच ये दोनों देखना है, और हर एक किडनी की बीमारी में प्रोटीन आएगा ये जरूरी नहीं है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जैसे मैंने बताया
1: जी
0: उसमें
1: जी
0: प्रोटीन सबसे ज़्यादा आता है, फिर नेफ्राइटिक होता है कि उसमें थोड़ा कम प्रोटीन आता है, और सीकेडी में भी प्रोटीन आता है और बहुत बार प्रोटीन नहीं भी आता है। तो इसलिए ये
1: डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी जानकारी दी, कई प्रकार के जो बीमारी हैं उसके बारे में आपने बताया। एक सामान्य चलते चलते अंत में हम लोग जो हमारे श्रोता आपको सुन रहे हैं, किस प्रकार से, चूंकि किडनी है काफ़ी महत्वपूर्ण अंग है और काफ़ी सारे इनके कार्य हैं, जैसा कि रक्त को फिल्टर करते हैं, पानी को फिल्टर करते हैं, पीएच मान को नियंत्रित करते हैं, तो हमारे श्रोताओं इसको तो बिल्कुल निश्चित है कि इसको हमें तंदुरुस्त रहना चाहिए, पूरी तरह स्वस्थ रखे, इसका ख्याल रखे, तो हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस प्रकार वो इनका ख्याल रखे, पहचाने और इलाज कराए?
0: देखिए, आपका किडनी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है, और किडनी का जो सबसे इम्पोर्टेंट ख्याल है, आप पानी जो है पानी का उचित मात्रा का सेवन जरूरी है। एक फिक्स अमाउंट में पानी किडनी शरीर को मिलना चाहिए, इससे किडनी आपका सही रहता है। दूसरी बात कि आपको डायबिटीज है और बीपी की बीमारी है तो उसको कंट्रोल रखना है
1: जी
0: बहुत, या तो दवाई खा के कंट्रोल रखिए या दौड़ भाग के कंट्रोल रखिए, फूड से कंट्रोल रखिए, उसको कंट्रोल रखना है। तीसरी बात, अगर घर में किसी को किडनी की बीमारी थी तो पहले से आप सुनिश्चित कर लें कि आप समय समय पर अपना जांच कराते रहें, जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं, कहीं आपको भी वो बीमारी तो नहीं आ रही है, क्योंकि ये बीमारी फैमिली में भी हो सकती है। चौथी बात, मैं ये कहूँगा किडनी की बीमारी के जो लक्षण है शुरुआत में बहुत स्पष्ट नहीं होते हैं, पर ये धीरे धीरे अपने आप को स्पष्ट करना शुरू करते हैं। जैसे मैं कहना चाहूँगा, कोई यंग लड़का है उसको बीपी की बीमारी हो गई
1: जी
0: या फिर उसकी खून में कमी आ रही है और उसका कारण नहीं समझ में आ रहा, तो ये किडनी के बीमारी में भी ऐसा हो सकता है, खून की कमी, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, या कोई बुजुर्ग महिला है या पुरुष है जिनको बहुत दिन से डायबिटीज, उनको भी अपने किडनी की जाँच करानी चाहिए।
2: फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय दिन के 1 बजने को है, थोड़ी ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित होंगे। समाचारों के लिए कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है।

0: इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को समझौता ज्ञापन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
1: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में कल देर रात आए तूफान में निर्माणाधीन पुल के ढहने से 6 मजदूरों की मौत हो गई। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल बचाव कार्य में लगे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख दर्ज किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 69 अंक गिरकर 75,799 पर था, जबकि निफ्टी 54 अंक की गिरावट के साथ 23,854 पर कारोबार कर रहा था। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 1:05 हो रहे हैं। कार्यक्रम पराग के अंतर्गत सुनिए सूर्य कुमार उपाध्याय की कहानी बंटवारा।
3: प्रिय श्रोतागण नमस्कार। एक नई कहानी के रूप में लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है बंटवारा। यह कहानी मूलतः ग्राम अंचल के तथ्यगत परिदृश्य परिप्रेक्ष्य करुण विरह मर्म को प्रदर्शित छूती उकेरती यह कहानी आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। कहानी बंटवारा। जीवन में ज्योति भरी

सुबह एक प्रेरणा के रूप में उभरती है। सूरज की सिंदूरी छटा के संग इंसान भी अपनी आस और उम्मीद के दीप जलाता है। आज का नया सवेरा सकारात्मकता का एहसास ले आता है। होत भोर भी इंसार मानव प्रकृति गांव के गोद में लिए जिसकी सुरभित शीतल हवाएं हृदय तक लहर जाती है, जैसे कोई सातवें सुर पे चित्रजन सुना रहा हो और संपूर्ण गांव की मिट्टी कण कण आनंद का गीत गा रहा होता है। ऐसे ही रात के अंधियारे को धकेलती सुबह एक गांव में दस्तक देती है। गांव के सभी प्राणी अपने अंदाज में सुबह होने का आह्वान कर रहे हैं। गौरैया और कौवे ने अपने पंख फड़फड़ाकर छप्पर की मुंडेर से आंगन में चावल के दाना चुगने को आतुर है। मुर्गों ने इस छप्पर से उस छप्पर पर चहलकदमी कर बांग दे रहे हैं। घर आंगन ड्योढ़ी तक बच्चों के किलकारी के संग झुनझुन एवं झांझ के स्वर झंकृत हो रहे हैं। रात भर नींद से अलसाएं भूखे प्यासे बच्चों को माए चुप करने की जुगत में सरकारी स्कूल के बच्चों द्वारा उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है कि मधुर गान से भोर गुंजायमान हो रहा है। बटोही राही राम धुन में गाते फिर रहे हैं। लोग एक दूसरे का पांव छूकर बरकत और दुआ पा रहे हैं। ग्रामवासियों के कथनी एवं बोल से मानो कोई मधुर रस छड़ रहे हों। गांव घर गली मोहल्ले के बच्चे नंगे पांव अधनंगे शरीर हो धूल धूसरित कर मिट्टी में सने हुए हैं। कुछ एक किशोरी कोयल के स्वर में स्वर मिला रहे हैं। जगह जगह द्वार द्वार चौपाल जमा हुआ है। कहीं कोई नीम और बबूर के दातुन से दांत रगड़ रहा है तो कहीं कोई आपस में राग अलाप कर सुख दुख बांट रहा है। कहीं कोई उजर कुर्ता धोती पगड़ी साफ साफ मुरेट बांधे मूछ को ऐठे हाथ पे हाथ में सुटकीस और गठरी लिए प्रदेश जा रहा है तो कहीं कोई नई नवेली दुल्हन दरवाजे की ओट से घूंघट किए झांक रही है तो कहीं कुछ बेतरतीब नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। अद्भुत व सुरम है गांव के भोर का दृश्य। रमणीय भोर होने को आतुर है। उधर सूरज दादा भी पीपल के पत्तों पर से अपने लाल किरणों को गांव पर छिटकते हैं। कुछ लोग अपने गायों को चरने के खोलने हेतु नाद में आखिरी डाले हुए चारे एवं सानी झांक रहे होते हैं। आसपास के गायें गरुए रंभा रही हैं। कुछ दुधारू गाय अपनी बछड़े को दूध पिला रही होती है। गौशाला से निकले की मिट्टी की सौंधी खुशबू के साथ ओटा दलान घर आंगन चकाचक लग रहे हैं। तभी खेत पधार से खेती बाड़ी के काम कर देर रात से लौटा राम कृपा अदनींद से जगता है कि उसके बाबूजी रामाधार जो कि पेशे से मेहनती किसान सीधे सीधे सरल सहज स्वभाव के जिंदा दिल इंसान कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी संस्कार संस्कृति मान मर्यादा के पोषक एवं बट वृक्ष थे। देहगर 7 फुट शरीर हाड़ तोड़ मेहनत कश इंसान। रामधर के 2 बेटे थे। एक बड़ा जिसका नाम रामधन जो स्वभाव से मनचला जिद्दी स्वार्थी और सदैव मनमानी करने वाला चिड़चिड़ा व्यक्ति। उसके बाबूजी रामाधार जब कभी खींचते या खिसियाते तो कहते थे कि इसका नाम मैंने गलत ही रख दिया है, पता नहीं मेरे नसीब में अब भागा कहाँ रखा था, कुल का नाशक है यह। रामधन शुरू से ही अपने जीद और हट से आवार जवार के अमीर जादों के संग रह कर बिगड़ गया था। रहन सहन खान पान उठ बैठ चाल ढाल सब नफासत राजकुमार की तरह। अपनी मनमानी कर किशोरावस्था में ही बाबूजी से खेत रिहन पर रखवा कर शहर पढ़ने के नाम पर मौज मस्ती के बहाने से रहने लग गया था। पुण्य रस रंग में रामधन डूबकर उसी शहर रंगत में खुद को ढाल लिया था। उसने न तो बाबूजी रामाधार के सुख दुख खेती बाड़ी सेवा भाव से लेना देना था न छोटा भाई राम कृपा से। वह अपने ही निजी जीवन और धुन में मग्न और स्वलीन रहता था। शहर में किसी अमीरजादी घराने की लड़की जिसका नाम फुल कुमारी था से ब्याह रचा लेता है। जब यह बात गांव तक पहुंचती है तो समाज तो हंसता ही है, साथ ही में उसके बाबूजी के पानी कम हो जाने से वह चिंतित और बीमार सा रहने लगे। रामाधार का दूसरा छोटा बेटा राम कृपा आहा यथा नाम तथा काम बिल्कुल अपने पिता का पर्याय। अपने बूढ़े बाप के बुढ़ापे के सहारा गाँव के ही सरकारी स्कूल से मैट्रिक तक पढ़ाई करने के बाद अपने पिताजी के संग खेती किसानी में रम गया था। स्वभाव से नरम भोला शक्ल और अक्ल दोनों में सुंदर बाबूजी रामाधार भी उस पर गर्व करते थे और करे भी क्यों ना। एक बेटा जो अपने कुल के परंपरा और नैतिक मूलभूत गुण थाती को आदर्श मानकर कर्तव्य धर्म पथ का समुचित पालन कर रहा था रामाधार भी कहा करते थे कि चलो तुम्हारा नाम सार्थक हो गया, एक तुम ही इस डूबती नैया का खेवनहार हो। राम कृपा को उसके पिताजी आवाज लगाते हैं, राम कृपा ए बबुआ राम कृपा। तभी राम कृपा, हाँ बाबूजी आ रहा हूँ,
खाट छोड़ आनन फानन में।

राम कृपा बाबू जी की आवाज़ सुने दौड़े दौड़े आता है, जैसे एक शिशु अपनी माँ की आवाज़ सुनते ही दौड़े चला आता है। बिना मुंह हाथ धोए कुल्ला उल्ला किए जैसे रात को आकर सोया, उसी अवस्था में वेशभूषा आ चिथड़े मैले कुचैले बनियान पहने राम कृपा शांत चित्त स्वर में हामी भरता है। हाँ बाबूजी कहिए, आ गया मैं। बचवा राम कृपा, आषाढ़ तो जेठ की तरह बीत ही गया, देखो सावन कपार पर है। पता ना इंद्रदेव कब सहाय होंगे, या होंगे भी कौन जानता है। देख बबुआ, अभी अभी खलिहान से लौट रहा था तो राम बचना बोला है कि मलिकार नहर आहरा में पानी भरल आ रहा है। राम कृपा जा आहरा वाला 10 कठवा चास जोताओ। दोनों बैल के रात में सानी पानी किए थे ना। जी बाबूजी, रात में दोनों के नाद भर सानी किए थे। रामाधार, ठीक है जाओ जल्दी। ख्वाहिशों और जिम्मेदारियों के कंधों पर पालों को रखते हुए बैलों को पुचकारते हुए दोनों बैलों की पूंछ ऐठ दोनों की चाल तेज कर खेत की ओर झूमता हुआ राम कृपा चल देता है। हालातों को सहते समय के थपेड़ खाते वक्त की कसौटी पर पक राम कृपा दिन भर चिलचिल करती धूप में बिना अन्न जल के हल जोत कर वापस घर को लौटता है। उसके बाबूजी कहते हैं, राम कृपा बचवा इतनी देर क्यों हुई? क्या बताऊं बाबूजी, खेत का हाल, जगह जगह दरार फट गए थे। रामाधार कहते हैं, उफ कुछ चना चबेना लेकर गया था ना? तुम्हारी अम्मा फजीरे से हमको कोसे जा रही हैं कि ठीक से सोया भी नहीं था, होत फजीरे बचवा के मोरकोलों के बैल सा काम पर ना दिए। बड़का को तो मतलब है नहीं, कौन जिए कौन मरे। अब यह भी हाथ पैर है तो इसके भी स्थिर तनिक चैन से भी नहीं रहने देते। बबुआ राम कृपा जाओ, जाकर गर्मा गर्म अम्मा ने मान भात जेठुआ बैगन के चोखा तिलौरी चरौरी या बगीचे वाले पेड़ से कटहर लाए थे उसका अचार खा लो जाओ। और हाँ, तनिक विश्राम कर लेना। अब क्या करो बबुआ राम कृपा, कौन बाप चाहेगा कि बाप बैठे और बेटा खटते रहे? अब तो अवस्था नहीं रही ना बाबू, शरीर दिन ब दिन शिथिल होते जा रहा है, अब देह से पहले जैसा काम नहीं बनता। 10 चिंता फिकिर 10 जंजाल सर पर, अब किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। एक तुम ही असमर्थ बुजुर्ग माँ बाप का सहारा हो, एक तुम पर ही उम्मीद है। यह कहते हुए रामाधार की आंख सावन भादो हो जाता है। राम कृपा, अरे बाबूजी आप ये क्या कर रहे हैं? आपने जो मुझे यह शरीर प्रदान किया है ये किस काम आएगा? आपने जो संस्कार आचार विचार दिए हैं ये सब मेरे लिए आत्मबल और हौसला से कम है। मुझे पाप लगेगा बाबूजी, आप आंसू न बहाइए, मेरे जिंदा रहते आपको कैसी तकलीफ। हाँ रामाधार, क्या करें बेटा, खेती किसानी ही हमारी रोजी रोटी है, जीने का आधार है। तुम अकेला इतना करते हो ये भला क्या कम है? रामाधार दलान के फर्श पर लेटे हुए है और उनके पैरहने राम कृपा उनका पांव दबा रहा था कि वहां अम्मा आती है और वहीं बैठ जाती है। अम्मा कहती हैं, चलो बचवा 2 से 3 भला। रामाधार राम कृपा से कहते हैं, राम कृपा जी बाबूजी, देखो बेटा तुम्हारी अम्मा और मेरे मन में बहुत दिनों से एक विचार है, एक इच्छा थी। जी बाबूजी कहिए। राम कृपा, हम दोनों प्राणी यही चाह रहे थे कि अपने जिंदगी में तुम्हारी घर गृहस्थी बसा देख। देखो बचवा, तुम विवाह के योग्य हो गए हो, तुम्हारी सेवा करने वाली भी कोई सुंदर सुशील बहुरिया मिल जाती तो हमारा जीवन सफल और चोला शांत हो जाता। राम कृपा विवाह की बात सुनकर मन को महसूसते हुए लाज भरे स्वर में बोलता है, ठीक है बाबूजी, आप दोनों को जो उचित लगे। अम्मा कहती है, हाँ बचवा, अपने सुखदेव पंडित जी एक सुंदर सुशील गुणवती कन्या के रिश्ते लेके कुसुमपुर से आए थे, हमने तो सिर हिलाकर सीधा हामी भर दी। हाँ देख राम कृपा, बड़का तो असरा पे पानी फेर ही दिया और खुद ही शहर में न जाने किस करमजली को लुगरी बना ही लिया। एक तुम पर आस है, क्या तुम भी चाहते हो कि बुढ़ापे में अम्मा तेरी हाथ जलाए? राम कृपा कहता है, नहीं अम्मा, ऐसा क्यों बोल रही हो? कुछ दिनों बाद लगन दिन वार देखकर राम कृपा की शादी ठीक कर दी जाती है। रामाधार कहते हैं, अभी तनिक आस थी कि रामधन शादी में आएगा तो राम कृपा की शादी में पैसे रुपए से न तो कम से कम देह से तो मेहनत करेगा, परंतु रामाधार द्वारा भेजे गए संदेश पाकर वाणी से इनकार कर देता है। रामधन चिट्ठी में लिखता है कि मेरी पत्नी फुलकुमारी गांव में सरवाइव नहीं कर पाएगी, वहां गांव गवई के कल्चर रीति रिवाज इसे पसंद नहीं। यह संदेश पढ़ व सुन सबका हृदय द्रवित और क्लेशित हो उठता है। खैर राम कृपा की शादी बहुत धूमधाम खुशी खुशी शुभ मुहूर्त में संपन्न होती है। पिता रामाधार ने उसकी शादी में एक कसर एक कमी नहीं छोड़ी।
जीवन भर की एक

0: एक पाई जमा पूंजी खर्च कर डाली। ब्याह उपरांत घर आई कलावती के रूप में बहू को पाकर अम्मा फूले नहीं समाती। सुंदर सुशील नाक मुंह सीरत सूरत को देख परख अम्मा अगल बगल लाज पड़ोस में बड़ाई करती थकती नहीं थी। अब नई नवेली बहुरिया अम्मा को तेल पानी भी कर दिया करती थी और समय से चूल्हा चौकी के बाद खाना भी परोस दिया करती थी। राम कृपा भी बहुत खुश था। देखते देखते शादी के 7 साल बीत गए। फिर राम कृपा पर वाकई राम की कृपा हुई। लीलावती ने एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। ये खुशी की लहर घर आंगन से फैलते फैलते शहर रामधन के परिवार तक पहुंच गई। लालची रामधन की बीवी ने उसका काना फूसी और बहला फुसला कर घर ले आई। रामधन ने मानो गांव के सभी संस्कार आदर और नीति नियम ताक पे ही रख दिया हो। मानो घर आते ही उद्वेग और तीक्ष्ण स्वर में बोला, ना अम्मा का पांव छुआ न बाबूजी का। क्या बाबूजी क्या अम्मा, एक ही बेटा को कोख से जन्म दिए हैं। एक बेटा के लिए पूरी संपत्ति जायदाद घर गृहस्थी राशि ठाट बाट और एक के लिए कुछ नहीं। राम कृपा नम्र और बिनय स्वर में कहता है, ऐसा क्यों कह रहे हैं बड़का भैया। रामधन, मत कहो मुझे भैया, मर गया सबके लिए मैं और मेरा परिवार। देखिए बाबूजी, मुझे आज के आज हिस्सा चाहिए, चाहे कुछ भी हो कैसे भी हो। आज ही कीजिए बंटवारा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मा यह सुनते ही अम्मा का कलेजा कांप उठता है। कहती है, 2 दिन भी नहीं हुआ इस घर में खुशी आई, पता नहीं किसकी नजर लग गई। रामाधार ने सूझबूझ एवं हाल के परिस्थितियों को भांपते हुए उसी दिन पंच बुलाकर अपने हिस्से के वसीयत को आधी आधी करवा देते। परंतु रामधन के मन में बैठे अनेकों लालच ने अम्मा को मुंह खुलवाने पर मजबूर ही कर देता है। देख रामधन, संतोष का धन रचता है बेईमानी का नहीं। आज भले ही राम कृपा से बेईमानी कर बंटवारा करने पर तुले हो, मगर याद रखना तुम राम कृपा के नसीब के बंटवारा कभी नहीं कर सकते। तुम मेरा दिल दुखित कर खुश रह लोगे पर भाई का करके नहीं। एक बात मेरी गांठ बांध ले, राम कृपा की एक चुप्पी 100 सुख के बराबर सिद्ध होगी, याद रखना। रामधन, छोड़ना अम्मा ये सब बस कहने की बातें। अपने हिस्से के मिले घर में ताला बंद कर और सारी संपत्ति लेकर पुनः अगले दिन वह प्रदेश रवाना हो जाता है। एक दिन राम कृपा का संतोष और उसके माता पिता के आशीर्वाद फल स्वरूप कलावती का जुड़वा बेटी कमला और लक्ष्मी होती है। बेटा, दोनों बेटी बड़े होकर एक अच्छा सामाजिक इंसान होने के साथ साथ अधिकारी के पद पर सुशोभित होते हैं। इससे घर ही नहीं गांव भी गौरव महसूस करता है। उड़ते उड़ते ये बात जब रामधन के कान तक पड़ी तो उन दोनों को अत्यंत कष्ट आत्मग्लानि और पश्चाताप होता है। अम्मा कहती है, ममत्व करुणा भरेश्वर में। पुनः राम कृपा से कहती है, देखो ना राम कृपा, मैंने सही कही थी ना, इंसान भले दौलत का बंटवारा कर ले मगर उसके तकदीर और नसीब का बंटवारा कोई कदापि नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सूर्य कुमार उपाध्याय की कहानी बंटवारा भी आपने सुनी। कार्यक्रम पराग संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। एक अंतराल के बाद सुनेंगे देशभक्ति गीत।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
5: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं। ओ, जैसे UPI से। अच्छा, हाँ। और सुनो एक और नियम है। वो क्या है मम्मी जी? तुम्हारी मुँह दिखाई भी UPI से मिलेगी। आम भी ना मम्मी जी।
6: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। श्रोता अंतराल से पूर्व सुन रहे थे देशभक्ति गीत। दिन के समय स्टूडियो की घड़ी में 1:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी नगमे।

फिल्म फकीरा से यह नगमा लिया है, गीत और संगीत दोनों रविंद्र जैन का है, आवाज दी है किशोर कुमार और अजीज नाजा ने।

किशोर कुमार अजीज नाजार साथियों को आपने सुना, फिल्म फ़कीरा से ये नगमा था। नगमाकार और संगीतकार रविंद्र जैन। और अब मन्ना डे महेंद्र कपूर और साथियों को सुनिए। दो झूठ फिल्म से ये नगमा सुनवा रहे हैं। विश्वेश्वर शर्मा के बोल हैं, एम जी हशमत का संगीत।

तेरे इश्क में सर फिरा है हमारा, तेरे इश्क में सर फिरा है हमारा, सिर्फ तू है दुनिया में कातिल हमारा।

0: पागल है।
1: मैं समझता हूँ मेरी बोतल है,
0: हाँ बोतल है।
1: इसी बोतल से जाम भरने दे, मैं कशों को भी नाम करने दे,
0: मैं कशों को भी

0: दो चेहरे फिल्म से नगमत है मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे मीनू पुरुषोत्तम हेमलता और साथियों को आपने सुना। भरत व्यास के बोलों को सोनी कोमी ने संगीत से संवारा। फिल्मी नगमों का हमारा आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ।
1: बहू,
2: अरे हमार बाबूजी के कहना
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: 90. आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2 बजने को हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सीमा सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पटना, गया, नालंदा, वैशाली, बक्सर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी खबर है। पटना और आसपास के इलाकों में आंधी के कारण कई जगहों पर पेड़ पौधे और बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, जिससे आवागमन और बिजली आपूर्ति व्यवस्था बाधित हुई है। खेतों में लगी फसलों के साथ साथ आम और लीची की फसल को भी व्यापक नुकसान हुआ है। बारिश के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई। पटना में 2, औरंगाबाद और गया जी में एक एक व्यक्ति की मौत की खबर है। इधर मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आंधी बारिश और ओलावृष्टि से हुई फसलों की क्षति के सर्वे का आदेश दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने बताया कि इस संबंध में कृषि और आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रभावित किसानों को समुचित राहत दी जा सके। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।

0: मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को भागलपुर के तिलकपुर गांव में स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। इससे पहले श्री चौधरी ने कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात की। इस दौरान राज्य में कृषि क्षेत्र के विकास को लेकर मुख्य रूप से चर्चा हुई। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन ऑंग हलाइंग कल एक दिवसीय दौरे पर बोधगया आ रहे हैं। वे विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही उनका म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों के दौरे का भी कार्यक्रम है। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर बोधगया में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। भागलपुर के जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने कहा कि विक्रमशिला सेतु पर 7 जून से पहले वाहनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। बेली ब्रिज निर्माण के निरीक्षण के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि तकनीकी ऑडिट के रिपोर्ट पर एक और बेली ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में सीमा सड़क संगठन और पुल निर्माण निगम के अधिकारी और कर्मी लगातार जुटे हुए हैं। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार वितरण समारोह में शेखपुरा जिले की 3 पंचायतों केवटी, महसार और डीहकुसुम्भा के मुखिया को सम्मानित किया जाएगा। जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने बताया कि 3 जून को भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में चयनित मुखिया में दीपक कुमार, साधु चौधरी और मथुरा यादव को सम्मानित किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में आज से 3 दिवसीय सर्वोदय संकल्प शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश श्रीराम ने बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा तथा उनके सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जापान में आयोजित होने वाले पैरा एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाले राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ी शैलेश कुमार और हिमांशु यादव को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौधरी ने कहा कि यह पूरे राज्य के लिए गर्व और सम्मान का क्षण है। रोहतास जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में 2 मोटरसाइकिल की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। सुपौल के भीमपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा से 1 क्विंटल गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे का मूल्य 40 लाख रुपए बताया जा रहा है। किशनगंज जिले के बहादुरगंज थाना क्षेत्र से पुलिस और एसटीएफ की टीम ने मादक पदार्थ हेरोइन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

यह आकाशवाणी पटना है। अब आप इमरान सगीर से इलाकाई खबरें सुनिए। पटना, गया, नालंदा, वैशाली, बक्सर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। कई मकामात पर ज़ालाबारी की भी खबर है। पटना और आसपास के इलाकों में आंधी के सबब कई मकामात पर दरख्त और बिजली के खंभे उखड़ गए, जिससे आमदोरफ्त और बिजली सप्लाई मुतासर हुई है। खेतों में लगी फसलों के साथ साथ आम और लीची की फसल को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। बारिश के दौरान बिजली गिरने के अलग अलग वाकयात में 4 लोगों की मौत हो गई। पटना में 2, औरंगाबाद और गया जी में एक एक शख्स की मौत की खबर है। इधर महकमे मौसमियात ने अपनी पेशनगोई में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान रियासत के बेशतर हिस्सों में बारिश का इम्कान है। वज़ीर-आला सम्राट चौधरी ने आंधी, बारिश और ज़ालाबारी से हुए फसलों के नुकसान के सर्वे का हुक्म दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-आला ने बताया कि इस सिलसिले में महकमा ज़राअत और आफात इंतज़ामिया को हिदायत दी गई है, ताकि मुतासरा किसानों को मुनासिब

0: मुआवजा दिया जा सके। वज़ीराला सम्राट चौधरी ने आज नई दिल्ली में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। वज़ीराला ने सदर जमहूरिया को भागलपुर के तिलकपुर गांव में मुजाहिद आज़ादी तिलका मांझी के मुजस्मे की नकाब कुशाई प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मदु किया। इससे पहले जनाब चौधरी ने ज़राअत और किसान फलाह के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात की। इस दौरान रियासत में ज़राअत के शोबे में फ़रोग के सिलसिले में तबादला ख्याल हुआ। म्यांमार के सदर मिन आंग हलाइंग कल एक दिन के दौरे पर बौद्ध गया आ रहे हैं। वो आलमी शोहरत याफ्ता महाबोधि मंदिर और बकरौर वाके तारीखी सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही उनका म्यांमार के मुख्तलिफ बौद्ध मठों के दौरे का भी प्रोग्राम है। उनके दौरे के पेश नज़र बौद्ध गया में तहफ़ के वसी तर इंतजाम किए गए हैं। भागलपुर के जिला मजिस्ट्रेट नवल किशोर चौधरी ने कहा है कि विक्रमशिला सेतु पर 7 जून से पहले गाड़ियों की आमदोरफ्त शुरू हो जाएगी। बेली ब्रिज की तामीर के मुआयने के बाद मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए जनाब चौधरी ने कहा कि तकनीकी ऑडिट रिपोर्ट पर एक और बेली ब्रिज की तामीर कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि तामीराती काम में सरहदी सड़क तंजीम और पुल तामीरत कारपोरेशन के अफसरान और मुलाजमीन मसरूफ हैं। वजारत पंचायती राज के जरिए नई दिल्ली में मुनक़द होने वाले कौमी पंचायत वार्ड तकसीम प्रोग्राम में शेखपुरा ज़िले की 3 पंचायतों केवटी महसार और डी कुसुम्बा के मुखिया को नवाजा जाएगा। ज़िला पंचायती राज अफसर ने बताया कि 3 जून को भारत मंडपम में मुखिया दीपक कुमार, साधु चौधरी और मथुरा यादव को एजाज से नवाजा जाएगा। रियासती कांग्रेस सदर दफ्तर सदाकत आश्रम में आज से 3 रोज़ा सर्वोदय संकल्प शिविर का इनेकाद किया जा रहा है। रियासती कांग्रेस सदर राजेश राम ने बताया कि शिविर का मकसद बाबा कौम महात्मा गांधी और पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू के नज़रियात और उनके उसूलों को आवाम तक पहुँचाना है। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने जापान में होने वाले पैरा एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करने पर रियासत के बासलाहियत खिलाड़ी शैलेश कुमार और हिमांशु यादव को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब चौधरी ने कहा कि यह पूरी रियासत के लिए फ़ख्र और वक़ार का लम्हा है। रोहतास ज़िले के राजपुर थाना इलाके में 2 मोटरसाइकिल की टक्कर में एक नौजवान की मौत हो गई जबकि दूसरा शदीद तौर से ज़ख्मी हो गया। सुपौल के भीमपुर थाना इलाके में पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा से 1 क्विंटल गांजा के साथ 2 स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। किशनगंज जिले के बहादुरगंज थाना इलाके से पुलिस और एसटीएफ की टीम ने एक नशीली मादा हीरोइन के साथ 2 स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब रोजगार सूचना सुनिए। बिहार लोक सेवा आयोग 72वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के आलोक में 1230 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 20 और अधिकतम 37 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि है 31 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता नोट करें www.bpsc.bihar.gov.in। पता एक बार फिर से बता रहे हैं www.bpsc.bihar.gov.in। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनायक अनुदेशक यानी हवलदार इंस्ट्रक्टर के 1000, कृपया पुनः सुन लें, अधिनायक अनुदेशक यानी हवलदार इंस्ट्रक्टर के कुल 122 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होने चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 37 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि है 1 जून 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट देखें, पता नोट करें www.bpssc.bihar.gov.in। पता एक बार फिर से बता रहे हैं www.bpssc.bihar.gov.in। इंडियन आर्मी CSBO Grade 2 के 190 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। उम्मीदवार कम से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 25 वर्ष निर्धारित है। आयु की गणना 31 मई 2026 के आधार पर होगी। ऑनलाइन आवेदन की तिथि 31 मई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता है www.indianarmy.nic.in। रोजगार सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। अपराह्न के समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी देर में दोपहर समाचार प्रसारित होंगे।
2: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णिय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने

0: व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम से सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
1: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
2: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है। उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
1: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के 2 दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्पिनटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
3: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं एजुकेशन में, IIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं। मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है बल्कि नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभव

भावों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है, जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष, वैश्विक विकास तथा मुद्रा स्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान की सरकारी एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबारी क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवेदन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। जांच जारी है। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट UG परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन, मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
1: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
0: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच

0: दक्षिण पश्चिम मॉनसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
1: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
0: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 2:30 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम।

0: वॉइस ऑफ दंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूं।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है,
2: परीक्षा अक्सर अकेले की होती है लेकिन परिणाम सबके सामने आता है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें परिणाम का विचार जरूर करना चाहिए।
1: आपका बहुत बहुत आभार इतना सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान,
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी,
1: जालंधर पंजाब से संदीप कौर, प्रभा कौर, राधिका कौर और प्रभा जटोलिया,
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, प्रियांशी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अनाया गुर्जर, गुरदीप गुर्जर और प्यारी बिटिया किरत,
1: और बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओ। संदेश भेजने के लिए निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी

0: रजनीगंधा के बारे में,
1: जी
0: जो बहुत ही सुगंधित फूल है।
1: हम्म,
0: लेकिन हमारी चर्चा अधूरी ही रहेगी
1: यदि हम फूलों का राजा कहे जाने वाले गुलाब की चर्चा न करें।
0: जी, ये बात तो है।
1: श्रोताओं, इसे दुनिया का सबसे अधिक प्रिय फूल माना जाता है। गुलाब को इसकी सुंदरता और खुशबू के कारण विदेशी साहित्य में किंग ऑफ ऑल फ्लावर्स भी कहा जाता है। गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
0: जी हाँ, और जहाँ तक इसकी उत्पत्ति का प्रश्न है तो आपको बता दें कि गुलाब लगभग 4 करोड़ वर्ष पुराना फूल माना जाता है,
1: जी
0: क्योंकि वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म भी मिले हैं जो करोड़ों वर्ष पुराने हैं। विमलेश जी, अब एक खास बात ये बताइए कि गुलाब फूल मूल रूप से किस देश का है?
1: अजीत जी, गुलाब फूल मूल रूप से किसी एक देश का नहीं है। वनस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार गुलाब एक जंगली प्रजाति है जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, मुख्य रूप से चीन, भारत और मध्य एशिया में।
0: जी, एक रोचक तथ्य ये भी है कि लगभग 5,000 वर्ष पहले चीन में गुलाब की खेती के प्रमाण मिलते हैं।
1: जी
0: गुलाब की कई प्रजातियां चीन से ही विकसित हुई हैं, और धीरे धीरे ये प्रजातियां पूरी दुनिया में फैल गई।
1: अजीत जी, अक्सर हम काले गुलाब के विषय में सुनते हैं,
0: काले गुलाब?
1: जी जिसे ब्लैक रोज भी कहते हैं। क्या गुलाब काले रंग का भी होता है?
0: नहीं विमलेश जी, वैज्ञानिक तथ्य ये है कि जो गुलाब हमें काला दिखाई पड़ता है ना, वो दरअसल गहरे लाल या सुर्ख रंग का होता है,
1: जी
0: जिसमें थोड़ा थोड़ा बैंगनी रंग भी मिला होता है, इसलिए यह काला दिखाई पड़ता है।
1: जी
0: वास्तव में यह काला गुलाब है नहीं। वैसे मैंने कई बार विमलेश जी नीला गुलाब भी देखा है।
1: अजीत जी, वैज्ञानिक सत्य ये है कि प्राकृतिक रूप से नीला गुलाब होता ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने जैव तकनीक की सहायता से नीला गुलाब विकसित किया है।
0: विमलेश जी, कल हमने रजनीगंधा फूल की चर्चा करते हुए बताया था कि इस फूल की खुशबू रात के समय सबसे अधिक होती है।
1: जी
0: लेकिन एक बार श्रोताओं को बता दें कि गुलाब के फूलों के साथ ये बात बिल्कुल विपरीत।
1: हम्म,
0: गुलाब के फूलों की खुशबू प्रातः काल सबसे तीव्र मानी जाती है, क्योंकि इस समय इसकी पंखुड़ियों में सुगंधित तेल सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
1: अजी जी, जब आपने सुगंध की बात की है तो एक बात और मुझे याद आ गई, वो ये कि गुलाब के फूलों के इत्र दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं।
0: जी, वो तो है।
1: सबको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र एक बूंद इत्र या परफ्यूम बनाने में हजारों गुलाब की पंखुड़ियां लगती हैं।
0: जी बिल्कुल सही आपने कहा विमलेश जी, यही कारण है कि गुलाब की पंखुड़ियों से निकला हुआ रोज ऑयल बहुत महंगा होता है।
1: जी
0: हम सब जानते हैं कि गुलाब खाने और पीने के काम भी आता है।
1: हम्म,
0: गुलाब का शरबत, गुलकंद वगैरह कौन नहीं जानता।
1: बिल्कुल।
0: आइए अब बात करते हैं गुलाब के फूलों के रंगों की।
1: गुलाब कई रंगों के होते हैं और हर रंग की अपनी मानवीय भाषा होती है, जैसे लाल गुलाब प्रेम का, सफेद गुलाब शांति का,
0: जी
1: पीला गुलाब मित्रता का, और गुलाबी गुलाब सम्मान और प्रशंसा का। और आपको पता है, मधुमक्खियों का भी सबसे प्रिय फूल है गुलाब।
0: जी विमलेश जी, कई ऐसे फूल हैं जिनमें कांटे नहीं होते,
1: जी
0: लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि गुलाब के पौधे में कांटे क्यों होते हैं?
1: बड़ा मजेदार लेकिन विज्ञान सम्मत प्रश्न है। इसका जवाब है, गुलाब के पौधे में कांटे उसकी रक्षा के लिए होते हैं, ताकि जानवरों से आसानी से न खा सकें।
0: जी, तो श्रोताओ ये थी जानकारी हमारे आपके सबके चहेते फूल गुलाब की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न सुन लीजिए। हमारा प्रश्न है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत रूपांतरण है। कार्यक्रम में भारत के पारंपरिक खेलों का उल्लेख किया गया है।
0: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
0: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली

0: सबको भाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता।
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
0: या हंस हंस के बातें करना।
1: जब अंधेरा होने लगता,
0: जब अंधेरा होने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता।
1: तब हम घर को वापस आते,
0: तब हम घर को वापस आते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर एंजल और वान्या, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना।

0: संगीत तथा मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम खेल संध्या, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे।
1: परमवीर चक्र विजेता मनोज कुमार पांडे के जीवन और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके अपार शौर्य का वृत्तांत इस कार्यक्रम में दिया गया है।

0: यदि मौत मेरे खुद को साबित करने से पहले आती है तो मुझे सौगंध है कि मैं मौत को भी मात दे दूंगा।
1: ये शब्द हैं कारगिल युद्ध के महापराक्रमी योद्धा और परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे। निस्संदेह ये शब्द उनकी साहसिक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
0: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सेना के जांबाज सैनिक लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त किया। उन्हें बटालिक का हीरो भी कहा जाता है। बटालिक कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है।
1: पच्चीस जून 1975 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर सीतापुर के निकट रुधा गांव में उनका जन्म हुआ था। वो श्री गोपी चंद्र पांडे और श्रीमती मोहिनी पांडे के सबसे बड़े पुत्र थे। सेना में जाना उनका सपना था। वो हमेशा ही सेना की प्रतिष्ठित वर्दी पहनकर अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के सपने देखा करते थे।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक विद्यालय लखनऊ में हुई। स्कूली जीवन में उन्हें अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था। खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। बॉक्सिंग, शारीरिक सौष्ठव और वॉलीबॉल में उन्हें महारत हासिल थी।
2: गोविंद, तू सर्विस कर, पीछे जा, हाँ, और सर्विस सीधा सेंटर में डालना, ओके?
0: उत्तर प्रदेश में वो राज्य स्तर पर नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए।
3: श्री मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर एनसीसी का सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किया जाता है।
1: प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने सेना में जाने की अपनी अदम्य इच्छा को साकार करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में दाखिला लिया। उनके बारे में एक घटना बहुत ही रोचक और प्रेरक है। उस दिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती होने वाले नौजवानों का साक्षात्कार चल रहा था।
4: तो मनोज पांडे जी, आप बहुत अच्छे अंकों से एनडीए की चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इसलिए आपको इस साक्षात्कार में बुलाया गया है।
5: धन्यवाद श्रीमान।
4: तो आप ये बताइए कि आप भारतीय थल सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं?
5: श्रीमान, मैं परमवीर चक्र प्राप्त करना चाहता हूं।
4: वेरी एम्बिशियस। लेकिन क्या आपको लगता है कि परमवीर चक्र एक खिलौना है?
5: श्रीमान,

0: मुझे निश्चय है कि अपने कार्यकाल में मैं अवश्य ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा।
1: बेस्ट ऑफ लक। और उन्होंने ऐसा ही किया भी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें कमीशन मिला और वो लेफ्टिनेंट के पद पर 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हो गए। सेना की ये इकाई अपनी वीरता और पराक्रम के लिए विख्यात है। सेना में कमीशन मिलने के बाद उनकी पहली नियुक्ति कश्मीर घाटी में हुई।
2: मई के महीने में कारगिल और आसपास के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर दी गई थी। उन दिनों लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ने सियाचिन में अपनी तैनाती के 1.5 वर्ष पूरे कर लिए थे और रेजिमेंट को शांति क्षेत्र पूना भेजा जा रहा था। लेकिन इस घुसपैठ का पता चलने के बाद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उनके अद्भुत नेतृत्व कौशल के मद्देनजर सियाचिन के ही बटालिक सेक्टर जाने के निर्देश मिले।
1: युद्ध शुरू हो चुका था। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। अभियान था सियाचिन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक जोबार टॉप पर कब्जा करना। भीषण युद्ध के बाद यह अभियान सफल रहा। अब उनकी टुकड़ी को जोबार टॉप के पास वाली एक और चौकी खालूबार पर कब्जा करना था। वो अपनी टुकड़ी के कमांडर थे।
2: 3 जुलाई 1999 को गोरखा रेजिमेंट के निडर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने पूरी ताकत से अपनी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी चौकियों पर आक्रमण किया।
3: बहादुर साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आप सब ने जोबार टॉप की लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालूबार में भी दिखाएंगे।
4: जी, हम तैयार हैं।
3: लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं और हमारी हर कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इस बार वो करना होगा जो कठिन तो है पर असंभव भी नहीं है।
5: वो क्या साहब?
3: इस मैप को देखिए, सीधी चढ़ाई करने में खतरा है, इसलिए हम यहां से पहाड़ के इन दुर्गम दर्रों को पार करते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक उन पर हमला करेंगे। ये देखिए, यहां 2 दर्रे हैं जिनसे चोटी तक पहुंचा जा सकता है। यह नंबर 1 और यह नंबर 2।
5: तो इसका मतलब है कि हम 2 दिशाओं से उन तक पहुंचेंगे।
3: बिल्कुल सही। दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए हमने वायुसेना से अनुरोध किया है कि उनके विमान थोड़ी थोड़ी देर में खालूबार टॉप पर मंडराते रहे। दुश्मन का ध्यान विमानों की ओर रहेगा। इसी बीच आधी टुकड़ी पहाड़ के इस ओर से और आधी पहाड़ के उस ओर से पर्वत शिखर पर पहुंचेगी और जब सब पहुंच जाएं तो मैं सबको संदेश भेजूंगा। कूट संदेश मिलने का इंतजार करना।
4: जी साहब।
3: संदेश मिलते ही सबको दुश्मन पर टूट पड़ना है। आक्रमण करने का संकेत होगा गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष।
4: जय महाकाली। आयो गोरखाली। जय महाकाली। आयो गोरखाली।
3: तो शुरू करते हैं अभियान। सब तैयार हो जाओ। शाम होते ही हम सब मिशन पर निकल पड़ेंगे।
4: जय महाकाली। आयो गोरखाली।
2: और फिर शुरू हुआ सैन्य अभियान। खालूबार टॉप पर समय समय पर वायुसेना के विमान मंडराते रहे और जो बंकर निशाने पर आए उन्हें उड़ाते रहे। इसी बीच लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में रणबांकुरों की टुकड़ी खालूबार टॉप की ओर इंच इंच करके बढ़ रही थी।
1: मार्ग दुर्गम था।

0: खून जमा देने वाली ठंड और अत्यधिक ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे विरल होती जा रही थी। लेकिन इन सैनिकों के मनोबल और दृढ़ निश्चय के सामने वस्तु स्थिति भी परास्त होती दिखाई दे रही थी। 4 घंटों की दुर्गम चढ़ाई के बाद आखिरकार उनका लक्ष्य सामने आ गया था। दुश्मन इस बात से बेखबर था कि स्वयं महाकाल उनके सरों पर मंडरा रहा है।
1: आक्रमण हुआ
0: और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में वो पलक झपकते ही दुश्मनों पर टूट पड़े।
2: जय महाकाली!
0: पाकिस्तानी सैनिकों के लिए यह हमला अप्रत्याशित था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमला इस प्रकार होगा। दुश्मन के सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मशीन गन के प्रहार से उनका काम तमाम कर दिया।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे पूरी तत्परता और असीम शौर्य के साथ सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच दुश्मन भी संभल गया था और उनके बंकरों से भी भारी गोलीबारी होने लगी, जिसके कारण भारतीय सैनिक हताहत होने लगे।
3: जब तक दुश्मन की मशीन गनों को शांत नहीं किया जाता, तब तक हमारे जवान हताहत होते ही रहेंगे। मुझे हर कीमत पर उन बंकरों पर हमला करना होगा।
0: उन्होंने हथगोले लिए और गोलीबारी से स्वयं को बचाते हुए सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए स्वयं उनके बंकरों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने दुश्मन के 2 बंकरों का सफाया कर दिया। उनकी इस कार्यवाही में दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए। अब वो 3rd बंकर की ओर बढ़ने लगे।
1: इसी बीच गोलियों की बौछार ने उनके कंधे और पैरों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। चोट बहुत गहरी थी और खून बहुत बह चुका था, लेकिन युद्ध के इस वीर नायक ने हार नहीं मानी। वो भारी गोलीबारी के बीच ऐसी घायल अवस्था में भी सैनिक साथियों को आक्रमण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।
0: इस बीच जो भी शत्रु सामने आया, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने हथगोलों से उसे मौत की नींद सुला दिया और 3rd बंकर में घुसकर उन पर हथगोलों से भीषण आक्रमण कर दिया। वो आमने सामने के युद्ध में दुश्मनों से भिड़ गए।
1: तीसरे बंकर को नष्ट करने के बाद वो शत्रु के 4th बंकर की ओर बढ़ने लगे। वो 4th बंकर के पास पहुंचे ही थे कि दुश्मनों की मीडियम मशीन गन की एक गोली उनके माथे के बीचों बीच जा लगी। गिरते गिरते भी उन्होंने हथगोलों के भीषण प्रहार से उस बंकर के भी कुछ और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: बहुत अधिक मात्रा में खून बह जाने के कारण अब उनकी सांसें डूब रही थीं। उनके मुंह से नेपाली भाषा में ये शब्द निकले,
4: ना छोड़नू, ना छोड़नू।
0: जिसका अर्थ है उन्हें छोड़ना मत। इन अंतिम शब्दों के साथ वो चिर निद्रा में लीन हो गए।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की इस अपूर्व वीरता के कारण ही भारतीय सेना सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चौकी खालुबार पर कब्जा कर सकी और इस प्रकार कारगिल क्षेत्र के बटालिक सेक्टर में भारत की विजय का मार्ग खुल गया।
0: एक महीने बाद 1999 के

0: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: देश ने इस महावीर की स्मृति को विस्मृत होने नहीं दिया। द्रास कारगिल युद्ध संग्रहालय, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे और देश में अन्य कई जगहों पर उनकी स्मृति में स्मारक बनाए और अपने भवनों का नाम रखा।
0: राष्ट्र श्रद्धा सहित इस असाधारण शौर्य के स्वामी और मूर्धन्य युद्ध नायक को नमन करता है।
2: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर एस रघु। शोध व आलेख अजीत होरो। तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: श्रोता सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम।

0: PIR at 90. मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अपराह्न के 3 बज रहे हैं। संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। हमारी अगली सभा शाम ठीक 5 बजे आरंभ होगी। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार।
1: कर

0: आपको उसे भी संभालने के लिए?
1: नहीं, मुझे कुछ मुश्किल नहीं होती। अंदर से मुझे बहुत सारी निसर्ग ने शक्ति दी है। बीच में ही ऐसे अंदर तो आने के बाद कोई भी ऐसे ही हो जाता, लेकिन मैं अपने हिम्मत से खड़ी हुई और मैंने 2 साल की बच्ची अडॉप्ट की।
0: प्रेरणा जी, आपका जो नाम है, आप इसे सार्थक कर रही हैं। आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बन रही हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर, आपकी कहानी सुनकर। अब ये बताइए कि आप कौन सा गीत आज सुनना चाहती हैं?
1: मेरे बच्चे को बहुत अच्छा लगता है यादों की बारात का, चुरा लिया है मैंने ये दिल को।
0: आपको सुनवाते हैं यादों की बारात फिल्म का ये गीत।

अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली।
1: नमस्ते सहेली जी, बताइए कौन बोल रही हैं और कहाँ से आप बात कर रही हैं?
0: मैं उत्तराखंड से पुष्पा डोबरियाल बोल रही मैम।
1: पुष्पा डोबरियाल
0: जी
1: उत्तराखंड से बात कर रही हैं।
0: जी मैम।
1: उत्तराखंड के कौन से शहर से बात कर रही हैं?
0: देहरादून शहर से बोल रही मैम।
1: अरे बहुत खूबसूरत शहर है आपका।
0: जी मैम, थैंक यू। और मैम तो आपके प्रोग्राम सारे सुनते हैं मैम।
1: मैडम हमें देहरादून के बारे में कुछ बताइए। बहुत खूबसूरत शहर है और ये ऐसा शहर है, इस समय पर खास तौर पर वहाँ चहल पहल रहती होगी क्योंकि जब गर्मी से
0: बहुत
1: लोगों
0: है
1: को
0: आजकल तो, बहुत ट्रैफिक इतना है मैम कि बहुत मतलब यात्री कई कई टूरिस्ट आते रहते हैं। मसूरी है यहाँ से, और ऋषिकेश, राम झूला, लक्ष्मण झूला और हरिद्वार, यहाँ से सारे आते रहते हैं यहाँ पे।
1: आपने जितनी भी जगहों के अभी नाम लिए ना, ये सब वो जगह हैं मध्य भारत में और उत्तर भारत में गर्मी बहुत तेज हो जाती है ना, तो उस गर्मी से राहत के लिए ऐसी जगह पर ही जाना लोग पसंद करते हैं। और वहाँ का जो
0: हाँ, आजकल
1: वातावरण है
0: जैसे
1: ना,
0: मसूरी मसूरी हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, हेमकुंड साहिब हो गया और हरिद्वार, ऋषिकेश, यहाँ पे तो टूरिस्ट बहुत ज्यादा आ रखे हैं मैम आजकल।
1: अच्छा आप बताइए आप क्या करती हैं?
0: मैं तो घर पे ही रहती मैम।
1: पुष्पा जी, घर पर समय काटने के लिए आपका सबसे पसंदीदा काम कौन सा होता है?
0: मेरे को तो साफ सफाई अच्छी लगती है मैम, और रेडियो सुनना।
1: अच्छा, रेडियो के कौन से प्रोग्राम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
0: सखी सहेली, हेलो फरमाइश,
1: आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
0: पतंग फिल्म का गाना सुना दीजिए।
1: तो आपको सुनाते हैं पतंग फिल्म का गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: हम आरती वर्मा बोल रहे हैं कानपुर से।
1: कानपुर से आरती जी बात कर रही हैं। आरती जी,
0: हाँ
1: कानपुर में तो बहुत गर्मी होगी ना इस समय?
0: हाँ मैं गर्मी तो पड़ रही बहुत।
1: और अभी गर्मियों की छुट्टी भी चल रही होंगी बच्चों की,
0: हाँ छुट्टी चल रही है।
1: तो बच्चों को बाहर जाने से रोकना पड़ता होगा ताकि वो धूप में जाकर परेशान ना हो जाएं।
0: हाँ मैडम जी, घर ही में रखते, निकलने नहीं देते, बाहर बहुत धूप रहती है, इसी वजह से अंदर रखते हैं बच्चों को।
1: आरती आप क्या करती हैं बताइए?
0: हम घर ही में रहते हैं मैडम, घर ही के काम काज करते हैं।
1: अच्छा, आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आज?
0: हम नगीना का सुनेंगे, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा।
1: नगीना फिल्म का ये गीत आपको
0: हाँ
1: सुनवा रहे हैं।

0: धूप रहती है, इसी वजह से अंदर रखते हैं बच्चों को।
1: आरती आप क्या करती हैं बताइए?
0: हम घर ही में रहते हैं मैडम, घर ही के काम काज करते हैं।
1: अच्छा, आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आज?
0: हम नगीना का सुनेंगे, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा।
1: नगीना फिल्म का ये गीत आपको
0: हाँ
1: सुनवा रहे हैं।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। कौन सी सखी बात कर रही हैं हमसे?
1: मैं त्रिपुरा से, मैं बुल्टी दास बोल रही हूँ।
0: बुल्टी दास त्रिपुरा से बात कर रही हैं।
1: जी,
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं हाउस वाइफ।
0: जी, मुझे बताइए कि आप विविध भारती सुनती हैं?
1: जी, मैम सुनती है। हेलो सहेली, हेलो फरमाइश।
0: इसके अलावा आपके परिवार में और कौन कौन हैं?
1: एक बेटा, दुई बेटी,
0: एक बेटा और दो बेटियां हैं आपकी।
1: हस्बैंड।
0: अच्छा, मुझे बताइए त्रिपुरा जो शहर है, इसका मौसम कैसा रहता है? यहाँ सर्दी गर्मी ज्यादा होती है या बारिश ज्यादा होती है?
1: बारिश बारिश बारिश होती है मैम, ज्यादा बारिश।
0: तो अभी तो बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, फिर वहाँ बहुत बारिश होंगी।
1: ओह जी मैम, बहुत बारिश चलते हैं। फिल्म
0: सखी, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: का नाम अंधा कानून, गाने का भूल है रोते रोते हंसना।
0: रोते रोते हंसना सीखो, ये अंधा कानून फिल्म का गाना है जो आज आप सुनना चाहती हैं।
1: जी
0: आपको सुनवाते हैं बुल्टी दास जी, आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: सहेली अपना नाम बताइए, आप कौन बोल रही हैं और किस शहर से आपने कॉल किया है हमें?
1: मेरा नाम मोनिका साहू है, मैं बोरिया खुर्द रायपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ।
0: मोनिका साहू जी, अपने बारे में कुछ बताइए हमें कि आप क्या करती हैं?
1: मैं बीएससी फोर्थ सेम में हूँ अभी, और मेरे अभी फोर्थ सेम के फाइनल एग्जाम चल रहे हैं।

0: हैं।
1: अच्छा, आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही हैं और आपको रेडियो सुनने के लिए समय मिल जाता है अपनी पढ़ाई, स्कूल, कॉलेज वगैरह सबसे?
0: हाँ, कभी कभी नहीं मिल पाता तो फिर मैं मोबाइल में सुन लेती हूँ, और जब मिलता है फोन तो मतलब, या फिर नहीं मिलता घर में सुनती हूँ। हमारे घर में हम लोग सभी रेडियो में सुनते हैं विविध भारती।
1: और मोबाइल पर जब आप सुनती हैं तो न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर सुनती हैं?
0: नहीं, मैं ज्यादातर तो यूट्यूब पे ही सुनती हूँ, क्योंकि उसमें लाइव और सारे वीडियोस मिल जाते हैं मुझे मेरे सुनने वाले पे, जैसे सखी सहेली, हेलो फरमाइश, ये सब मैं सुनती हूँ।
1: तो जो पुराने प्रोग्राम है उन्हें सुनती हैं या लाइव सुनती हैं यूट्यूब पर आप?
0: लाइव भी सुनती हूँ और पुराने प्रोग्राम भी सुनती हूँ मैं।
1: आप लाइव सुनना चाहती हैं तो न्यूज़ ऑन एयर ऐप के जरिए आप सभी प्रोग्राम सुन सकती हैं, विविध भारती के भी और प्रसार भारती के सभी कार्यक्रम आप सुन सकती हैं।
0: हाँ,
1: और आप बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है अभी?
0: अभी मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। अभी तो मेरे एग्जाम चल रहे हैं, अभी सिर्फ दो ही एग्जाम हुए हैं और बाकी के अभी बचे हैं।
1: अच्छा, और इसके बाद में आपके जो भविष्य की योजनाएं हैं वो क्या हैं? इसके बाद आप और आगे पढ़ना चाहती हैं या कोई नौकरी वगैरह करना चाहती हैं?
0: मैं वैसे तो टीचर बनना चाहती हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। मैं अभी भी मेरे भाई को और मेरे आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उनको पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ।
1: तो ये आप ट्यूशंस लेती हैं या इसी तरह बस यूं ही मदद करने के लिए आप पढ़ाती हैं?
0: नहीं, मैं ट्यूशंस नहीं लेती हूँ, बस ऐसे ही कभी किसी को डाउट हो जाता है तो
1: अच्छा,
0: उन्हें क्लियर करती हूँ, और अपने लिए भी करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है किसी को किसी चीज़ के बारे में अच्छे से बताना और समझाना।
1: बहुत अच्छा काम होता है एक शिक्षक का और आप इस काम को चुनना चाहती हैं। बहुत सारे लोगों को राह दिखाएंगी और शिक्षक वो काम है जो बहुत सारे लोगों के लिए एक खुद जलकर रोशनी फैलाता है। और आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मुझे मासूम पिक्चर का लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा सॉन्ग सुनना है।
1: क्या बात है, आपकी उम्र के हिसाब से जो छोटे बच्चों वाली सोच है और जैसी पसंद है आपकी, ये हमें बड़ा अच्छा लगा। सुनवाते हैं आपको अपनी पसंद का ये गीत जिसे हमने लिया है मासूम फिल्म से।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो, नमस्ते मैम
0: नमस्ते, मुझे बताइए आप कौन सखी बात कर रही
1: जी।
0: हैं?
1: मैं इंदौर से बोल रही हूँ, जीनत परवीन
0: इंदौर से जीनत परवीन बात कर रही हैं।
1: जी। हाउस
0: जीनत जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: वाइफ हूँ मैम
0: तो घर पे करने के लिए काम बहुत सारे होते हैं, जो शायद बाहर महिलाएं जाती हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा काम एक घर में काम करने वाली महिला को होते हैं।
1: जी।
0: और आपके घर में कौन कौन है जीनत जी?
1: हस्बैंड है, मैं हूँ और बच्चे हैं तीन लड़के। सबसे छोटे वाला 13 साल का है बस, और एक 15 साल के और एक 21 साल का। जी,
0: तो अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तीनों?
1: दो पढ़ाई कर रहे हैं और बड़े वाले उनके पापा के साथ जाते हैं ड्यूटी। जी
0: तो अपने पिताजी के काम है उसमें वो हाथ बटाते हैं।
1: वो
0: आपके पति क्या काम करते हैं?
1: आरओ का प्लांट ये बनाते हैं, जो उस पर फैक्ट्रियों में लगते हैं ना बड़े बड़े, तो
0: जी।
1: बाहर का काम है सब। अमेरिका और यहाँ जाते हैं तो बड़े प्लांट बनते हैं।
0: और आप बताइए, आप घर में समय काटने के लिए क्या क्या करती हैं?
1: अपना काम निपटा लेती हूँ 1 बजे तक,
0: हाँ।
1: और रेडियो सुनती रहती हूँ। सुबह से चालू जाता है रेडियो 7 बजे से, तो रात के 11 बजे तक चलता है। और फिर अपने काम निपटा के 3 में रेस्ट करती हूँ, तो अपने लिए समय निकालती हूँ थोड़ा।
0: जब आप अपने लिए समय निकालती हैं, तब आपका
1: जी
0: पसंदीदा काम क्या होता है?
1: नहीं, बस यही रेडियो सुनती रहती हूँ, और उसमें कभी नींद आ जाती है थोड़ी, इधर लेट जाती हूँ बस।
0: आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: शान पिक्चर का सुनूंगी, यम्मा यम्मा यम्मा यम्मा ये खूबसूरत समा।
0: सुनवाते हैं आपको शान फिल्म का ये वाला गीत।

0: आप कौन बात कर रही हैं और कहाँ से आपने हमें कॉल किया है?
1: हाँ, मैं सोनू बोल रही हूँ, भोपाल से।
0: भोपाल मध्य प्रदेश से सोनू बात कर रही हैं।
1: जी
0: सोनू जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: घर में ही रहती हूँ मैं, आपके प्रोग्राम सुनती हूँ और एक ब्यूटिशियन भी हूँ।
0: अच्छा, ब्यूटिशियन का काम भी करती हैं और आपको खाली समय में रेडियो सुनना पसंद है?
1: हाँ, रेडियो तो पूरे ही टाइम सुनती हूँ, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक।
0: आप ये बताइए, आपका जो ब्यूटी पार्लर है वो आपने घर में ही किसी हिस्से में बनाया है या कहीं अलग से आपका ब्यूटी पार्लर है?
1: घर में ही है,
0: अच्छा
1: साइड में बनाया है शॉप जैसा।
0: अच्छा और कितने समय से आप अपना ब्यूटी पार्लर चला रही हैं?
1: हाँ, पार्लर चलाते हुए तो 22 साल हो गए मेरे को।
0: तो फिर तो आपका बहुत अच्छा हाथ बैठा हुआ होगा।
1: जी, सारे काम कर लेती हूँ, इस टाइम के भी, पुराने टाइम के भी, सभी आता है मुझे।
0: अपने काम में अपनी एक पहचान बनाना ये बहुत जरूरी होता है और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लोगों को सजा संवार रही हैं, खूबसूरत बनाती हैं।
1: जी।
0: और गीत किस तरह के सुनती हैं, संगीत किस तरह का पसंद है आपको? जैसे विविध भारती के सारे ही प्रोग्राम आप सुनती हैं, तो कौन से?
1: विविध भारती के तो सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पुराने गाने ज्यादा पसंद है मुझे।
0: आपका पसंदीदा कार्यक्रम
1: हेलो
0: कौन सा है?
1: सहेली फेवरेट है मेरा, हेलो फरमाइश फेवरेट है।
0: ये बताइए कि गीत
1: जी,
0: कौन सा सुनना चाहती हैं?
1: 20 साल बाद पिक्चर का गाना है, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। अनुराधा जी और मोहम्मद अजीज की आवाज में है ये, और मिथुन वाली 20 साल बाद पिक्चर है ये।
0: ठीक है, आपको सुनवाते हैं ये गीत, हम तुम्हें कितना प्यार करेंगे।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं खुशी कौशल बात कर रही हूँ इंदौर से।
0: इंदौर से खुशी कौशल बात कर रही हैं।
1: जी हाँ।
0: आपका शहर तो बहुत खूबसूरत है और खास तौर पर इंदौर जाना जाता है अपनी साफ सफाई के लिए।
1: जी, मुझे बहुत गर्व है कि मैं इंदौर शहर में रहती हूँ। मतलब प्राउड होता है इंदौर का नाम लेके। हाँ
0: इंदौर का जब हम नाम सुनते हैं तो एक बहुत साफ सुथरी जगह की छवि हमारे जहन में आती है, और आप जैसे जो इस शहर में रहने वाले लोग हैं, इसका बहुत बड़ा सहयोग है कि ये शहर इतना सुंदर है और साफ भी है।
1: जी
0: खुशी, आप क्या करती हैं?
1: मैम, मैं स्टूडेंट हूँ अभी 10th क्लास में।
0: 10वीं में जाएंगी, मतलब 9वीं की आपने परीक्षा दी है अभी,
1: हाँ
0: तो अब

0: 10वीं के लिए तो बहुत अच्छी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी,
1: जी मैम।
0: क्योंकि 10वीं वो पहला पड़ाव होता है जहाँ से आपकी पढ़ाई की नींव डलती है,
1: जी
0: और फिर इसके बाद में ही आपको अपना करियर चुनने के लिए आगे और क्या पढ़ना है इसमें बहुत मदद मिलती है।
1: जी मैम।
0: खुशी, आप क्या करना चाहती हैं आगे चलकर, क्या बनना चाहती हैं?
1: मैम मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरी मम्मी का सपना था कि मैं मेरी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगी।
0: बहुत अच्छा सपना आपकी मम्मी ने देखा है, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप जरूर एक दिन बहुत बड़ी कामयाब डॉक्टर बने। और मुझे बताइए कि पढ़ाई आप करती हैं, फिर आप रेडियो सुनती हैं, तो ये आपकी पढ़ाई में बाधा तो नहीं बनता, या आपको?
1: नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है रेडियो सुनना। मैं जब बचपन से छोटी थी, मेरे पापा मम्मी दोनों रेडियो सुनते, तो मुझे इतना अच्छा लगता है रेडियो सुनना। मतलब ऐसा लगता है कि सब मेरी फैमिली है रेडियो। मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ। मैंने पापा मम्मी को आज तक मैंने वैसे सामने से नहीं बोला, पर मैं रेडियो के माध्यम से बोलना चाहूंगी। पापा मम्मी आप वर्ल्ड के बेस्ट पेरेंट्स हो। मुझे आप दोनों पे गर्व है कि आप मुझे इतना प्यार करते हो।
0: बहुत अच्छी बात है खुशी की, आप जैसी प्यारी बिटिया उनकी है, और खुशी को बहुत खुशी हो रही है कि आज इसका कॉल लग गया, और खुशी से बात करके हमें भी खुशी हो रही है। तो अब बताइए खुशी की, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मेरे मम्मी पापा के लिए अलग गीत सुनना चाहूंगी, मुझे माफ करना, ओम साईं राम।
0: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये वाला गीत।

0: से बात कर रही हैं इस समय?
1: जी, मैं हर्षिता गुजराती बात कर रही हूँ।
0: हर्षिता जी, कहाँ से कॉल लगाया है आपने?
1: मैं हरपन मौला कलाकार किशोर कुमार की नगरी खंडवा मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ।
0: क्या बात है, आपने जो अपने शहर का परिचय दिया है ये बड़ा अच्छा था।
1: जी, मैं बहुत दिनों से हेलो सहेली में फोन ट्राई कर रही थी, आज सफलता मिल ही गई।
0: अच्छा, आप किशोर कुमार की नगरी में रहती हैं, तो क्या आपने कभी किशोर कुमार का जो वहां पर निवास स्थान है वो देखा है जाकर?
1: जी, मैं स्थान पर गई हूँ,
0: जी
1: और जो किशोर कुमार की नगरी है वहाँ पे समाधि है, मैं वहाँ भी गई हूँ। वहाँ पे कार्यक्रम होते रहते हैं, मेरे पापा के साथ मैं जाती हूँ, मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट है।
0: और आपको भी किशोर कुमार के गाने पसंद हैं?
1: जी
0: और आपके पिताजी को भी किशोर कुमार के ही गाने पसंद होंगे ज्यादा?
1: जी पापा तो पहले से ही किशोर कुमार, रफी साहब, इन सभी के गीत सुनते थे, और धीरे धीरे फिर मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ा, तो उसके बाद फिर मैं पापा से जुड़ गई इस चीज के लिए।
0: हर्षिता, आप क्या करती हैं?
1: मैंने एमकॉम की डिग्री प्राप्त करी है देवी
0: जी
1: अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से,
0: जी
1: और अभी मैं संस्कार भारती की स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ।
0: अच्छा, अपनी डिग्री लेने के बाद में अभी आपने पढ़ाने का काम भी शुरू कर दिया है,
1: जी,
0: बहुत अच्छी बात है। एक शिक्षक के कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और इसे आप निभा रही हैं।
1: बिल्कुल जी।
0: और आपके फ्यूचर के क्या, भविष्य के क्या योजनाएं हैं?
1: मेरी भविष्य की यही योजना है कि मैं संस्कार भारती से जो जुड़ी हुई हूँ, विद्या भारती से,
0: जी
1: वहाँ जितना मुझसे हो सके मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगी। वहाँ से मैं सीख भी रही हूँ और सिखा भी रही हूँ।
0: और आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं हर्षिता?
1: मैं आज नाइट इन लंदन फिल्म से बाहोशो हवास दीवाना,
0: रफी साहब
1: रफी
0: का गाया
1: साहब।
0: हुआ।
1: जी।
0: हर्षिता, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का नाइट इन लंदन फिल्म का ये गाना।

0: आज के हेलो सहेली कार्यक्रम में कॉल करने वाली सभी सखियों का धन्यवाद। आप सभी सखियों से अनुरोध है कि जिनके कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हो गए, अगले 2 महीने तक वो कॉल ना करें, ताकि हमारी अन्य सखियों को भी इस कार्यक्रम से जुड़ने का मौका मिल सके। हेलो सहेली कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपको करना होगा अगले मंगलवार तक का इंतजार। आप हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबर पर 02240024662, 02228670288। नंबर आपको फिर से बता देते हैं 02240024662। एक अन्य नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 02228670288। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं मंगेश सांगले, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से, विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज के हेलो सहेली कार्यक्रम से दीजिए चंचल वर्मा को इजाजत। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी, आइए आज सुनते हैं विधि जैन की लिखी गीतों भरी कहानी रिश्ते। वाचन स्वर विधि जैन का।
2: वक्त की मार, रिश्तों का सार। रिश्ते जीवन का आधार होते हैं। जीवन में अगर देखा जाए तो मनुष्यता की पहचान रिश्ते ही तो है। ये रिश्ते कभी रक्त के बंधन होते हैं तो कभी प्रेम के। ऐसे ही रिश्तों को सहेजना अति आवश्यक कार्य है, क्योंकि मन का सुकून और शांति इससे ही है। आज की कहानी इन्हीं रिश्तों के सम्मान और आवश्यकता की है। चलते हैं गांव की ओर, जिस गांव का नाम है शिवपुर।

शिवपुर गांव की सुबह हमेशा शांत और सौम्य होती थी। तलैया के पास खड़े बरगद के पेड़ के नीचे बुजुर्गों की बातें और सूरज की पहली किरण फसल पर पड़ते ही पूरा गांव मानो जाग उठता। प्रेम है एक दूसरे का, सत्कार है और साथ ही है अपनापन। मंदिर की घंटियां, रहट की आवाजें, गाय का रंभाना, बच्चों की खिलखिलाहट, पनघट पर पनिहारियों की हंसी ठिठोली और संतोष के साथ गुजर बसर करते लोग। इसी गांव के एक कोने में पुराना लेकिन बेहद स्नेह से भरा घर, राम नारायण का घर। राम नारायण और उनकी पत्नी कमला गांव में सबके आदर का पात्र हैं। मेहनती, ईमानदार और रिश्तों को सबसे ऊपर रखने वाले। इनके दो बेटे विक्रम और अमित बचपन से ही एक दूसरे की छाया की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं। दोनों में इतना गहरा प्रेम है कि लोग उदाहरण देते हैं कि राम नारायण के दोनों बेटे सच में राम लक्ष्मण जैसे हैं। एक दूसरे के लिए तो सदा खड़े रहते हैं और दूसरों के लिए भी साथ में खड़े हो जाते हैं। राम नारायण जी ने उन्हें व्यवहारिक शिक्षा दी है तो माँ यानी कमला जी ने उन्हें सांसारिक और आध्यात्मिक। कुल मिलाकर दोनों बालक ऐसे हैं जैसी चाह सभी को होती है और सभी चाहते हैं उनके बच्चे भी ऐसे ही हो जाएं।

विक्रम बड़ा भाई है तो स्वाभाविक तौर पर जिम्मेदार और शांत भाव का है, और अमित छोटा है तो यह तो तय है कि वह चंचल होगा, पर दिल का साफ है। बच्चे विद्यालय जाते, थोड़ा खेलते, पढ़ते और खेतों में पिता के साथ काम करते। माँ के हाथ का बना भोजन बिना नानुकुर के बड़े प्रेम से करते, और शाम को मित्रों के साथ कभी कभी गांव के मेले में भी घूमाते। दोनों की हंसी सुनकर लगता जैसे घर में कभी कोई तूफान आ ही नहीं सकता। प्रेम देखकर लगता कि कोई शक्ति इन्हें अलग कर ही नहीं सकती। जीवन का सारा पाठ बचपन में ही सीख लिया है इन्होंने। और यह सब देखकर रामनारायण जी और कमला जी ईश्वर को धन्यवाद देते, और रामनारायण जी अक्सर कहा करते, मेरी असली कमाई, असली धन ये दोनों हैं।

समय बीतता गया। पढ़ाई में होशियार तो थे ही, सो बड़े होते होते दोनों शहर में जाकर पढ़ने लगे और यहीं से आवो हवा बदलने लगी। शहर की चकाचौंध रास आने लगी और मासूमियत कहीं खोने सी लगी। फिर दोनों के जीवन में नए सपने, नए विचार, आगे बढ़ने की आकांक्षा, अनंत तक चलने की दौड़ का हिस्सा बनने की चाह, और जो कि बिल्कुल गलत नहीं था। हर किसी को आगे बढ़ना और नई संभावनाएं खोजना भी चाहिए, परंतु दुर्भाग्य यह था इन्होंने कई बातें मासूमियत के कारण सीखी ही नहीं, तो बड़ा बनने की लालसा ने इनके अंदर थोड़ा थोड़ा लालच भी भर दिया। अब विक्रम का विवाह सीमा से हुआ, जो महत्वाकांक्षी थी, परंतु महत्वाकांक्षा के गुण के साथ एक अवगुण भी था, स्वार्थ परता का। उसे सब कुछ अपने हिसाब से और स्वयं के लिए चाहिए था। उसके हिसाब से तो दुनिया भी उसके लिए ही घूम रही थी, परंतु प्रेम के वशीभूत विक्रम ने उसे पसंद कर लिया और इन अवगुणों पर ध्यान तक ना दिया। वहीं अमित की शादी गांव की सादगी भरी राधा से हुई, जो परिवार को जोड़कर रखने में विश्वास करती थी। उसके भी सपने थे जीवन के, पर चाहत सभी के साथ उनको पूरा करने की। दोनों के मन में लालच तो पहले से आ ही चुका था, और विवाह के बाद घर की हवा बदलने लगी। धीरे धीरे ख्वाहिशें विष का काम करने लगी, और जहां कल तक दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थे, आज विषवेल फैलने लगी थी। लालच, अहंकार, स्वार्थ अपनी जड़ें जमाने लगे थे, और इसका प्रभाव

घर की बड़ी बहू विक्रम की पत्नी सीमा अक्सर कहती, इतनी बड़ी जमीन है लेकिन फायदा कुछ नहीं, बांट लेना चाहिए। हमारा अपना भी तो परिवार है, उसको देखना है कब तक सबको ढोकर चलेंगे। और वहीं छोटी बहू अमित की पत्नी यानी राधा यह सोचकर दुखी होती, जमीन तो रहती ही है पर रिश्ते टूट गए तो घर कैसे रहेगा। हमारा भविष्य अपनों के साथ है, संस्कार है, अपनापन है और यही तो जीवन की पूंजी है। और विक्रम अमित दोनों अपने अपने जीवन

में इतने व्यस्त थे कि उन्हें इस कड़वाहट का पता ही नहीं चला। कहाँ क्या अंधकार पनप रहा है, जीवन की चकाचौंध में वह देख ही नहीं पाए। और धीरे धीरे उनके दिलों में दूरियां और बढ़ने लगी। रामनारायण कमला जी प्रयास कर रहे थे, देख रहे थे कि किसी तरह से इसे संभाल लिया जाए। दोनों बेटों को समझा रहे थे, परंतु उनकी सुनता कौन था। शायद उनके पास सब कुछ संभालने के लिए समय भी बहुत कम बचा था।

कमला यानी दोनों की माँ रात को अक्सर आंगन में बैठकर दीपक की लौ देखते हुए कहती, नारायण जी हमसे कहाँ गलती हो गई। जो लड़के एक रोटी में साथ खा लेते थे आज एक घर में रहने से डरते हैं। कल तक जिन पर पूरा गांव गर्व करता था वैसे ही बालक बनाने की प्रार्थना करता था, आज हम भी लोगों के किस्सों में शामिल हो गए। और वह रोने लग जाती। वहीं रामनारायण जी के पास कोई उत्तर नहीं था, चुपचाप सुनते और दोनों माता पिता जागती आंखों में ही रातें बिता दिया करते।

अब लालच का पेड़ बहुत बड़ा वट वृक्ष बन चुका था और इसी लालच ने रूप ले लिया था बहस का, विवाद का। और एक सुबह जमीन बांटने की बात पर दोनों भाइयों में बहुत भयंकर झगड़ा हो गया। परिवार का छोटा बेटा में चिल्लाया, मैया माँ बाप की सेवा की बात करो, तुम बस जमीन के हिस्से गिनते हो, माता पिता की आवश्यकताओं को तो देखना भी आवश्यक लगता नहीं तुम्हें, सब सब मैं अकेले कर रहा हूँ। बड़े बेटे विक्रम ने गुस्से में जवाब दिया, और तुम तो बस यही चाहते हो कि मैं कुछ भी ना बोलूं, सब तुम्हें मिल जाए, सेवा का दिखावा करके पूरा मेवा अकेले खाना चाहते हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और यही विवाद बैठक से गुजरता हुआ रसोई तक पहुंच गया। साथी सीमा और राधा दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया और यह तनाव इतना बड़ा कि रसोई में बना भोजन अमृत नहीं विष का काम करने लगा और दूरियां बढ़ती जा रही थी। और बूढ़े हो चुके माता पिता ने जब रोकने की कोशिश की, अपनी असहायता भी दिखाई, संस्कारों की दुहाई भी दी, उनके बचपन का प्रेम भी याद दिलाया, यूं कहें कि सारे हथकंडे अपना लिए, पर दोनों भाइयों की आवाजें इतनी ऊंची हो चुकी थी कि प्यार की सारी बातें उसमें ही दब गईं और ऐसा लगने लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और आगे कोई रास्ता नहीं। क्रोध में आकर एक दिन अमित घर छोड़कर गांव के दूसरे सिरे पर रहने चला गया ताकि वह विक्रम की पूरी संपत्ति को हत्या लेने वाली बात को गलत साबित कर सके। और विक्रम अपने माता पिता से अलग हो गया क्योंकि पहले भी सेवा तो अमित ही कर रहा था और वह सेवा अब समाप्त हो गई थी। उसी रात कमला ने रोते रोते कहा, नारायण जी अब इस घर की दीवारों में भी हमें अपनापन नहीं लगता, प्रभु ही कोई राह दिखाए।

कुछ ही महीनों में लगातार तनाव से पहले रामनारायण बीमार पड़े। डॉक्टर ने कहा उन्हें शांति चाहिए, लेकिन घर में शांति कहाँ थी, तनाव बढ़ता ही जा रहा था। वैसे सच है, कभी कभी हम बच्चे अपने स्वार्थ में अपने माता पिता की उम्र का भी नहीं सोचते, उनके जीवन के अंत का कारण तक बन जाते हैं। और यहाँ यही हो रहा था। पिता के बीमार होने पर भी दोनों बेटों में बहस जारी रही, पैसों की, जमीन की, जिम्मेदारी की। और एक दिन सुबह राम नारायण ने अंतिम सांस ले ली, और जिसका सब कुछ टूटा था वो थी केवल कमला जी। कल तक जिससे सारे दर्द कह लेती थी, आज वो भी चला गया, सब खत्म कर गया। और 2 महीने बाद लगातार यही दुख झेलते झेलते वे भी संसार से चली गई। मृत्यु के पहले उन्होंने बस इतना ही कहा, काश तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। ये बात सुनकर भी दोनों भाइयों का अहंकार कम नहीं हुआ। उनके अंतिम संस्कार तक में वो दूर दूर बैठे थे। काश माँ की अंतिम इच्छा सोचकर ही एक हो जाते।

अंतिम संस्कार के बाद पंडित हरिदास, जो कि राम नारायण जी के अभिन्न मित्र थे, दोनों को किनारे पर ले गए और थोड़ी कठोर और सच्ची आवाज में कहा, पिता की चिता ने तुम दोनों को जुदा नहीं किया, तुम्हारे लालच ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। तुम लोग जमीन बांटने में लगे रह गए, तुम्हारे हाथों के रिश्ते जलकर खाक हो गए। विक्रम, अमित, क्या किया तुमने? अपने माता पिता को ही खो दिया अपने लालच में। विक्रम और अमित का सीना भारी उठा। पहली बार दोनों ने महसूस किया कि वे वास्तव में अकेले पड़ चुके हैं, आगे सब अंधकार है। उन्हें पछतावा लग रहा था, कल तक जो एक दूसरे की गलतियां खोज रहे थे, आज कहीं ना कहीं अपनी गलतियां देखने लगे थे। कहा भी है ना, किसी को एक अंगुली दिखाने पर तीन अंगुलियां अपनी ओर रहती हैं, और यहां भी यही हो रहा था। कल तक जो एक उंगली उठी थी, आज उन तीन उंगलियों को भी देख पा रहे थे जो उनकी ओर थी।

अगले कुछ दिन तक घर एकदम खाली सा पड़ा था। दीवारें भी रो रही थी, सन्नाटा था, जीवन में पछतावा था और पछतावा उम्र भर का कि काश हमने समझा होता तो शायद हमारे माता पिता हमारे साथ होते। एक दिन अमित चुपचाप घर आया, उसने देखा कि विक्रम अकेला बैठा है, माता पिता की तस्वीर साफ कर रहा है। दोनों की आंखें मिली और बिना बोले आंसू बह पड़े। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, अमित माता पिता को तो खो दिया, अब नहीं चाहता कि तुझे भी खो दूं। अमित ने हाथ पकड़ते हुए कहा, भैया दिल में प्यार हमेशा था, बस लालच और गुस्से ने आंखों पर पर्दा डाल दिया था। दोनों पहली बार लंबे समय के बाद गले मिले, दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी। इधर राधा और सीमा भी रो पड़ी, उन्हें भी अपनी भूलों का एहसास हुआ।

पंडित हरिदास और गांव के बुजुर्गों ने उन्हें सलाह दी कि तोड़ने वाली ताकतें बहुत होती हैं, पर जोड़ने के लिए संगठन चाहिए। दोनों भाई उसी शाम गांव के किसानों की बैठक में शामिल हुए। वहां जमीन को जोड़कर खेती करने, आधुनिक तरीकों को अपनाने और एक साझा संगठन बनाने पर चर्चा की। विक्रम बोला, हम दोनों ने जमीन बांटने की गलती की, अब हम इसे जोड़कर एक साथ खेती करेंगे। अमित ने समर्थन किया और गांव वालों के लिए भी एक किसान संगठन बनाएंगे ताकि कोई परिवार हमारी तरह ना टूटे, गांव तरक्की करे। हम सभी मिलकर ऐसी खेती करेंगे जिसमें कोई रसायन का प्रयोग ना हो। सोलर सिस्टम से हम पूरे गांव की बिजली की समस्या का निदान करेंगे। हम मिलकर करेंगे तो गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। साफ सफाई, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, सबका प्रयास अपने परिवार के लिए नहीं, अपने गांव के लिए करेंगे और गांव को आदर्श गांव बनाएंगे। यही हमारे माता पिता के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी और हमारी ओर से क्षमा याचना भी। गांव वालों ने तालियां बजाकर स्वागत किया।

संगठन बनने के बाद गांव की उपज दुगनी होने लगी, किसानों को बाजार में उचित दाम मिलने लगा, युवक युवतियां गांव छोड़कर शहर जाने के बजाय यहीं रोजगार पाने लगे, रिश्तों में खटास कम होने लगी। विक्रम और अमित ने मिलकर राम नारायण कमला कृषि सहयोग समिति इस नाम से अपने माता पिता की याद में एक केंद्र बनाया। गांव में जब कोई लड़ाई या मनमुटाव होता तो लोग कहते, जाकर विक्रम अमित से बात करो, उनका घर टूटकर जुड़ा है, वे समझाएंगे। और इस सब के साथ गांव को देश के माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा सम्मान भी मिला।

माता पिता को खोना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन उनकी यादों ने हमें एक कर दिया। हम समझ गए, जमीन, पैसे, चीजें सब दोबारा मिल सकती हैं, पर रिश्ते टूट जाएं तो दोबारा नहीं बनते, और यदि बनते हैं तो संगठन, एकता और प्रेम से ही बनते हैं। सभा में बैठे प्रत्येक व्यक्ति की आंखें भर आईं। गांव के बच्चे आज भी कहानी सुनते हैं कि कैसे विक्रम और अमित ने लालच से घर को तोड़ा और प्यार और संगठन से फिर से बना लिया।

रिश्ते। अभी आप सुन रहे थे विधि जैन की लिखी ये गीतों भरी कहानी उन्हीं के स्वर में। संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम चले।

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5 बजने को है। आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी सभा। इस सभा में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवा वाणी।

0: और बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: श्रोताओं नमस्कार, युवावाणी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो इस कार्यक्रम में आइए हम सभी सुनते हैं मेरी पसंद जिसकी मेजबानी कर रही हैं उज्ज्वला।
4: नमस्कार, मैं उज्ज्वला आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो मेरी पसंद में। जब बात रात की हो तो हमारे जहन में सबसे पहला शब्द जो आता है वो है सुकून। सुकून शब्द से मुझे गुलजार साहब की कही ये बात याद आ गई, थोड़ा सुकून भी तो ढूंढिए जनाब, ये ज़रूरतें तो कभी ख़त्म नहीं होंगी। इसी के साथ पहला गाना

ये सुकून भरा गाना अरिजीत सिंह की आवाज में आपने सुना। बात रात की हो रही थी तो हम हिंदी सिनेमा के इस गाने को कैसे भूल सकते हैं, जो बहुत लोगों के दिल के काफी करीब है। निकाह फिल्म का ये गजल, चुपके चुपके रात दिन, जिसे गाया और कंपोज किया है गुलाम अली साहब ने, आइए सुनते हैं।

इस गजल को सुनकर किसी गुमनाम शायर की ये दो लाइनें कहना चाहूंगी। कभी सोचा ना था गैर के लिए इतना रोएंगे, अपने दिन रात को यूं बेचैनी में खोएंगे।

हर किसी के अपने मायने हैं रात के वक्त के लिए। किसी के लिए चैन, किसी के लिए सुकून, किसी के लिए बेचैनी और किसी के लिए मी टाइम होता है ये रात का वक्त। इसी के साथ सुनते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में फिल्म वो कौन थी का ये आइकॉनिक गाना।

जब बात प्यार, मोहब्बत, सुकून और रात की हो रही हो, तो हम अपने माँ बाप को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने हमारे लिए अपने कई रातों की नींद खोई है। ये कुछ लाइन मैं अपने पापा और जितने भी पापा मुझे सुन पा रहे हैं, उनके लिए कहना चाहूंगी। बिस्तर का गीला करना या रातों को रोना, एक पापा ही थे जिनसे छीना मैंने उनका सोना था। सुबह तक जो गोद में खिलाते, झूले में झुलाते, फिर दिन में ऑफिस जाते, शाम में चले आते थे। कभी खुद से परेशान, कभी दुनिया के सताए थे, फिर भी एक पापा ही थे जो मुझे रोते हुए हंसाते थे। इसी के साथ सुनते हैं आज के शो का ये आखिरी गीत, सांवली सी रात, फ्रॉम द मूवी बर्फी बाय अरिजीत सिंह, विच इज कंपोज्ड बाय प्रीतम।

यूं तो बातें करने में मज़ा आ रहा है, लेकिन वक्त की पाबंदी है, तो आज के लिए मैं उज्ज्वला आपसे इजाज़त लेती हूँ। जीवन का आनंद लें और खुश रहें। एट लास्ट, इट्स ऑल दैट मैटर्स। टेक केयर, बाय बाय।

अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवावाणी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं भोजपुरी कार्यक्रम आरती।

आरती सुने वाला हमार सभन सुनिहार लोगिन के और विनीता के प्रेम भरा नमस्कार। एक बार फिर उसे सांझ के ही बेरा में हम रोवा लोगिन के ये अपन मन पसंद कार्यक्रम आरती के लेके आयल बानी, जो हमें हमेशा नियन आज हो जानकारी भरल बात तो करबे करम, जोर ही सुनवाए आज दिन शुक्रवार है ऐसे नीक नीक फिल्म संगीत भी। आ इही के बीच में सुनम रोवा सभे एगो वार्ता पूजा कुमारी जी से, जिकर विषय हो कि भोजपुरी सिनेमा में गांव घर के चित्रण। लेकिन सबसे पहले हम आज के खास तारीख के बारे में रउआ सभी के बताते चली कि आज है 29 मई। आज हुए के दिन भारत के उत कद्दावर नेता, माटी के लाल और किसानन के मसीहा कहे जाए वाला चौधरी चरण सिंह जी के पुण्यतिथि है। जब जब देश में किसानन के भलाई या गांव के विकास पर बात होगी, तब तब चौधरी चरण सिंह जी के नाम सबसे ऊपर आ रहे। किसानन के हक खातिर ई महापुरुष अपन पूरा जिंदगी खेत खरिहान लुटा देहलन। ई अलग बात बा कि वो हमने इनके भारत देश के 5वां प्रधानमंत्री जरूर रहन, लेकिन उनका वह कुर्सी से बेसी प्यार किसानन के खुशहाली से रहे। उनकर कहा नाम रहे कि देश के समृद्धि के रास्ता गांव के खेत अखारिहान से होके गुजरेला। उत्तर प्रदेश के जमींदारी प्रथा के खत्म करवावे में, किसानन के शोषण से बचावे खातिर पटवारी राज में सुधार करवावे में उनकर बहुते बड़ योगदान रहल है। आ उनकर यही सभन महान काम खातिर उनका मरणोपरांत 2024 में भारत रत्न से सम्मानित कर गई, जो उनकी हर एक किसान और गांव के लोगिन खातिर गर्व के बात बा। ता आज उनकर पुण्यतिथि पर हम इन सभन उनका याद तो करते बनी, साथ ही इहो संकल्प उठावे के चाही कि जितना बन पड़ो कोनो किसान भाई के मदद जरूर करें। तो चली अब ई जानकारी से भरल बात के बाद रउआ सभी के मन लगावे के भी जिम्मेदारी तो हमरे नु हो, तो आई अपन जिम्मेदारी निभाई हम और इस सुनाई रोवा सभे के नदिया किनारे मुरा गांव फिल्म से ई संगीत। तो सुनी सभे ए संगीत के

0: वाह, कितना नीमन लागल है संगीत। गंगा किनारे मोरा गांव हो, घर पहुंचा तो देवी मैया। आ कितना नीक तरह से है गाना में, हर एक शब्द हर एक लाइन रहल हो। तो इतना नीक आवाज में उषा मंगेशकर जी के हमने सभी अभी संगीत के सुननी, आगे भी ऐसने नीक आवाज हम लोग आके जरूर सुनवाई। लेकिन अभी अगर बात करी तो भोजपुरी भाषा के बात अगर हमारे दिमाग में आवेला तो सबसे पहले हमारे आजकल के गीत और सिनेमा पर ध्यान जरूर चल जाला। तो आई सुनवाई हम रोह सभी के एगो वार्ता पूजा कुमारी जी से, जेकर विषय है भोजपुरी सिनेमा में गांव घर के चित्रण। तो सुनी सभी ए वार्ता के।
1: बबनी बबनी, गांव घर भोजपुरी फिल्मी गीतन के एगो मुख्य विषय के रूप में शुरुआते से लोकप्रिय रहल बा। भोजपुरी सिनेमा के इतिहास पर नजर डालल जाओ तो फिल्मी गीतन में गांव घर भोजपुरी फिल्मी गीतन के एगो मुख्य विषय के रूप में शुरुआते से लोकप्रिय रहल बा। भोजपुरी सिनेमा के इतिहास पर नजर डालल जाओ तो फिल्मी गीतन में गांव घर माटी रीति रिवाज संस्कार आदि विषय रचनाकार आ निर्माता लोग के बीच सहजे रूप में देखल जा सकेला। भोजपुरी सिनेमा के पहिलका फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो 60 के दशक के खूब चर्चित आ लोकप्रिय फिल्म रहे, जौना के प्रसिद्ध अभिनेता नाजीर हुसैन जी लिखले और निर्देशन कुंदन कुमार कैले। एह फिल्म के कमाल के लोकप्रियता मिलल। शीर्षक गीत से लेके लुक चुक बदरा, अब त लागल 16वां साल काहे बसुरिया बजौल,

सब गीतन में गांव घर सहजे रूप में देखल जा सकेला। गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो में गीतकार शैलेंद्र जी और गीतकार चित्रगुप्त जी रहले। 1963 में विदेशिया व 1965 में गंगा फिल्म के गीतन में गांव घर के भरपूर चित्र भइल बा। मन्ना डे के आवाज में हंसी हंसी पनवा खियौले बेईमनवा में नायिका के परदेसी साजन के गांव छोड़ी के विदेश में रहे के बिरह वेदना के मार्मिक वर्णन भइल बा। संगीतकार एस एन त्रिपाठी के मधुर संगीत से सजल विदेशिया फिल्म में रिमझिम बरसेला बदरवा दिनवा गिनत मोरी अंगुरिया खियैले में ग्रामीण संस्कृति संस्कार आ मनोहर दृश्य के झलक दिखाई देला। गीता दत्त सुमन कल्याणपूर्ण मन्ना डे महेंद्र कपूर जैसन गायक गायिका लोक आवाज में गवई मिठास रचल बसल बा। 1965 के भोजपुरी फिल्म गंगा में सुजीत कुमार आ कुमकुम के मुख्य भूमिका रहे। चित्रगुप्त जी के संगीत में लता मंगेशकर के गावल कान्हा तोरी वंशी के जुलमी रे तान में ग्रामीण जीवन और संस्कृति के झलक मिलेला। प्रारंभ के दशक 1960 से 1970 से 80 में फिल्मी गीतन में खेत में फैलल हरियाली नदी के धार आम के बाग बगीचा खेत खलिहान किसान जीवन आदि विषय के अभिव्यक्ति खूबे भइल बा। नदिया के पार फिल्म में कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया गुंजा रे में गाँव के मनोहर दृश्य बा। भोजपुरी फिल्म गीतन के प्रारंभिक 3-4 दशक माने 1960 से 1990 से 2000 ईस्वी के दौर में विषय आ कथ्य बदलल समाज के झलक प्रस्तुत भइल बा। सन 2000 के समय आ परिवेश में आजीविका के तलाश में पलायन के दर्द फिल्मी कहानी या गीतन में अभिव्यक्त भइल बा। जब नायक रोजी रोजगार के तलाश में शहर व परदेश जाता तब पीछे छूटल गांव, घर माता पिता पत्नी के बिरह वेदना भोजपुरी समाज और फिल्मी गीतन के प्रमुख विषय के रूप में सामने प्रस्तुत होत बा। पहले के समय में परदेश चाहे गांव से भेजल लिखल चिट्ठी में गांव घर के परिवेश में सोन सुगंधी रहत रहे। लिखित लिखित पतिया भेजावे रजमतिया जैसन गीत में गांव घर के जरूरत खेती बारी पर्वत त्योहार आदि के सहज यथार्थ चित्रण भइल बा। ग्रामीण परिवेश संयुक्त परिवार रिश्ता नाता के मधुर भाव से रचल गीत मन प्राण पर अमित छाप छोड़ेला। 1970 के दशक के भोजपुरी फिल्मी गीतन में गवई संस्कृति के झलक दिखाई देला। लोकप्रियता फिल्म बलम परदेसिया के गीत बाली उमर लड़िकैया गोरिया खेत के आरी में आम अमरैया खेत बघार आ ग्रामीण परिवेश के सौगरी दृश्य भरल पड़ल बा। 1980 के दशक में गंगा किनारे मोरा गांव जैसन बेहद लोकप्रिय फिल्म खातिर यादगार रहल बा। जल्दी जल्दी चल रे कहार सूरजा डूबे रे नदिया शीर्षक गीत गंगा किनारे मोर गांव में घर के सुंदर आ मन भावन दृश्य देखत जा सकेला। 1990 के दशक में भोजपुरी सिनेमा के संक्रमण काल के शुरुआत भइल जब प्रारंभिक लोक धुनन के ऊपर आधुनिकीकरण के प्रभाव पड़ल। शहरीकरण के दौर में भोजपुरी एल्बम आ कैसेट सीडी के प्रचलन भइल बाकी गुणवत्ता में कमी आइल। ई दौर भोजपुरी सिनेमा के कुछ बरिस खातिर कमजोर अवस्था में ले आइल बाकी 2000 ईस्वी के बाद एही में फेर से तेजी आइल। 2000 में 2010 के बीच ससुरा बड़ा पैसा वाला जैसन फिल्म 2004 ईस्वी में धमाल मचावलस मनोज तिवारी के अभिनय आ गायकी से सजल एक फिल्म के गीतन में खूब प्रसिद्धि मिलल। 2005 में मनोज तिवारी या श्वेता तिवारी के मुख्य भूमिका में आयल फिल्म गांव घर के मनोरम दृश्य आम के बगीचा खेत पोखर नहर बांध के झलक देखल जा सकेला। शीर्षक गीत कब अबू अंगनवा हमार में मनोज तिवारी या कल्पना के गावल गीतन में ग्रामीण समाज रिश्ता नाता रीति रिवाज के झलक बा। 2010 से 2020 के दशक में निरहुआ रिक्शा वाला प्रतिज्ञा बार्डर जैसन फिल्मन के कथ्य कहानी

0: अदृश्य पर वैश्विक बदलाव के प्रभाव पड़ल। फिल्म के शूटिंग लंदन, नेपाल जैसन लोकेशन पर होखे लागल। जहाँ तक आज के भोजपुरी सिनेमा के बात बा, भोजपुरी के व्यापक क्षेत्र आ दर्शकन के खास समुदाय दोनों के बीच एगो अलग तरह के परिवेश निर्मित भइल बा। गांव घर भोजपुरी के विषय बा, लेकिन ओकरा पर वैश्विक प्रभाव आ बदलत आधुनिक समाज के खास प्रभाव सहज रूप से देखल जा सकेला। गांव के पगडंडी पक्का सड़क के रूप में, कच्चा खपरैल मकान, पलानी झोपड़ी अब पक्का के रूप में, तो पहिरावा ओढ़ावा के पारंपरिक से आधुनिक रूप में बदलाव भोजपुरी फिल्मन के कथ्य विषय आ समाज संस्कृति में दृष्टिगोचर होत बा। कुल मिला के लगभग 60-70 बरिस के भोजपुरी सिनेमा के दौर में प्रारंभिक 40 बरिस के फिल्मी गीतन में ओ समय के गांव घर समाज संस्कृति के यथार्थ चित्रण बा। ओमे 21वीं सदी के 20-25 बरिस में भोजपुरी फिल्मी गीतन में बदलल आधुनिकी समाज के प्रभाव आ ओकर अभिव्यक्ति देखल जा सकेला। आज के बदलल सिनेमा के दौर में गीतन के बोल आ कथ्य में व्यापक बदलाव आयल बा। जहाँ शुरुआती भोजपुरी फिल्मन में लोक भावना, संस्कृति आ संस्कार प्रमुख रहे, वहाँ में आजकल के सिनेमा में आधुनिकता और व्यवसाय शामिल बा। वर्तमान समय में फिल्मी गीतन में तेजी से हिट होके के होड़ मचल बा। साथ ही व्यूज के फेरा में गाना के बोल द्वि अर्थी भाषा के प्रयोग पारिवारिक दर्शकन पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहल बा। पहले के भोजपुरी फिल्मी गीतन में शुद्ध रूप से माटी, लोक संस्कृति, संस्कार और रीति रिवाज के प्राथमिकता देहल जात रहे। उहवे आज के गीतन में अपराध, एक्शन, असामाजिकता, जागरूकता देखल जा सकेला। 2010 से 2020 के दशक में गायक से नायक बनल अभिनेता लो भोजपुरी फिल्मन में अपना अपना चर्चित भोजपुरी के एल्बम से कुछ गीतन के आपन भोजपुरी फिल्मन में शामिल कैले बा। ए में दिनेश लाल यादव, निरहुआ, मनोज तिवारी, पवन सिंह, खेसारी लाल के खूब लोकप्रियता मिलल। जहाँ तक भोजपुरी सिनेमा के पहला 50 वर्ष भोजपुरी लोक संस्कृति, लोकाचार, समाज संस्कृति के आपन मुख्य विषय बनौलस, उहवे पिछला 20-25 वर्ष के भोजपुरी फिल्मन गीतन में सस्ती लोकप्रियता फुहरता के अधिकायत बा। कुल मिला के आज के सिनेमा में बदलत समाज आ परिवेश के प्रभाव दृष्टिगोचर होत बा। एह तरह से भोजपुरी फिल्मी गीतन में भी समाज के बदलल रूप, गांव घर के परिवर्तन के झलक दिखाई देत बा।
1: बहुत निमन आपनी वार्ता के जरिए बात कहली। अभी अभी हमने उनके सुनत नहीं जा पूजा कुमारी जी से वार्ता भोजपुरी सिनेमा में गांव घर के चित्रण पर। तो सबसे पहले तो इनका के धन्यवाद दही आ साथे साथे देखी हमू कहल चाहम कि भोजपुरी सिनेमा के जन शुरुआत भइल रहनो फिल्म गंगा मैया तोह पियरी चढ़ैबो से, ओकरा बाद आयल नदिया के पार, ये सब ऐसन फिल्म रहे जेकरा देख के लागत रहे कि हमनी के केकरो सिनेमा हॉल में ना बलुक अपन गांव के कोनो ब्याह शादी चाहे नथारी में बैठल बन जाए। उ देवर भाभी के नोक झोंक, उ काकी चाची के दुलार, उ पोखरा के भीड़ आ मकई के खेत, इहे तो असली गाँव रहे। लेकिन समय बदलल तो सिनेमा भी बदलल। आजू के दौर में जब निरहुआ, पवन सिंह आ खेसारी लाल यादव के फिल्म आवेला तो ओहू में गाँव के एगो नया रूप दिखाई देला। अब गांव के लड़का ट्रैक्टर चलावत रहे, हाथ में मोबाइल बा, लेकिन ओकर मिजाज आजू उहे गमकौआ बा। पर गांव के चित्रण हंसे गावे तक सीमित नहीं है। भोजपुरी सिनेमा में पलायन के दर्द के भी बखूबी देखावल जाला। जब गांव के कोनो लड़का रोजी रोटी खातिर परदेश जाला तो पीछे छूटल ओकर मेहरारू, बूढ़ माई बाबूजी के जे विरह बा, उ देख के आँख में लोर छितरा जाला। संयम अगन।

हिमालय प्रदेश से लेके आजू के गारन तक ई दरस साफ झलकेला। हाँ, ये अलग बात बा कि आजकल कुछ गानन में गांव के संस्कृति के थोड़ सा लाउड और फुहर तरीका से भी दिखावे के कोशिश कइल जाता, जेकर आलोचना भी होखता, लेकिन अंत में जीत वही सिनेमा के होखेला जेमें गांव के माटी के खुशबू होखे, ना कि फुहर पर। तो कुल मिला के बात ये बा कि जब तक गांव बा तब तक भोजपुरी सिनेमा बा। गांव है तो छठ है, चैती है, फगुआ है, आ हमनी के इस सुंदर संस्कृति है। तो गांव के चित्रण भोजपुरी फिल्म में सबसे नीक तरह से देखे के भेटा जाला। बात तो जैसा रहे सब बात कहबे कैली पूजा कुमारी जी अपन वार्ता के जरिए। तो यही के साथे साथे एक वो और बात हम कहम कि गांव घर में हमने के जब लूक लहर चलत रहनु तो दादी नानी एकदम कहत रही कि घरे के भीतर लुकाल रह सब। आ आज 2 दिन से जो मौसम करवट लेले बा, मत पूछी कतना राहत भेंट आइल बा गर्मी से। ना तो लागत रहे नु कि गर्म हवा से मुंह देह सब झुल सात हो गए, पानी एकदम अदहन नियन गर्म हो जात रहे टंकी के। आ दोपहरिया में तो ऐसन लहर चलत रहे कि तनिका दूर चलला पर हल्कान होके आदमी हाँफे लागत रहे। लेकिन हाँ, यह बैसाख के गर्मी में जब आम के पेड़ से टिकोरा गिरे लनु तो गांव में लोग चुन चुन के ओकरा के घरे ला के चटनी पीसे ला, आ का स्वाद लागे लनु ओकर कि का कहे के। लेकिन बात बा कि गर्मी कतनो पड़े, काम रही तो घर से बाहर आता जाही पड़ी बाकी ना। तो ओइसन में आपन ख्याल राखल बहुत जरूरी हो जाला। सत्तू के शरबत होके, चाहे आम पन्ना, चाहे मौसमी कोनो फल होके, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, आ इहे सब हन के आपन प्रमुख भोजन बनाई। आ देखते बनी अभी तो बेल के समय बा, बेल फोड़ी शरबत बनाई है मस्त पेट के ठंडा ठंडा राखेला। आ बासी खवासी जोन सामान होके घर में पाकल ओकरा के तो एकदम मत खाई सब। ई ना कि फ्रिज में रख देनी या 2 दिन बाद तक खाते नहीं, एकदम ही गलती मत करी। आ जीभ के स्वाद के तनिका राखी ताखा पर, आ तलल पाकल भोजन के एकदम ना कही। ई सब सभन चीज जोन होला एकरा से परहेज करी। अपन अंगौछा बानो मने गमछा बस जिंदाबाद, ओकरा के तो एकदम मत भोराई। माथा तो तोपाइले रहला, उसे साथे कतहु पानी पसीना आवे तो मस्त पोछहु के काम आ जाला। मुंह नाक भी तोपाई आ भारो ना बुझाई, तबानु एकदम निमन चीज। तरुआ सभे कहूँ बाहर निकली तक हल्का रंग के कपड़ा पहनी, सूती कपड़ा पहनी कि देह में तनी गर्मी कम लागो, हवा के संपर्क रहो। आ गमछा के बात कही नहीं, चाहे दुपट्टा बा माथा ढक के चली, काहे कि रउआ सभे स्वस्थ रहम तबे नु हमहूँ मन मनसाइल रहम। आ देखी मन मनसावे पर याद पड़ल कि अभी तो एगो औरी फिल्म संगीत सुनावही के नु बाकी बा, हम चुप हो कम तबे न सुन सकम रउआ सबे। तो चली अब एकदमे देर ना करी आ सुनवाई रउआ सबे के आयल बसंती बहार फिल्म से उषा मंगेशकर जी के आवाज में ई फिल्म संगीत। तो सुनी सबे ए संगीत के।

लागल नो नीमा नींद करी हो संगीत, लेकिन साच पूछी तो हमार मन एकदम ना भरल। आ रउओ सभी के जरूर मन तनिका तनिका ललचाइले रह गई, तो कहे ना लगले एगो और ऐसे निक संगीत रउआ सभी के सुनवा दी, तो सुनी सभी लगले यही गीत के।

माइकिरिए, 7 दिन की तभी आके छतिया लगाएगे। अरे 7 दिन की तभी

कैसन लागल ई संगीत? लागल रुनी हमरो बहुत बढ़िया लागल हा। तो ई रहे मधुमालिनी जी के आवाज़, दिलराज कौर जी के आवाज़। तो सभन संगीत खातिर सभन केहू के बहुत बहुत धन्यवाद। आ लेकिन देखी जात जात हम अपन भोजपुरिया जनजीवन से जुड़ल जौन बात बतावे ला, तो वह सब के आज के बढ़त तरक्की करत युग में भंडारण के महत्व भुलाइल चल जाता है। दोनों में आवत दुरंते में खत्म हो जाता, दोनों में सामान आवता सामान तुरंत खत्म। लेकिन पहले के बेरा में दादी नानी लोगिन घर में माटी के भाड़ी बनावत रही, हर तरह के छोट रहे बड़ रहे, आ ओमे बर बरसात के बेरा खातिर अनाज ढेरिया के रखात रहे, जेकर रूप आज ड्राम ले ले बा। तो आपातकाल खातिर बहुत जरूरी बा भंडारण कइल, बाकी तो हर घड़ी बाजार में सभी कुछ भेटाते बा, लेकिन तबहुओं घर में भी जुटा के जरूर रखे के चाही। आ चली अब ये के साथ हमार जाए के बेरा भ गइल, तो यह मंगल कामना के जोरे के हमार सबन सुनिहार लोगिन स्वस्थ सानंद रहस। हमार मने राव विनीता के निहोरा बा कि अब हमरा के जाए देवल जाओ। प्रणाम।

अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी कार्यक्रम आरती। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, आइए आपको इस सभा में आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी दे दें।

6:05 पर आप सुनेंगे भोजपुरी बुलेटिन। छह बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। छह बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता, विकास में बाधक सामाजिक कुरीतियां, वार्ताकार होंगी रागिनी मिश्रा, साथ ही आनंद ले सकेंगे पारंपरिक लोकगीतों का, कलाकार होंगी उषा कुमारी।

7 बजे का वक्त होगा किसान भाइयों के कार्यक्रम खेती गृहस्थी का। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता, पशुओं से मनुष्य में होने वाले रोग। वार्ताकार होंगे डॉक्टर अजीत कुमार और सुनेंगे लोकगीत उषा कुमारी के स्वर में। सात बजकर 52 मिनट पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भजन, कलाकार होंगे चक्रपाणी मिश्र। आठ बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

श्रोताओं 8:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी एट द रेट 90। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे महिला सशक्तिकरण में आकाशवाणी का योगदान। प्रस्तुति श्रीमती अलका प्रियदर्शनी की, स्वर सहयोग कुंजन कुमार। नौ बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे रेडियो साहित्यिक पत्रिका पर आधारित कार्यक्रम शब्द शिल्प। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे संपादकीय कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाग

कर सुनेंगे जरा सोचे, अपने को जीवित रखिए। सुनेंगे स्वर्गीय उषा किरण खान से उनकी कहानी और सुनेंगे कविता अभिलाषा कुमारी से, स्वर सहयोग रानू सिंह का, प्रस्तुति होगी आकाशवाणी पटना की। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत थीम पर आधारित कार्यक्रम आज की रात। दस बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली के। श्रोताओं, ये थी इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब वक्त हो चला है अगले कार्यक्रम का, आइए सुनते हैं भोजपुरी बुलेटिन।
1: प्रणाम, ये आकाशवाणी पटना है। अब रउआ सभे लोग चंद्रमोहन से भोजपुरी में समाचार सुनी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करके पटना लौट आइल बाड़े। मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के भागलपुर के तिलकपुर गांव में स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में शामिल होके के न्योता दहले। ऐसे पहले श्री चौधरी कृषि आ किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात कैले रहन। इस दौरान राज्य में कृषि क्षेत्र के विकास के लेके मुख्य रूप से चर्चा भइल। राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल अधिकारी लोग के राज्य में लंबित लगभग 3,10,000 दाखिल खारिज आवेदन के निपटारा 15 दिन के भीतर निश्चित रूप से करे के निर्देश दले बाड़े। विभागीय सचिव जय सिंह इस संबंध में सब समहर्ता लोग के चिट्ठी जारी कैले बाड़े। चिट्ठी में कहल गइल बा कि राजस्व कर्मचारी और अंचलाधिकारी लोग के सामूहिक छुट्टी के कारण भारी संख्या में दाखिल खारिज आवेदन स्क्रूटनी स्तर पर लंबित हो गइल बा। विभाग की ओर से सब जिला के लंबित मामला के तेजी से निपटारा खातिर जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करे के निर्देश दहल गइल बा। पटना, गया, नालंदा, वैशाली, बक्सर, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी समेत कई गो जिला में तेज हवा के साथ मूसलाधार पानी बरस रहल बा। इस जगह ओला गिरे के भी खबर बा। पटना और आसपास के इलाका में आंधी के कारण कई जगह पेड़ पौधा और बिजली के खंभा उखड़ गइल बा, जेकरा से आवागमन और बिजली आपूर्ति व्यवस्था बाधित हो गइल बा। खेतन में लागल फसल के साथ साथ आम और लीची के फसल के भी भारी नुकसान भइल बा। वज्रपात के अलग अलग घटना में 4 लोग के मौत हो गइल बा। पटना में 2, औरंगाबाद आ गया जी में 1-1 व्यक्ति के मरे के खबर बा। एने मौसम विभाग के पूर्वानुमान में अगला 24 घंटा के दौरान प्रदेश के ज्यादातर हिस्सा में बारिश के संभावना बा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आंधी पानी और ओलावृष्टि से भइल फसल के नुकसान के सर्वे करावे के आदेश दहले बाड़े। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री बतौले कि इस संबंध में कृषि और आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश दिहल गइल बा, ताकि प्रभावित किसान के उचित राहत दिहल जा सके। मौसम विभाग की ओर से जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम बारिश होखे के पूर्वानुमान जतावल गइल बा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर एम रविचंद्रन बतौले कि देश भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान होखे वाली बारिश औसतन दीर्घकालीन पूर्वानुमान के 90% रहे के संभावना बा। पूर्वोत्तर भारत में वर्षा सामान्य रहे के सबसे ज्यादा संभावना बा, जबकि मध्य दक्षिण और उत्तर पश्चिम भारत में बारिश सामान्य से कम रही। विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा कहले कि जून महीना में देश के औसत बारिश सामान्य से कम रहे के संभावना बा। ये दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गुजरात के कई हिस्सा से सामान्य से ज्यादा लू चले के आशंका बा। पटना जिला के दानापुर अनुमंडल दंडाधिकारी अनिरुद्ध पांडे अनुमंडल में स्थित गंगा नदी के साथे साथे और दूसर नदी में भी चले वाली नाव और मोटर बोट के परिचालन पर रोक लगा दहले बाड़े। उ कहले कि सूर्यास्त के बाद

0: और सूर्योदय के पहले तक ई रोक लगावल गई बा। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग काल एक दिन के दौरा पर बोध गया आ रहल बाड़े। वहां विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करी हैं। साथ ही वहां के म्यांमार के अलग अलग बौद्ध मठ के दौरा के भी कार्यक्रम बा। राष्ट्रपति के आगमन के लेके बोध गया में सुरक्षा के कड़ा इंतजाम कल गई बा। भागलपुर के जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी कहले कि विक्रमशिला सेतु पर 7 जून से पहले गाड़ी के परिचालन शुरू हो जाई। बेली ब्रिज निर्माण के निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी कहले कि तकनीकी ऑडिट के रिपोर्ट पर एगौरी बेली ब्रिज के निर्माण करावल जा रहल बा। निर्माण कार्य में सीमा सड़क संगठन और पुल निर्माण निगम के अधिकारी कर्मी लगातार जुटल बाड़े। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सदाकत आश्रम में आज से 3 दिवसीय सूर्योदय संकल्प शिविर के आयोजन कल जा रहल बा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम बतौलें कि शिविर के मुख्य उद्देश्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारधारा और सिद्धांत के जन जन तक पहुंचावे के बा। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार वितरण समारोह में शेखपुरा जिला के 3 गो पंचायत केवटी महासूर और डीह कुसुम्भा के मुखिया लोग के सम्मानित कल जाय। जिला पंचायती राज पदाधिकारी बतौले की 3 जून के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में चुनल गई मुखिया लोग में दीपक कुमार साधु चौधरी और मथुरा यादव के सम्मानित कल जाय। एकरे साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक हिजा समाप्त भइल।
1: अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी बुलेटिन, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं जेफ्रा फिल्म का ये गीत संतोष विंगे और एरा उड़पी की आवाज में। गीत लिखा है दीपक वी वारती ने और इसे संगीत दिया है रवि ससरूर ने।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं युद्ध फिल्म का ये गीत अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाज में। कुणाल वर्मा की लिखी इस रचना को दर्ज दिया है तनिष्क वागची ने।

श्रोताओं, पल पल दिल के पास इस फिल्म का गीत सुनिए, सचिन टंडन और परंपरा ठाकुर की आवाज में। गीत लिखा है सिद्धार्थ गरिमा ने और इसे संगीत दिया है सचेत और परंपरा ने।

0: एकस्यापि योग्यस्य छात्रस्य भविष्यं परीक्षापराधीनां हस्ते अथवा कस्यापि प्रकारस्य दुराचारस्य कारणेन पीडितं न भवेत्।
1: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं की

0: महाराजा यादविंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट क्रीडांगणे न्यू चंडीगढ़ नगरे महत्वपूर्णे क्वालिफायर द्वितीय स्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं सार्धसप्तवादने भविष्यति। विजेतृदलं रविवासरे अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे अन्तिमस्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इत्यनेन दलेन सह स्पर्धिष्यति इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं किसान भाइयों का ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी।

0: नमस्कार चंपा बहन।
1: नमस्कार प्रिया।
0: हाँ, और बताइए क्या हाल चाल है। वैसे कल शाम से जो मौसम बदला है ना, वाह,
1: कहा वाला बात है। जरा तो रौद से कनी राहत भेटल।
0: हाँ,
1: सच में बड़ा सुकून लगे।
0: और जिस तरीके से बारिश हुई, पता है, पत्थर भी, वो बर्फ का भी पड़ा।
1: हाँ।
0: और इतना मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना आज, बहुत ही मजा आया। मतलब ऐसा लगा ना कि जैसे क्या कहें, शायद शब्द नहीं है, इतनी खुशी और इतना आनंद मिल रहा है।
1: अच्छा, अही तरह के एक और खुशी
0: हाँ,
1: है। आजकल जे धियापुता सब पढ़ाई लिखाई करे छे, तो पहिने होइ छलै कि जे पाइक अभाव में क्षमता रहितो छात्र छात्रा नहीं पढ़ पाबै छलै
0: हाँ,
1: हँ।
0: ये तो बात सही है।
1: मुदा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से अब वो समस्या समस्या नहीं रहल,
0: हाँ,
1: अब
0: क्योंकि
1: ओकर समाधान भेट गेल।
0: क्योंकि हर तबके के लोग हैं और हर तबके के लोगों की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। जैसे कि आपने कहा है कि अगर मान लिया कि बच्चों का एक सपना होता है कि मैं इस 10वीं की पढ़ाई के बाद जब उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाऊं, तो किसी को इंजीनियरिंग में जाना है, किसी को साइंस लेना है, किसी को कुछ,
1: हाँ, कोनो
0: और
1: तरह
0: किसी
1: से
0: किस
1: अपन
0: भी क्षेत्र
1: पढ़ाई।
0: में।
1: हाँ,
0: लेकिन आर्थिक तौर पे जब अभिभावक संबल नहीं होते हैं, ऐसे में सपनों को टूटते देखा है और बच्चों को कभी कभी बिखरते भी देखा है। तो ऐसे में ये जो सरकार के द्वारा ये जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, ये समझिए कि एक कहते हैं ना कि संजीवनी बूटी की तरह है।
1: स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना दू तरह होइत अछि। पहिल जे बैंक द्वारा पढ़ाई के खर्च आ क्रेडिट स्कोर बनाबे के लेल देल जाइत अछि। दोसर, राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के लेल देबय वाला शिक्षा ऋण के लेल क्रेडिट कार्ड अछि। बैंक व वित्तीय संस्थान द्वारा जारी कयल गेल पारंपरिक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के मुख्य उद्देश्य छात्र आ छात्रा के बिना कोनो ठोस क्रेडिट इतिहास के रोजमर्रा के खर्चा के प्रबंधन करय में मदद करैत
0: और
1: अछि।
0: ये इतना इतना अच्छा है कि आप मतलब वित्तीय तौर पे अगर देखें, आप सरकारी संस्थान की बात करें और आप बैंक में जाते हैं, तो ये इतना एक तरीके से कि दोनों ही जो तरीके के, जो एक सरकार के द्वारा राज्य अपने तरफ से जो चलाती है और एक बैंक चलाती है, दो तरीके का जैसे आपने बताया, तो उसमें दोनों ही, दोनों के अगर प्रकार बोले तो एक जैसे हैं, कार्य एक
1: हाँ,
0: जैसा है।
1: माने मिनिममो अच्छे आ मैक्सिममो अच्छे
0: मैक्सिमम भी है।
1: इनमें।
0: अब जैसे सरकारी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की ही अगर बात करूं, तो राज्य सरकारें आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चलाती है। इसमें बात करें तो इस योजना के तहत छात्रों को 4 लाख तक का शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है। ये लोन पूरी तरह से ब्याज मुक्त होता है या बहुत ही नाम मात्र ब्याज पर मिलता है। मतलब अगर ब्याज भी है तो नाम मात्र में। इसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल का खर्च और किताबों का खर्च शामिल होता है। इसकी किश्त
1: पढ़ाई से संबंधित चाहिए।

0: हमरा जे आइ काल्हि लैपटॉप हो कम्प्यूटर हो ई सब अबैत अछि जे लोक कऽ रहल अछि। देखियौ क्रेडिट लिमिटेड आमतौर पर एहि कार्डके लिमिट बहुत कम होइत अछि ताकि छात्र कर्जमे नहि डूबे। क्रेडिट स्कोर समय पर बिल चुकाबसँ छात्र आ छात्राके क्रेडिट स्कोरमे सुधार सेहो होइत छै।
1: हाँ ये तो है,
0: जे भविष्यमे अधिक लोन लेबामे मददगार होइत अछि।
1: और ये कोई बाध्यता नहीं है कि आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो उस समय आपको उसे चुकाने की जरूरत, जब आप किसी जॉब में जाते हैं तो उसमें भी बहुत सारे जो नियम हैं, जब आप क्रेडिट कार्ड बनवाने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप उसके तहत अपने सपनों को पूरा करने के साथ
0: एहि तरह देखियो
1: चुका भी सकते हैं।
0: फीस आ छूट, फीस में छूट कोन तरह के, एहि में कोनो वार्षिक शुल्क नहीं होइत अछि आ किछु कार्ड पर किताब व ग्रॉसरी के खरीदारी पर कैश बैक सेहो भेटैत अछि। भारत के किछु राज्य विशेष कर बिहार आ झारखंड में राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के लेल ई योजना चलाओल जा रहल अछि। लोन राशि कतेक अछि से देख लियौ। एहि योजना के तहत जेना अहाँ कहलहुँ 4 लाख धरि के शिक्षा लोन देल जाइत अछि। ब्याज दर सामान्य वर्गक छात्र के लेल 4% वार्षिक ब्याज दर होइत अछि। महिला, ट्रांसजेंडर आ दिव्यांग छात्रक लेल ई ब्याज दर मात्र 1% वार्षिक होइत अछि। योग्यता आवेदक राज्य के स्थायी निवासी होबाक चाही आ ओ 12वीं यानी कि इंटरमीडिएट के परीक्षा पास कहने होती।
1: हाँ, क्योंकि जब भी मामला आता है आप अपने करियर का चुनाव करते हैं तो वो इंटरमीडिएट के बाद ही होता है, तो ऐसे में ये इतनी बड़ी राहत है चंपा मैम कि जिसे करने के बाद मुझे लगता है कि सपनों को उड़ान भरने में कोई रोक नहीं।
0: मैं देखियो जो कौन तरह के पात्र भ सकते, सामान्य पात्रता बैंक व सरकारी योजना के आधार पर मानदंड भिन्न भ सकते। आवेदक के आयु सीमा आमतौर पर 18 से 25 वर्षक बीच होबाक चाही। छात्र आ छात्रा कोनो मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के हिस्सा होबाक चाही। आवश्यक दस्तावेज जेना अछि आवेदक के आधार कार्ड एवं पैन कार्ड, एकरा संगे आवास प्रमाण पत्र, माता पिता के आय प्रमाण पत्र, कॉलेज व विश्वविद्यालय के ऑफर लेटर आ फी स्ट्रक्चर पासपोर्ट साइज फोटो हो, सब अनिवार्य है।
1: बिल्कुल, क्योंकि प्रमाण के तौर पे जब ये सारी चीज़ें आप उपलब्ध कराते हैं तो आपको बड़ी आसानी से और बहुत सहजता से आप ही की राहत के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ये मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि जब इतनी अच्छी संभावनाएं हैं सामने तो क्यों इसे मतलब इससे अछूता रहना, अपने सपनों की उड़ान भरें। और उड़ान भरने के साथ ही साथ जो हमारे कार्यक्रम की जो विशेषता होती है, बातों के साथ ही साथ हम कुछ ना कुछ गीत का आनंद भी अपने श्रोताओं को करवाते हैं, तो आज उषा कुमारी की आवाज़ में सुनते हैं ये लोक भजन।
0: सुनो।

0: बहुत ही प्यारा ये लोक भजन हमने सुना उषा कुमारी की आवाज़ में, और हम और भी इनसे लोकगीत ज़रूर
1: हाँ
0: सुनेंगे।
1: हाँ
0: अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे राहत की, जो ये राहत हमें मौसम से मिली, दूसरी जो स्टूडेंट्स को ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से मिली, वही अगर राहत मिल सकती है अपने जीवन में भी, तो वो है कि जब हम कभी भी कहीं जाना होता है तो सड़कों पर आते ही हैं, सड़क से ही गुजर कर किधर भी जाते हैं, तो अगर सड़क सुरक्षा से संबंधित कुछ जो प्रबंधन है वो हम समझ ले, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी कभी भी हम कभी किसी खबर में सुनेंगे कि कोई एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं।
1: हाँ
0: तो क्यों ना इसी पर आधारित एक वार्ता सुनते हैं, सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रबंधन। वार्ताकार है नरेश कुमार।
1: सड़क केवल रास्ता नहीं, जीवन की यात्रा है। एक छोटी सी लापरवाही किसी परिवार की खुशियां छीन सकती है। सड़क पर जरा संभल कर चलिए जनाब, यहाँ तेज रफ्तार अक्सर जान ले जाती है। घर पर कोई माँ दुआओं में बैठी होती है, जो हर सफर से सलामत वापस जाती है। सड़क सुरक्षा आखिर क्यों जरूरी है? भारत में हर वर्ष लाखों सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं तो हजारों लोग जीवन भर के लिए घायल हो जाते हैं। दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है तेज गति, शराब पीकर वाहन चलाना, मोबाइल का उपयोग, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग न करना। याद रखिए, दुर्घटना से देर भली या केवल नारा नहीं, बल्कि जीवन बचाने का

0: मंत्र है। सड़क सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान, भारत में सड़क सुरक्षा के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 तथा उसमें किए गए संशोधन लागू है। हेलमेट और सीट बेल्ट अनिवार्य। दो पहिया वाहन चलाते समय चालक और पीछे बैठे व्यक्ति दोनों के लिए हेलमेट जरूरी है। चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति इसका पालन नहीं करता तो जुर्माना लगाया जा सकता है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, जीवन की ढाल है। सीट बेल्ट की आदत ही सुरक्षा का कमाल है। शराब पीकर बाहर चलाना अपराध है। नशे की हालत में वाहन चलाना कानूनी अपराध है। ऐसे मामलों में भारी जुर्माना, लाइसेंस निलंबन और जेल तक का प्रावधान है, क्योंकि नशा जब आंखों पर छाता है तो इंसान मौत को खुद बुलाता है। तेज गति से वाहन चलाना, ओवर स्पीडिंग सड़क दुर्घटनाओं का बड़ा कारण है। निर्धारित सीमा से अधिक वाहन चलाने पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। याद रखिए, रफ्तार से नहीं समझदारी से मंजिल मिलती है। मोबाइल फोन का उपयोग, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना या मैसेज करना अत्यंत खतरनाक है। यह ध्यान भटकाता है और दुर्घटनाओं का कारण बनता है। कानून इसके लिए भी दंड का प्रावधान करता है। बिना लाइसेंस वाहन चलाना, वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाना अपराध है। नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर उनके अभिभावकों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाती है। ट्रैफिक सिग्नल का पालन, लाल बत्ती पार करना, गलत दिशा में वाहन चलाना और जेब्रा क्रॉसिंग का उल्लंघन करना भी कानूनी अपराध है। सड़क पर अनुशासन ही सुरक्षा की पहली शर्त है। आम जनता को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? अब प्रश्न है, हम अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए क्या करें? हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, ट्रैफिक संकेतों को समझें और उनका पालन करें। हेलमेट और सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। छोटी दूरी हो या बड़ी, सुरक्षा में कभी समझौता न करें। वाहन की नियमित जांच कराएं। ब्रेक, लाइट, टायर और इंडिकेटर सही स्थिति में हो। बारिश और धुंध में सावधानी। खराब मौसम में धीमी गति रखें और हेडलाइट का सही उपयोग करें। पैदल जातियों का सम्मान करें। जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल चलने वालों को परहेज पहले रास्ता दें। बच्चों को सड़क सुरक्षा सिखाएं। बच्चों को सड़क पार करने और ट्रैफिक नियमों की जानकारी देना हर परिवार की जिम्मेदारी बनती है। मित्रों, घर से निकलने हों तो घर लौटना भी जरूरी है। सड़कों पर हर कदम जिम्मेदारी से भरपूर हो। आप सुरक्षित रहेंगे तभी परिवार मुस्कुराएगा। आपकी सावधानी ही जीवन का सबसे बड़ा गुरूर है। समाज और प्रशासन की भूमिका, सड़क सुरक्षा केवल सरकार या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, यह समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। विद्यालयों में सड़क से संबंधित शिक्षा, सड़क किनारे जागरूकता अभियान और ट्रैफिक नियम का ईमानदारी से पालन, इन सब के माध्यम से दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। यदि कहीं दुर्घटना हो जाए तो घायल व्यक्ति की मदद करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। भारत में गुड समेरिटन दिशा निर्देशों के तहत मदद करने वाले व्यक्ति को कानूनी संरक्षण भी दिया जाता है। सड़क सुरक्षा केवल नियम नहीं, जीवन के प्रति सम्मान है। एक छोटी सावधानी कई जिंदगियां बचा सकती है। नियमों का जो मान करेगा वही सुरक्षित सफर करेगा। धीमी रफ्तार, संयम का साथ, यही है जीवन रक्षा का हाथ।
1: तो अभी हम लोगों ने बहुत ही उपयोगी वार्ता सुनी, सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रबंधन। नरेश कुमार जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से इसके बारे में जानकारी दी। इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हमने वादा किया था
2: कि कुछ गीत सुना देते हैं, तो सुनो
1: उषा कुमारी से ये प्यारा सा लोकगीत।

0: बहुत ही प्यारा ये लोकगीत सुना। हमारे बिहार की मिट्टी जो है ना, उसकी सुगंध जो कहते हैं, अब बात मिट्टी हो या लिट्टी चोखा की हो या फिर लोकगीतों की हो, तो इसकी जो मिठास है ना, अपने आप में अनूठा है।
1: हाँ
0: और अभी जैसे हमने सुना, तो क्यों ना एक और हम सुनते हैं उषा कुमारी की आवाज़ में
1: हाँ सुनो
0: लोकगीत।
1: जरा।

0: बहुत ही प्यारा ये हमने लोकगीत सुना उषा कुमारी के आवाज़ में। और कहते हैं ना, लोकगीतों की जो छटा होती है, और जब झूमने का मन होता है तो मतलब हर प्रकार के जो गाने हैं ना, वो हमारे लोकगीतों में होते
1: हाँ
0: हैं।
1: निश्चित है।
0: चाहे जैसे कहते हैं ना कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक, मृत्यु के बाद बाद का
1: हाँ
0: भी हमें लोकगीतों की रंगों में दिख जाता है। और इसकी जो बात है वो अपने आप में अनोखा है। और हर समय का, अगर मान ले कोई जाता पहले के
1: सोलह
0: जमाने में,
1: संस्कार अपना समिच्छे,
0: हाँ
1: जाहि में एक संस्कार मृत्यु के है,
0: हाँ
1: और हर संस्कार के गीत गाकर व्यक्त करके खुशी जाहिर करके एक तरीका, एक मृत्यु ही संस्कार एहन है जकरा मुख्य भाव से पहचान होइत अछि।
0: हाँ
1: ओहिमे गिरी तो ककरो निर्गुण है, लेकिन
0: हाँ
1: ओहि समय के ककरो गाबे के इच्छा नहीं रहैत अछि। ओ गायक गायिका के आँख से नोरे खसत, सुनो वाला के सेहे बात होइ छै। लेकिन अहिना चलै छै दुनिया, जीवन
0: हाँ
1: में तो।
0: दुनिया तो ऐसी ही चलती है।
1: हाँ
0: वही जन्म की बात करें तो जन्म उत्सव पे भी कितना, मतलब
1: हाँ
0: अगर भगवान की भी बात करें तो उनके भी जन्म उत्सव पे कितने अच्छे अच्छे जो लोकगीत हैं वो हम आज भी

0: सुनते हैं, जो हमारे कलाकार होते हैं उनसे, और ये हमारी धरोहर है। इसे आज के जो बच्चे हैं ना, उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये जो धरोहर है उसे हम संभाल करके रख सकें। तो जहाँ तक संभालने की बात है, तो अब जो समय हो चला है वो चौपाल की घड़ी यहीं समाप्त करनी होगी, और थोड़ी ही देर बाद हम बात करेंगे खेती गृहस्थी की।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: अब बात खेती गृहस्थी में, हम हमेशा अपने किसान भाइयों और बहनों के फ़ायदे की करते हैं, और जो आज का विषय है वो बहुत ही खास है। हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि गर्मी का मौसम आता है, उसमें कभी बरसात होने लगती है। अभी जैसे कल की ही बात करें, तो कल से जो मौसम बदला है उसमें झमाझम बारिश हमें तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन हमारे किसान भाइयों के लिए, उनके फसल जो उत्पादन की अगर बात करें, या जो भी अभी कार्य वो कर रहे हैं, उसके लिए कितना फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
2: दोनों मिलल जुलल असर छे, बुझलिए। कोनो फसल के लेल बहुत फायदामंद है, तो आम आ ठीक अखन सीजन तक लेल कनी हार्म भ गेलै, चूँकि आंधी पानी में सब आम झड़ि गेलै। तो जे पाई लगा कर किने छथि तिनका अखन दिक्कत भ गेलै।
0: तो मतलब जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन का असर हमें कृषि
2: कृषि
0: पर
2: पर,
0: देखने को
2: हाँ
0: मिल रहा है।
2: देखियो, जलवायु परिवर्तन अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के प्रभावित करते हैं। जेना खरपतवार के बढ़ाकर
0: तो इस तरीके से जो जलवायु
2: फसल
0: परिवर्तन
2: आ खरपतवार के बीच स्पर्धा के तीव्र करब,
0: जो है।
2: कीट पतंग एवं रोगजन के श्रेणी के विस्तार करब अछि। जलवायु परिवर्तन के अर्थ अछि वातावरण में दीर्घकालिक बदलाव, जाहि में तापमान, बरखा, हवा के गति आ मौसम के अन्य पैटर्न परिवर्तन शामिल।
0: बिल्कुल, जैसे तापमान में वृद्धि और जल संकट के कारण मुख्य फसलों की पैदावार में भारी गिरावट आ रही है। जैसे तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से, अगर जो तापमान है, तो गेहूं के उत्पादन में लगभग 15 से 20% तक की कमी आ सकती है।
2: हाँ देखियो, ई प्राकृतिक कारण वा मानव गतिविधि जना प्रदूषण, उद्योगीकरण आ वनक कटाई के कारण भ सकैत अछि, जाहिसँ पृथ्वी के पर्यावरण प्रभावित होइत अछि। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के स्थिति गंभीर दिशा में पहुँच रहल अछि, जेनाकि हमसब भोगि रहल छी, आ पूरा विश्व में एकर असर देखऽ के भेट रहल अछि। संयुक्त राष्ट्रक जलवायु रिपोर्ट में बताओल गेल अछि कि जलवायु परिवर्तन के पर्यावरणक सब पहलू संगे संग वैश्विक आबादी के स्वास्थ्य आ कल्याण पर व्यापक प्रभाव पड़ रहल अछि।
0: बिल्कुल, वही
2: जलवायु परिवर्तन मृदा में होबय वाली प्रक्रिया एवं मृदा जल के संतुलन के प्रभावित करैत अछि। मृदा जल के संतुलन में अभाव आबय के कारण बस सूखल माटि आ शुष्क भऽ जायत, जाहिसँ सिंचाइक लेल पानिक मांग बढ़ि जाइत अछि।
0: बिल्कुल, वही मॉनसून के पैटर्न में बदलाव और अत्यधिक बारिश से बाढ़ व जल भराव की स्थिति बनती है, जिससे खड़ी फसलें नष्ट हो सकती हैं। वहीं सूखे की स्थिति में सिंचाई के लिए पानी की भारी कमी हो जाती है। वहीं गर्म और आर्द्र जलवायु कीट पतंगों और खरपतवार को पनपने के लिए अनुकूल होते हैं। इससे फसलों में नई बीमारियों का खतरा बढ़ता है, और कीटनाशकों का खर्च तब हमारे किसान भाइयों और बहनों का बढ़ जाता है। और वहीं बात करें, अत्यधिक गर्मी और पानी की कमी से मवेशियों के स्वास्थ्य और उनके दूध उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। मतलब जब आप कृषि के क्षेत्र में हैं, आप
2: तो
0: कृषक
2: चारों
0: हैं।
2: तरह के वातावरण देखा पड़ते, चाहे वो माल मवेशी के हो, फसल के हो, या तीमन तरकारी के हो, या फल फूल के हो। देखो के देखियो, उच्च तापमान, अनियमित वर्षा, बाढ़, अकाल, चक्रवातक संख्या में बढ़ोतरी कृषि जैव विविधता

0: लेल संकट उत्पन्न कऽ रहल अछि।
1: तो
0: बढ़ैत तापमान आ असमय वर्षासँ फसल के वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ैत अछि। एहि फसल उत्पादन मे कमी अबैत अछि। बागवानी फसल आन फसल के अपेक्षा जलवायु परिवर्तन के प्रति अति संवेदनशील होइत अछि।
1: बिल्कुल, तो ये तो हमने बात की जलवायु परिवर्तन से जो हमारे कृषि पर जो
0: हाँ
1: प्रभाव पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार भी हम खुद ही हैं, क्योंकि हम जिस तरीके से कटाई कर रहे हैं जंगलों की अपने सुविधा के लिए, जबकि ईश्वर ने खुद ही, प्रकृति ने खुद ही हमें इतनी खूबसूरत सी धरती दे
0: हाँ
1: रखी है,
0: सब व्यवस्था
1: सजा करके दिया है,
0: हाँ
1: मतलब कुछ अब उसमें क्या सजाना है समझ में बात नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि एक कमरा बहुत है रहने के लिए, तो फिर भी हमें महल चाहिए। उस चक्कर में हम कहीं ना कहीं इतनी खूबसूरत सी धरती को आज इस,
0: आधुनिक सुख सुविधा के
1: हाँ,
0: वजह से हम सब स्वयं पर्यावरण के दुष्प्रभाव पड़
1: और
0: रहल
1: आज
0: छी।
1: आज जो स्थिति हम बता रहे हैं उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। तो ये तो है ही, लेकिन इसमें सुधार भी हमें ही करना है, किसी एक को नहीं, सभी को मिलजुल करके करना है। और साथ ही साथ हमें आपका भी ख्याल रखना है, अपने कार्यक्रम में आपको लोकगीतों का आनंद भी दिलवाना है। तो उषा कुमारी से सुनते हैं प्यारा सा लोकगीत।

0: लोकगीत हमने सुना उषा कुमारी की आवाज में, और समय रहा तो जरूर सुनेंगे। अभी समय हो चला है एक वार्ता सुनने का, पशुओं से मनुष्यों में होने वाले रोग। वार्ताकार हैं डॉक्टर अजीत कुमार। तो चंपावन सुने।
1: हाँ,
2: भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि एवं पशुपालन है। शहरीकरण होने के कारण कृषि योग्य भूमि कम होते जा रहे हैं, लेकिन देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते लोग पशुपालन को व्यवसाय के रूप में अपना रहे हैं। पशुपालन के द्वारा किसानों को आर्थिक लाभ मिलने के साथ साथ उच्च गुणवत्ता के पौष्टिक आहार जैसे दूध, मांस, अंडा आदि मिलता है, जिसके कारण पशुओं का हमारे स्वास्थ्य, भोजन और पोषण से सीधा संबंध है। लेकिन इसके साथ ही साथ ध्यान देने योग्य मुख्य बातें यह है कि पशुओं से बहुत सारे रोग मनुष्यों में फैलता है, जिसका असर मनुष्यों के स्वास्थ्य पर बुरा पड़ता है। वैसे रोग जो पशुओं से मनुष्यों एवं मनुष्यों द्वारा पशुओं में फैलता है, उसे जूनोटिक रोग कहते हैं। जूनोटिक रोगों का दुष्प्रभाव पशुओं की अपेक्षा मनुष्यों के स्वास्थ्य पर अधिक पड़ता है। जूनोटिक रोग मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के अभाव, स्वच्छता का कुप्रबंधन एवं सुअर या मुर्गी या गाय भैंस का कच्चा या अधपका मांस खाने से होता है। पशुओं से मनुष्यों या मनुष्यों से पशुओं में होने वाले जूनोटिक रोगों का खतरा किसानों या वैसे लोगों में ज्यादा होता है जो पशुओं या पशु उत्पाद के ज्यादा संपर्क में रहते हैं। इसके अलावा बदशाला एवं पशु उत्पाद संस्करण संस्थानों में काम करने वाले मनुष्यों एवं शहरी क्षेत्रों में कुत्तों, बिल्लियों के पालने वाले लोगों या जैविक उद्यानों में जंगली जानवरों के संपर्क में रहने वाले मनुष्यों में जूनोटिक रोग होने का खतरा अत्यधिक रहता है। सामाजिक आर्थिक स्थिति से पिछड़े लोगों में परजीवी जनित जूनोटिक रोग ज्यादा होता है, क्योंकि ये लोग वैसे मांस के भाग को खाते हैं जो खाने योग्य नहीं होता है। मांस को पूरी तरह न पकाना या अधपका खाना, संक्रमित कुत्ता या सुअर या बिल्ली के संपर्क में रहना एवं स्वच्छता तथा स्वास्थ्य के प्रति सचेत न रहना जूनोटिक रोग फैलने का मुख्य कारण है। पशुओं से मनुष्यों में होने वाले प्रमुख जूनोटिक रोग हैं स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, रेबीज, सिस्टिसरकोसिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, एंथ्रेक्स, जियार्डियसिस, अमीबियसिस, ब्रुसलोसिस, टॉक्सोकेरियोसिस इत्यादि। स्वाइन फ्लू एक जूनोटिक विषाणु जनित घातक रोग है। आमतौर पर सुकर इस विषाणु के बाहक का कार्य करते हैं, जिसके कारण इससे होने वाले रोगों को स्वाइन फ्लू कहते हैं। स्वाइन फ्लू से प्रभावित सुअर के छींकने या खांसने के समय इस रोग के विषाणु द्रव कण के साथ बाहर निकलकर हवा के साथ सांस के द्वारा दूसरे सुअर या संपर्क में रहने वाले मनुष्यों में प्रवेश कर जाता है। फिर संक्रमित मनुष्य के छींकने या खांसने के समय विषाणु नाक एवं मुंह से निकले द्रव कण के साथ बाहर निकलते हैं, जो फिर हवा के साथ सांस के द्वारा या द्रव कण से संक्रमित तौलिया, तकिया आदि वस्तु के छूने के बाद फिर संक्रमित हाथ को नाक या मुंह के पास रखने से विषाणु

शरीर के अंदर प्रवेश कर स्वाइन फ्लू रोग से संक्रमित कर देता है। स्वाइन फ्लू से संक्रमित सुअर में बुखार, छींकना, खांसी, सुस्ती, भूख कम लगना, सांस लेने में तकलीफ आदि लक्षण प्रकट होता है। जबकि स्वाइन फ्लू से संक्रमित मनुष्य में बुखार, सर दर्द, खांसी, गले में खराश, थकान, कमजोरी, नाक से पानी बहना, उल्टी, मांसपेशियां में खिंचाव इत्यादि लक्षण दिखाई पड़ते हैं। स्वाइन फ्लू का टीका सूअरों में लगाकर इस रोग को मनुष्यों में फैलने से रोका जा सकता है। संक्रमित सुअर के उपचार एवं देखभाल करने के समय हाथों में दस्ताना एवं चेहरे पर मास्क का उपयोग कर इस रोग के प्रसार का को रोका जा सकता है। मनुष्य को खांसते या छींकते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल या टिश्यू पेपर से ढककर खांसना चाहिए। सूअरों से मनुष्यों में फैलने वाले दूसरा प्रमुख रोग है सिस्टिसरकोसिस। सिस्टिसरकोसिस रोग मनुष्यों में टीनिया सोलियम फीता कृमि के लार्वा अर्थात सिस्टिसरकोसिस सेलुलोसिस से संक्रमित सुअर का कच्चा या अधपका मांस खाने से यह लार्वा मनुष्य में प्रवेश कर यह रोग पैदा करता है। सिस्टिसरकोसिस रोग के कारण संक्रमित सुअर में लक्षण बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, पर मनुष्य में इस रोग के कारण भूख की कमी, वजन में कमी, सोने में परेशानी, उल्टी, पाचन में गड़बड़ी, पेट दर्द जो भोजन ग्रहण करने के बाद ठीक हो जाता है लक्षण प्रकट होता है। लार्वा के मनुष्य के मस्तिष्क में पहुंचने पर न्यूरोसिस्टिसरकोसिस रोग होता है, जिसके कारण मनुष्य में मिर्गी, भूख की कमी, उल्टी, मांसपेशियां में कमजोरी, धुंधला दिखाई पड़ना आदि लक्षण दिखाई पड़ते हैं। एक अध्ययन में पाया गया है कि भारत में 5 से 20% इपिलेप्सी अर्थात मिर्गी आने का मुख्य कारण मनुष्य में न्यूरोसिस्टिसरकोसिस रोग होता है। मनुष्यों में सिस्टिसरकोसिस रोग के रोकथाम हेतु मनुष्यों को खुले में मल त्याग नहीं करना चाहिए बल्कि सदा शौचालय का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि संक्रमित मनुष्य के मल से फीता कृमि का अंडा बाहर निकलता है, फिर सुअर द्वारा मल खाने के साथ कृमि का अंडा सुअर के शरीर में प्रवेश कर सुअर के मांसपेशिया में कृमि का लार्वा पड़ा रहता है। इसलिए मनुष्य को सुअर का कच्चा या अधपका मांस कदापि नहीं खाना चाहिए, बल्कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर अच्छी तरह पकाकर खाना चाहिए। संक्रमित सुअर में कृमिनाशक दवा का प्रयोग पशु चिकित्सक से सलाह लेकर करते रहना चाहिए। कुत्तों द्वारा मनुष्यों में होने वाला एक प्रमुख विषाणु जनित जूनोटिक रोग है रैबिज। रैबिज रोग मनुष्यों में प्रायः इस विषाणु से संक्रमित कुत्ता के काटने से होता है। रैबिज रोग के विषाणु कुत्ता के लार में रहता है। कुत्ता के काटने से इस रोग के विषाणु काटे गए पशु या मनुष्य में प्रवेश कर रैबिज रोग पैदा करता है। रैबिज रोग के शांत रूप एवं उग्र रूप दिखाई पड़ता है। रैबिज रोग के कारण कुत्ता में सुस्ती, जबड़ा में पैरालिसिस, मालिक का आदेश न मानना, चलते हुए मनुष्यों, पशुओं या निर्जीव वस्तुओं पर आक्रमण कर काटने का प्रयास करना, मुंह से अत्यधिक लार गिरना आदि लक्षण दिखाई पड़ता है। पागलपन के लक्षण दिखाई देने के बाद 10 दिनों के अंदर कुत्तों की मृत्यु हो जाता है। इस रोग का लक्षण मनुष्य एवं पशुओं में कुत्ता द्वारा काटे गए शरीर के स्थान से मस्तिष्क की दूरी पर निर्भर करता है। मस्तिष्क से नजदीक कुत्ता के काटने पर रैबीज रोग का लक्षण बहुत कम समय में दिखाई पड़ता है। मनुष्य में रैबीज रोग का प्राथमिक लक्षण है बुखार एवं सरदर्द, फिर मस्तिष्क में सूजन, व्यग्रता, बेहोशी आदि लक्षण प्रकट होता है। रैबीज संक्रमित मनुष्य एवं पशु पानी से दूर भागता है, क्योंकि इस रोग में जबड़ा में पैरालिसिस हो जाने के कारण संक्रमित मनुष्य या पशु प्यास लगे रहने के बावजूद पानी सामने रहने पर भी पीने की कोशिश करने पर जबड़ा खोलने में दर्द होता है। रैबीज रोग से मनुष्य और पशुओं को बचाने हेतु पालतू कुत्तों को समय अनुसार टीका लगाते रहना चाहिए। कुत्ता काटने पर पशु को तुरंत नजदीक के पशु चिकित्सक से संपर्क कर काटे गए दिन से 0वें, 3रवें, 5वें, 7वें, 14वें एवं 30वें दिन टीके लगानी चाहिए। सड़क या गली में आवारा घूमते कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण कर इस रोग से मनुष्यों को बचाया जा सकता है। हाथ में किसी प्रकार का जख्म होने पर कुत्ता काटे गए पशु के मुंह में हाथ नहीं डालना चाहिए। कुत्ता काटने पर तुरंत नजदीक के चिकित्सक से

0: संपर्क कर समुचित इलाज शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि लक्षण प्रकट हो जाने पर इलाज संभव नहीं हो पाता है और मृत्यु ही होना तय है। मुर्गियों एवं पक्षियों से मनुष्यों में होने वाला एक प्रमुख विषाणु जनित जूनोटिक रोग है बर्ड फ्लू। इस विषाणु के H5N1 प्रकार का वायरस मनुष्यों के लिए जानलेवा होता है। मनुष्यों में बर्ड फ्लू रोग से संक्रमित मुर्गियों के या उनके मल के संपर्क में रहने से ज्यादा होता है। संक्रमित मुर्गियों को मारने या अधपका मांस खाने से भी बर्ड फ्लू रोग मनुष्यों में होता है। बर्ड फ्लू के कारण मुर्गियों में अचानक मृत्यु होने लगता है। इसके अलावे पतला दस्त, नाक श्राप, खांसी, छींक आदि लक्षण भी प्रकट होता है। मनुष्यों में बर्ड फ्लू के कारण बुखार, सर दर्द, खांसी, गले में खराश, निमोनिया, मांसपेशियों में दर्द आदि लक्षण दिखाई पड़ते हैं। बर्ड फ्लू से बचाव हेतु संक्रमित मुर्गियों के देखरेख में सावधानी बरतनी चाहिए एवं सदैव मांस का प्रयोग करना चाहिए। मुर्गियों के मांस को अच्छी तरह पकाकर खाना चाहिए। मरे हुए मुर्गियों से दूर रहना चाहिए। अतः पशुपालकों को मेरा सलाह है कि खाने पीने में स्वच्छता को अपनाकर मुर्गियों या सुअरों के मांस को अच्छी तरह पकाकर खाना एवं संक्रमित पशु के देखरेख में मांस का उपयोग कर खुद को पशुओं से होने वाले जूनोटिक रोगों से बचा सकते हैं।
1: अभी बहुत ही उपयोगी वार्ता हमने सुनी, पशुओं से मनुष्यों में होने वाले रोग। वार्ताकार थे डॉक्टर अजित कुमार, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते जैसा कि हमने आपसे वादा किया था,
2: हाँ हाँ, एक गीत सुना के
1: तो उषा कुमारी के,
2: हाँ, उषा कुमारी से।
3: बच्चा जब स्मार्ट होगा।

0: उषा कुमारी की आवाज़ में ये प्यारा सा हमने लोकगीत
1: हाँ
0: सुना। अब
1: बहुत निक लगला
0: बहुत ही
1: बेटा,
0: अच्छा, इनको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद। आप चला के समय से हो बहुत चुका लेच, तो चल
0: नमस्कार चंपा बहन।
1: नमस्कार प्रिया।

0: अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, कुछ ही पल में हम सुनते हैं प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
3: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।

0: Akashwani at 90.
1: इधर आइए, इधर
2: इधर।
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सीमा सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग का 5 दिवसीय भारत दौरा, कल बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को सुरक्षित रखे गए फैसलों को 3 महीने के अंदर सुनाने का दिया निर्देश। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, दाखिल खारिज के लंबित आवेदनों का 15 दिनों में करें निष्पादन। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में आंधी बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में 7 लोगों की मौत, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने फसलों की क्षति के सर्वे का दिया आदेश। अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग शनिवार से भारत के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति के रूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा है। यात्रा के दौरान म्यांमार की राष्ट्रपति 1 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। यात्रा के क्रम में राष्ट्रपति कल विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरोड़ स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर बोधगया में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा है कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने राज्य में 15 दिनों के भीतर लंबित लगभग 3,10,000 दाखिल खारिज आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। विभागीय सचिव जय सिंह ने इस संबंध में सभी समाहर्ताओं को पत्र जारी किया है। यह निर्देश त्रुटि जांच स्तर पर लंबित आवेदनों के शीघ्र निपटारे को लेकर जारी किया गया है। श्री जायसवाल ने कहा है कि मामूली तकनीकी त्रुटियों के लिए आम लोगों को परेशान न किया जाए और दाखिल खारिज प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी तथा जवाबदेही बनाया जाए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को भागलपुर के तिलकपुर गांव में स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। इससे पहले श्री चौधरी ने कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात की। इस दौरान राज्य में कृषि क्षेत्र के विकास को लेकर मुख्य रूप से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 2 दिवसीय दौरे के बाद आज शाम पटना लौट चुके हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि नियमों के विरुद्ध चलने वाले प्रदेश के सभी विद्यालयों और मदरसों की जांच कराई जाएगी। फर्जी पाए जाने पर उन विद्यालयों और मदरसों को बंद किया जाएगा।
2: एकदम स्पष्ट नीति बनानी है, डिस्क्रिमिनेशन किसी भी स्थिति में नहीं होगा, और इसीलिए हमने अपने मंत्रालय स्तर पर यह तैयारी की है। हमने इसीलिए मदरसा बोर्ड के से संचालित सभी विद्यालयों की जांच का आदेश दिया है और साथ में संस्कृत विद्यालयों के भी जांच का आदेश दिया है, और वो पूरी जांच की जब रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी मंत्रालय स्तर पर उसकी समीक्षा करेंगे। और मदरसा बोर्ड और संस्कृत शिक्षा बोर्ड, ये दोनों बोर्ड से संचालित जितने भी विद्यालय हैं उनको पूरी प्रामाणिकता से आगे बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ जितने फर्जी विद्यालय होंगे उनको पूरी तरह से हटाएंगे।
0: भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकान

0: मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि यह नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में आज से 3 दिवसीय सर्वोदय संकल्प शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर का उद्घाटन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता बापू के सिद्धांतों और आदर्शों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर बापू की विचारधारा से संगठन को मजबूत बनाया जाएगा।
1: हम लोग नई आधुनिक युग में उस बापू को, विचारधारा को हम गांव-गांव तक फैलाना चाहते हैं, और इसमें जब 3 दिन का शिविर चलती है तो पूरी अलग अलग यूनिट आकर के उनको बजाबता किताब से बापू के जो कर्तव्य है, चरखा चला करके स्वदेशी आंदोलन को जिस तरह से बापू ने किया, यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन को लेकर ये सारी बातों पर चर्चा होती है।
0: पटना, गया, नालंदा, वैशाली, बक्सर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश और कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई। पटना और आसपास के इलाकों में आंधी के कारण कई जगहों पर पेड़ पौधे और बिजली के खंभे उखड़ने से आवागमन और बिजली आपूर्ति व्यवस्था बाधित हुई है। खेतों में लगी फसलों के साथ साथ आम और लीची की फसल को भी व्यापक नुकसान हुआ है। बारिश के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हुई है। गया में 3, औरंगाबाद में 2 और सारण तथा खगड़िया में 1-1 व्यक्ति के मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है। उन्होंने मृतक के निकटतम परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। इधर मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में अगले 24 घंटों के दौरान कटिहार, बांका और भागलपुर जिले में बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है।
2: दिनांक 30 मई दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों के अनेक स्थानों, उत्तर पश्चिम, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भागों के कुछ स्थानों में वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भागों का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व भागों में तेज हवा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और गरज बिजली गिरने की संभावना है। बांका और भागलपुर जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आंधी बारिश और ओलावृष्टि से हुई फसलों की क्षति के सर्वे का आदेश दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने बताया कि इस संबंध में कृषि और आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रभावित किसानों को समुचित राहत दी जा सके। पटना जिले के दानापुर अनुमंडल दंडाधिकारी अनिरुद्ध पांडे ने अनुमंडल स्थित गंगा नदी और अन्य नदियों में चलने वाले नाव और मोटर बोट के परिचालन पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले तक यह रोक लगाई गई है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। भागलपुर के जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने कहा है कि विक्रमशिला सेतु पर 7 जून से पहले वाहनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। बेली ब्रिज निर्माण के निरीक्षण के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि तकनीकी ऑडिट के रिपोर्ट पर एक और बेली ब्रिज का निर्माण करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में सीमा सड़क संगठन और पुल निर्माण निगम के अधिकारी और कर्मी लगातार जुटे हुए हैं।
1: विक्रमशिला ब्रिज पे गिरा था, ये तो हम काफी पहले, एक सप्ताह पहले लॉन्च हो चुका है, ये ब्रिज गैप हो चुका है। दूसरा जो दो जहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट

0: टेक्निकल ऑडिट रिपोर्ट ने क्वेरी किया था, उन दोनों पे भी लॉन्चिंग हो चुकी है और एक लास्ट लॉन्चिंग जस्ट बचा हुआ है, एक हमारा 140 फीट का जो स्लैब पे और बचा हुआ है, बहुत जल्द हो जाएगा। और जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया था आमजनों से कि जून के 7 जून से पहले इस पुल को हम लोग चालू कर देंगे, तो हम लोग अपने उस संकल्प पे हम लोग दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि 7 जून से पहले हम लोग इस पुल।
1: भारतीय जनता पार्टी ने बिहार प्रदेश संगठन के नए पदाधिकारियों की घोषणा की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देशानुसार जारी सूची में प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश मंत्री, कोषाध्यक्ष तथा विभिन्न मोर्चों के अध्यक्षों के नाम घोषित किए गए हैं। सूची के अनुसार पूर्व विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, राकेश कुमार, संतोष पाठक, मनोज कुमार सिंह, अनामिका पासवान, रामा सिंह, पवन जायसवाल और प्रणव कुमार यादव सहित कुल 14 नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं सरोज रंजन पटेल, धनराज शर्मा, प्रीति शेखर, नितिन अभिषेक तथा राजेश झा को प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार वितरण समारोह में शेखपुरा जिले की 3 पंचायतों केवटी, महसार और डी हंकू सुंगा के मुखिया को सम्मानित किया जाएगा। जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने बताया कि 3 जून को भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में चयनित मुखिया में दीपक कुमार, साधु चौधरी और मथुरा यादव को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जापान में आयोजित होने वाले पैरा एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाले राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ी शैलेश कुमार और हिमांशु यादव को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौधरी ने कहा कि यह पूरे राज्य के लिए गर्व और सम्मान का क्षण है। शिक्षा मंत्रालय की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत आयोजित युवा संगम फेज 6 के तहत बिहार दौरे पर आए पंजाब के 50 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में मत्था टेका। इस दौरान उन्होंने अरदास की और गुरु साहिब के जीवन और शिक्षाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने कहा कि युवा संगम कार्यक्रम देश की विविध संस्कृति, परंपरा और विरासत को समझने का सशक्त माध्यम बन रहा है। उन्होंने बिहार की ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरों की सराहना की। दरभंगा पाटलिपुत्र एक्सप्रेस का ठहराव अब सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी और डुमरा स्टेशन पर भी होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्र के माध्यम से सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर को ये जानकारी दी है। सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने बताया कि सीतामढ़ी क्षेत्र को बेहतर रेल सुविधा से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सांसद ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त किया है। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने बेगूसराय डीटीओ ऑफिस के लिपिक संजय कुमार और उसके सहयोगी दलाल शिवानंद झा को 6,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी आवेदक से गाड़ी ट्रांसफर कराने के एवज में रिश्वत ले रहा था। समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना के थानाध्यक्ष अकमल खुर्शीद को प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए थानाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के साथ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं किशनगंज जिले के बहादुरगंज थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक सावित्री कुमारी को कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार के निर्देश पर की गई है। रोहतास की सासाराम नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। निर्धारित प्रक्रिया के तहत 7 सदस्यों का चयन किया गया है। सुपौल के भीमपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा से 1 क्विंटल गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे का मूल्य 40,00,000 रुपए बताया जा रहा है। किशनगंज जिले के बहादुरगंज थाना क्षेत्र से पुलिस और एसटीएफ की टीम ने मादक पदार्थ हीरोइन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बक्सर जिले के पुलियाघाट के पास गंगा नदी में स्नान के दौरान 2 किशोरी डूब गई। इस घटना में 1 किशोरी की मौत हो गई जबकि दूसरी की तलाश जारी है। वहीं गोपालगंज जिले के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत डुमरिया घाट पर गंडक नदी पार करने के दौरान 3 लड़कियां तेज धार में बह गई। घटना के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार तलाश कर रही है। रोहतास जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में 2 मोटरसाइकिल की टक्कर में 1 युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग का 5 दिवसीय भारत दौरा कल बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर में करेंगे पूजा।

अर्चना। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को सुरक्षित रखे गए फैसलों को 3 महीने के अंदर सुनाने का दिया निर्देश। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, दाखिल खारिज के लंबित आवेदनों का 15 दिनों में करें निष्पादन। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में आंधी बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में 7 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने फसलों की क्षति के सर्वे का दिया आदेश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है मुंगेर जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता प्रशांत कुमार सिंह।
1: मुंगेर जिले में बीते कुछ दिनों से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है। जिले में तेज आंधी तूफान के साथ रुक रुक कर मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। अचानक बदले मौसम ने जहां एक ओर लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है, वहीं दूसरी ओर जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। तेज हवाओं के कारण जिले के कई इलाकों में पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए हैं, जिससे सड़क यातायात बाधित हो गया। कई प्रमुख मार्गों पर पेड़ गिरने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। इधर लगातार हो रही बारिश के कारण जिले के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। केंद्रीय मंत्री सह मुंगेर सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के निर्देश पर बीते दिनों बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अनिमेश कुमार प्रासर मुंगेर पहुंचे। यहां उन्होंने समालय स्थित संवाद कक्ष में मुंगेर और जमालपुर जलापूर्ति योजना को लेकर दोनों नगर निकाय के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि मुंगेर शहरी क्षेत्र के लगभग 15 वार्डो में जलापूर्ति की समस्या है, वहीं कुछ वार्डो में कम प्रेशर की भी समस्या है। इसको लेकर एक विस्तृत प्लान तैयार किया जा रहा है तथा अगले वर्ष गर्मी शुरू होने से पहले योजना को पूर्ण रूप से चालू करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र के जिन घरों को सीवरेज पाइपलाइन से नहीं जोड़ा गया है, उन्हें भी चिन्हित कर सीवरेज पाइपलाइन से जोड़ा जाएगा।
2: सीवरेज में भी जो छूटे हुए घर हैं, तो उस पर भी उन घरों को जोड़ने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है और बहुत शीघ्र जो है उसको भी हम लोग जो छूटे हुए घर हैं उसको भी जोड़ने का कार्य किया जाए।
1: जिले में 28 से 25 मई तक संचालित जनजातीय गरिमा उत्सव जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले माँ अभियान का समापन हुआ। जिलाधिकारी निखिल नंदा निपिकर ने बताया कि इस अभियान के तहत धारा बरियारपुर हवेली खड़गपुर एवं संग्रामपुर प्रखंडों में कुल 63 कैंप लगाए गए, जिसमें 21 अनुसूचित जनजाति टोलों में पदाधिकारियों द्वारा क्षेत्र भ्रमण कर जन जागरूकता फैलाई गई। इसके साथ ही जन सुनवाई कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि जन सुनवाई के दौरान कुल 625 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 363 आवेदनों का निष्पादन शिविर में ही कर दिया गया। जिले में किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की रफ्तार काफी

0: धीमी है। 1 अप्रैल से शुरू हुई खरीद के 59 दिन बीत जाने के बाद भी लक्ष्य का 30% भी पूरा नहीं हो पाया है। जिले को इस वर्ष 1880 टन गेहूं खरीद का लक्ष्य मिला है, लेकिन अब तक 155 किसानों से 477.265 टन गेहूं की ही खरीद हो पाई है। जिले के 54 पैक्सों का चयन गेहूं खरीद के लिए किया गया। जिला सहकारिता पदाधिकारी मीनू कुमारी ने बताया कि बाजार मूल्य अधिक रहने के कारण गेहूं खरीद प्रभावित हो रही है। इधर जिले के असरगंज प्रखंड में 466 एकड़ भूमि पर नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। जिला प्रशासन का लक्ष्य है अगले 2 वर्षों में यहां उत्पादन शुरू कराना है, ताकि स्थानीय स्तर पर हजारों युवाओं को रोजगार मिले और पलायन पर रोक लगे। जिला उद्योग केंद्र के निर्देश पर राजस्व एवं अंचल अधिकारियों की टीम ने चिन्हित 466 एकड़ जमीन की मापी नापी और पीलर लगाने का काम शुरू कर दिया है। मुंगेर के भू अर्जन पदाधिकारी पंकज गुप्ता ने किसानों से अपील की है कि जिनकी जमीन अभी भी पूर्वजों के नाम से दर्ज है, वे अविलंब अपने नाम से जमाबंदी करा लें, ताकि भूमि अधिग्रहण के दौरान मुआवजा राशि प्राप्त करने में कोई परेशानी न हो। जिले में 20 प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारी शुरू हो गई है। जिलाधिकारी निखिल धनराज निपिकर ने मुंगेर जिले में पड़ने वाले 26 किलोमीटर लंबे संपूर्ण कांवरिया पथ का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पूरे कांवरिया पथ में श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न मूलभूत सुविधाओं से संबंधित कार्यों का जायजा लिया।
1: जो मुंगेर जिले में कांवर पथ है, आने वाले श्रावणी मेला के चलते हम लोगों ने इसका निरीक्षण आज किया। सभी जिले के वरीय पदाधिकारी और लाइन डिपार्टमेंट के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे यहाँ पे। 26 किलोमीटर जो कमराय से कुमरसार हम लोगों का है, उसके बीच में जो हमारे धर्मशाला है बीसीडी के द्वारा जो मेंटेन करना है, उसका भी हम लोगों ने निरीक्षण किया और संबंधित को निर्देश भी किया है कि उसमें जल्दी से जल्दी काम शुरू करने के लिए। इसके अतिरिक्त जो पीएचडी की व्यवस्था होती है, उसको भी हम लोगों ने मुआयना किया उसका, और पीएचडी विभाग को कहा गया कि इस बार अधिक से अधिक शौचालय और पेयजल की व्यवस्था करने के लिए। एसडीओ साहब के द्वारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, उसका भी हम लोगों ने निरीक्षण किया है, और उसमें भी हम लोगों ने एसडीओ साहब को जो डायरेक्शन थे और जो लोकल स्थानीय मुद्दे थे, उस पर भी हम लोगों ने ध्यान देने के लिए कहा है। और इस बार की व्यवस्था हम लोग समय के काफी पूर्व हम लोग कम्प्लीट करा लेंगे और किसी श्रद्धालु को कोई तरह की दिक्कत नहीं हो।
0: मुंगेर जिले में ईद उल अजहा का त्यौहार धार्मिक आस्था उत्साह और भाईचारे के माहौल में मनाया गया।
2: अभी आप सुन रहे थे मुंगेर जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता प्रशांत कुमार सिंह।
3: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है भजन। कलाकार हैं चक्रपाणी मिश्रा।

सुगम संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भजन चक्रपाणि मिश्रा के स्वर में। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडिया वेव 483.1 मीटर अर्थात 21 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं बॉडीगार्ड फिल्म का ये गीत राहत फतेह अली खान की आवाज़ में। शब्बीर अहमद और नीलेश मिश्रा के लिखे इस रचना को तर्ज दिया है हिमेश रेशमिया ने।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
4: श्रोताओं, अगला गीत हमने लिया है वजीर फिल्म से, सोनू निगम की आवाज में। गीत लिखा है विदु विनोद चोपड़ा ने और इसे संगीतबद्ध किया है शांतनु मोइत्रा ने।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

AIR at 90. श्रोताओं, आइए सुनते हैं नीति मोहन की आवाज में सनम तेरी कसम फिल्म का ये गीत। समीर अंजान के लिखे इस गीत को संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

तुम बिन फिल्म का ये गीत सुनिए अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाज़ में। रचना है मनोज मुंतशिर के और संगीत अंकित तिवारी का।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुल्तान फिल्म का ये गीत राहत फतेह अली खान की आवाज़ में। गीत लिखा है इरशाद कामिल ने और इसे संगीतबद्ध किया है विशाल शेखर ने।

श्रोताओं, वक्त की कमी के कारण ये गीत आपको पुनः नहीं सुनवा पा रहे हैं, इसका हमें खेद है। अभी आप सुन रहे थे राहत फतेह अली खान की आवाज़ में सुल्तान फिल्म का ये गीत। इसी के साथ फिल्म संगीत समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं आकाशवाणी @90 विषय महिला सशक्तिकरण में आकाशवाणी का योगदान। स्वर सहयोग गुंजन कुमार और प्रस्तुति श्रीमती अलका प्रियदर्शनी की।

0: की अपनी प्रतिभा को विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए महिलाएं दुनिया के सामने ला सकती हैं। महिलाओं की कला, साहित्य और संगीत की उपलब्धियों को, उनके कौशल को मंच प्रदान करता है आकाशवाणी। आकाशवाणी उनके लिए आय का भी साधन है और अपनी कला को दुनिया तक पहुंचाने का भी माध्यम है। आकाशवाणी एट द रेट ऑफ 90, यानी 90 साल हो गए आकाशवाणी के। आपको पता है इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? आइए पूछ लेते हैं।
1: मैं गुंजन कुमार। श्रोताओं, आकाशवाणी भारत का सबसे पुराना और विश्वसनीय रेडियो प्रसारण माध्यम है। पिछले 90 वर्षों से यह देश के लोगों तक समाचार, शिक्षा, संगीत, संस्कृति और मनोरंजन पहुंचाने का कार्य कर रही है। आकाशवाणी ने भारत की आवाज बनकर हर वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम किया है। आकाशवाणी की शुरुआत वर्ष 1936 में हुई थी। उस समय इसे ऑल इंडिया रेडियो कहा जाता था। बाद में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। धीरे धीरे ये देश के गांवों, कस्बों और शहरों तक पहुंच गई। श्रोताओं, महिलाओं को जागरूक और आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाने में बड़ा योगदान रहा है। जब महिलाएं जागरूक और शिक्षित होती हैं, तब परिवार और समाज और देश का विकास भी तेजी से होता है। आकाशवाणी ने इसी दिशा में वर्षों से लगातार काम किया है। भारत के कई गांव और दूर दराज क्षेत्रों में रेडियो सबसे सस्ता और सरल माध्यम है। महिलाएं घर के काम करते हुए भी रेडियो सुन सकती हैं। आकाशवाणी पर महिलाओं के स्वास्थ्य, बच्चों की देखभाल, पोषण, शिक्षा, स्वच्छता, रोजगार और सरकारी योजनाओं से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों से महिलाओं को नई जानकारी मिलती है और वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है। आकाशवाणी ने महिलाओं को आत्मविश्वास देने का भी काम किया है। रेडियो पर सफल महिलाओं की कहानियां सुनाई जाती हैं, जिससे अन्य महिलाओं को प्रेरणा मिलती है। किसान महिलाओं, शिक्षिकाओं, डॉक्टरों, खिलाड़ियों और समाज सेवियों की उपलब्धियों को सुनकर महिलाओं में आगे बढ़ने की इच्छा पैदा होती है। इससे

वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित होती हैं। महिलाओं की समस्याओं को समाज के सामने लाने में भी आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, अशिक्षा और भेदभाव जैसे विषयों पर विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को यह सही सोच अपनाने की प्रेरणा मिलती है और समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान और समानता की भावना बढ़ती है। आकाशवाणी ने महिलाओं को रोजगार के अवसरों के बारे में भी जानकारी दी गई है। सिलाई, कढ़ाई, हस्तशिल्प, छोटे उद्योग और स्वरोजगार से जुड़े कार्यक्रम महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करते हैं। कई महिलाएं रेडियो से प्रेरणा लेकर अपना छोटा व्यवसाय भी शुरू करती हैं और आत्मनिर्भर बनती हैं। श्रोताओं, आज महिलाएं केवल श्रोता नहीं हैं, बल्कि आकाशवाणी में समाचार वाचक, कलाकार, लेखिका और कार्यक्रम संचालक के रूप में भी कार्य कर रही हैं। इससे समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर भी मिला है। हालांकि आज इंटरनेट और सोशल मीडिया का दौर है, फिर भी आकाशवाणी का महत्व कम नहीं हुआ है। रेडियो आज भी सरल, सस्ता और विश्वसनीय माध्यम माना जाता है और विशेष रूप से तो ग्रामीण महिलाओं के लिए ज्ञान और प्रेरणा का महत्वपूर्ण स्रोत है। सच, आकाशवाणी महिला सशक्तिकरण का एक मजबूत माध्यम है। ये महिलाओं को जागरूक, शिक्षित और आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाने में निरंतर योगदान दे रहा है।

महिला सशक्तिकरण में आकाशवाणी की भूमिका महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक रही है। राष्ट्रीय प्रसारणों और क्षेत्रीय प्रसारणों के माध्यम से महिला को जागरूक, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने में एक सशक्त माध्यम के रूप में आकाशवाणी ने काम किया है। नियमित रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य, स्वच्छता, कानूनी अधिकार और घरेलू हिंसा से बचाव पर विशेष कार्यक्रम होते हैं। इनके जरिए महिलाओं को उनके बुनियादी अधिकारों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया जाता है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आकाशवाणी ने कई शैक्षिक प्रसारण किए हैं, जो विशेषकर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों की बालिकाओं को शिक्षा जारी रखने के लिए प्रेरित करते हैं। आकाशवाणी लखपति दीदी और किसान चाची जैसी महिलाओं की प्रेरणादायक कहानियों का प्रसारण करता है। इससे अन्य महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने और आत्मनिर्भर बनने का प्रोत्साहन मिलता है। आकाशवाणी ने इन कहानियों को दूर दराज तक पहुंचाकर उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। साथ ही सरकारी योजनाओं और स्वयं सहायता समूहों से हम किस तरह से लाभ ले सकते हैं, इसके विषय में भी बताया जाता है। ग्रामीण अंचलों में महिलाओं को अपनी आवाज, विचार और स्थानीय संस्कृति को साझा करने का मंच मिलता है, जो उनके आत्मविश्वास को बढ़ा

0: आता है। ये सारे प्रयास ये दर्शाते हैं कि सूचना और संचार माध्यमों का सही उपयोग किस तरह जमीनी स्तर पर महिलाओं के जीवन में बदलाव ला सकता है। आकाशवाणी पर लिंग समानता के कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिससे पुरुषों की सोच भी बदलना शुरू हुई है और महिलाएं समाज में ज्यादा सशक्त होकर उभरी हैं। कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक उन्नति के प्रति जागरूक किया जाता है। रेडियो ने महिला उद्यमिता को भी प्रोत्साहन दिया है। रोजगार समाचार, नारी जगत, उद्योग जगत जैसे कार्यक्रमों में सफल महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों की कहानियां और सरकारी योजनाओं की जानकारी साझा की जाती है।
1: गुड़िया जी, ऑटो चालिका के व्यवसाय से आप कैसे जुड़ी?
2: तो मेरे मन में भी जिज्ञासा उठा कि हाँ, हम भी ऑटो चलाएंगे। फिर मन में बहुत सारा विचार भी आया कि क्या मतलब ऑटो चलाना सही रहेगा। फिर एक नंबर था उसमें, संगठन के माध्यम से हम लोग को ये ट्रेनिंग दिया गया। सर से बात हुई और सर बोले कि जंक्शन पे आके आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। तो वो आके हम करवा लिए। शाम को हम लोग को वेटनरी ग्राउंड में
1: जी
2: ट्रेनिंग दिया जाता था। काफी सारी महिला आती थी और चार ऑटो, पांच ऑटो रहता था, लेकिन महिला बहुत सारी आती थी। ऑटो लाने के दिन शोरूम से उस समय लगा कि अब ऑटो कैसे लेके जाएं हम। तो उस दिन सर को ही बोले, जो हम लोग को ट्रेनिंग दिए उन्हीं को बोले, सर मेरा ऑटो पहुंचा दीजिए ना घर पे। तो सर उस समय डांटे, बोले चलाओ अपने से। और उस समय जो चला के हम घर लेके आए, और उस समय जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आया, लगा कि नहीं चला लेंगे
1: जो
2: हम,
1: आज तक बरकरार है।
2: बरकरार है एकदम।
0: ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए कृषि आधारित और कौशल विकास कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। किसान वाणी कार्यक्रम हो, चौपाल हो, घरनी हो, घर आंगन हो, इन सभी कार्यक्रमों में महिला किसानों को उन्नत खेती, पशुपालन, जैविक खाद बनाने की नवीनतम तकनीक की जानकारी दी जाती है। आपको ये भी बता दें कि बिहार में स्वच्छ भारत अभियान और महिला सशक्तिकरण का एक प्रमुख नाम मोतिहारी पूर्वी चंपारण की मुखिया सुनीता देवी का है। ग्रामीण महिलाओं को ईरानी मिस्त्री का प्रशिक्षण देकर मिसाल कायम की है, जिससे वे खुद अपने हाथों से शौचालय का निर्माण कर सकें। इससे महिलाओं में आत्मनिर्भरता बढ़ी है। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य गांव को खुले में शौच मुक्त बनाना है, जिसे मोतिहारी और आसपास के क्षेत्रों में सुनीता देवी जैसी जमीनी नायकों ने सफल बनाया है। जब आकाशवाणी में सुनीता देवी जैसी महिलाओं की कथा प्रसारित होती है, तो कई महिलाएं इनसे सीखती हैं, प्रेरित होती हैं। आकाशवाणी में हमेशा से महिला केंद्रित जागरूकता कार्यक्रम प्रसारित होते रहे हैं। ग्रामीण अंचलों और अति पिछड़े ग्रामीण परिवेश में रेडियो के व्यापक पहुंच को देखते हुए बाल विवाह रोकने, बच्चों की पढ़ाई निरंतर जारी रखने, टीकाकरण इत्यादि के विषय में रेडियो से जन जागृति पैदा की जा रही है। महिलाएं रेडियो के माध्यम से तकलीफ और दुखों को जिम्मेदार अधिकारियों तक भी पहुंचा पा रही हैं। आकाशवाणी में ऐसे कार्यक्रमों को प्रमुखता दी जाती है, जिसमें विशेषज्ञ और विभागों के उच्च अधिकारी लाइव चर्चाओं के माध्यम से लोगों की समस्याओं का निदान करते हैं और उन्हें यथोचित सलाह देते हैं। रेडियो ने उन्हें एक ऐसा अवसर दिया है जहां महिलाएं परिवार नियोजन, स्त्री रोग, बच्चों के टीकाकरण और गर्भावस्था में स्वास्थ्य की देखभाल संबंधी जानकारी पा सकती हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक सशक्तिकरण में भी आकाशवाणी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।
3: श्रोताओं, आकाशवाणी के 90 गौरवशाली साल केवल एक संस्था की सफलता नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, एकता और जन सेवा की कहानी है। ये देश की आवाज बनकर लोगों के दिलों में अपनी विशेष जगह बनाए हुए हैं। हमें इस गौरवशाली यात्रा पर गर्व होना चाहिए।
4: अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण में आकाशवाणी का योगदान, आकाशवाणी@90 कार्यक्रम के अंतर्गत। स्वर सहयोग था गुंजन कुमार और प्रस्तुतकर्ता थी श्रीमती अलका प्रियदर्शनी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित चार स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर

अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री

0: टाइटंस तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF के सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
2: सबने मिलकर ये तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वो एक बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। NABL प्रमाणित लैब उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
0: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
3: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होरमूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमरीका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारा प्रयास।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसर्स यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस एकेडमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
2: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट PTM के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में और IPL क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Home Minister Amit Shah announces major shift in border management leveraging technology and four-layered security involving citizens, says eradicating

0: उन्होंने कहा है कि मुल्क की आबादी को तहफ्फुज़ फराहम करने में गैर कानूनी इमिग्रेशन को जड़ से ख़त्म करना ज़रूरी है। हुकूमत ने किसानों को बीज की दस्तियाबी को यकीनी बनाने की गरज से 1,74,000 क्विंटल का बीज का ज़खीरा कायम किया है। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अहल तालिब इल्मों के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स्ड डबल खिलाड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो की जोड़ी भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। और आईपीएल क्रिकेट में अहम क्वालिफायर 2 का मैच नए चंडीगढ़ में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान जारी है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि अपनी सरहदों की हिफाजत करना और गैर कानूनी इमिग्रेशन को जड़ से ख़त्म करना मुल्क की आबादी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इंतहाई अहम है। वो आज गुजरात के शहर भुज में भारत पाकिस्तान सरहद पर G7 और G13 की अहम सरहदी चौकियों का इफ्तिताह करने के बाद फौजियों और अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकज ड्रोन्स रडार समेत जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है ताकि एक नाकाबिले दरअंदाजी और खामियों से पाक सिक्योरिटी ग्रिड कायम की जा सके। वजीर दाखिला ने एक नए क्वाड्रीपार्टाइट सिक्योरिटी ग्रिड को मुतारिफ कराने के साथ सरहदी इंतजामिया में एक बड़ी ढांचा जाती तब्दीली का ऐलान किया।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: मगरबी बंगाल में वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने रियासत में दरअंदाजी पर तशवीश जाहिर की है जो आबादियाती तब्दीलियों का बाइस बन रही है। नवन्ना में रियासती सेक्रेटरिएट में मर्दमशुमारी के प्रिंसिपल अफसरान की कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि साबिका सरकार दरअंदाजी के मामले पर कार्रवाई करने में नाकाम रही है। उन्होंने वाजे किया कि पहले के टीएमसी इंतजामिया ने मरकज की जानिब से बरवक्त खतूत मौसूल होने के बावजूद मर्दमशुमारी की कार्रवाइयों का आगाज नहीं किया था। वजीर आला ने आबादियाती मुंतकली को सरहदों पर बेकायदा ताड़बाड़ करार दिया। उन्होंने उजागर किया कि सरहदी अजला सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मर्दमशुमारी की कार्रवाइयों के जरिए जमा किए गए आदाद शुमार को पॉलिसी साजी और बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमें तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। म्यांमार के सदर यू मिन हांग वांग कल से 3 जून तक भारत के सरकारी दौरे पर रहेंगे। आज दोपहर में नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि दो तरफा बातचीत के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादले ख्याल करेंगे। भारत चीन सरहदी मामलों पर मुशावरत और तालमेल के लिए मुनक़दा मीटिंग के बारे में जनाब जायसवाल ने कहा कि मुजाकरात तामीरी और मुस्बत थे। बांग्लादेश के गैर कानूनी माइग्रेंट से मुतल्लिक एक सवाल के जवाब में जनाब जायसवाल ने कहा कि तमाम गैर कानूनी माइग्रेंट्स के मामले में कानून के मुताबिक ही कार्रवाई की जाएगी। भारत और अमरीका के दरमियान तजारती मुजाकरात पर तर्जमान ने कहा कि भारतीय तजारती टीम ने अप्रैल में अमरीका का दौरा किया था। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते अमरीका से एक टीम की भारत आमद मुतवक्का है जिसमें तजारती उमूर पर मजीद बातचीत की जाएगी। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में पेट्रोल डीजल और एलपीजी का स्टॉक इत्मीनान बख्श है और तमाम रिफाइनरीज पूरी सलाहियत के साथ काम कर रही हैं। नई दिल्ली में बैन वजारती मीडिया ब्रीफिंग से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी की पैदावार अब तक की सबसे ज्यादा है जो कि तकरीबन 92,000 मेट्रिक टन योमिया है।
2: हमारे यहाँ पर पेट्रोल और डीजल और एलपीजी के सफिशिएंट स्टॉक है, नेचुरल गैस और क्रूड की सफिशिएंट इन्वेंट्रीज टाइड अप है। हमारी सारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन ऑल टाइम हाई है, लगभग 92 TMT पर डे। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप

0: पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है।
1: मोहतरमा शर्मा ने यह भी बताया कि किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन शिप से किसी तरह की किल्लत की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। खुर्दा आउटलेट्स के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि 150 अजला ने पेट्रोलियम में 30% इजाफे की रिपोर्ट दी है, जबकि 156 अजला ने 30% से ज़्यादा इजाफे की रिपोर्ट दी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सूरत हाल का जायजा ले रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की तमाम हाई कोर्ट्स को हिदायत दी है कि अपने फैसले को महफूज करने के 3 महीने के अंदर अंदर फैसला सुनाएं। अदालत उज़्मा ने यह भी वाजे किया कि फैसला सुनाने में ताखिर से मुकदमे के फरीकैन को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। इस बात पर जोर देते हुए कि ज़ाती आज़ादी के मुकदमों में तेज तर फैसलों की ज़रूरत है, चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माला बागची पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि जमानत की जिम्मेदारियों पर ऑर्डर उसी रोज़ सुनाया जाना चाहिए, नहीं अगर उन्हें मखसूस रखा जाता है तो अगले रोज़ उनका फैसला सुनाया या अपडेट किया जाना चाहिए। बड़ी तादाद में हिदायत जारी करते हुए अदालत उज़्मा ने कहा कि जमानत या सज़ा को मुअत्तल करने के ऑर्डर को फैसला सुनाने के बाद जल्द अज जल्द जेल हुकाम को इरसाल किया जाना चाहिए, क्योंकि फैसला सुनाया जा चुका है और ज़ेर समात मुलजमान को तरजीही तौर पर उसी रोज़ या ज़्यादा से ज़्यादा अगले रोज़ रिहा किया जाना चाहिए। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हुकूमत ने किसानों को बीज की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए 1,74,000 क्विंटल का कौमी बीज का ज़खीरा कायम किया है। नई दिल्ली में ज़राअत बराए खरीफ मुहिम 2026 पर कौमी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन मीडिया से खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि अब तक 9,76,000 किसान शनाख्ती कार्ड बनाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को मुख्तलिफ स्कीमों तक रसाई के लिए अलहदा दस्तावेजात की ज़रूरत नहीं होगी। जनाब चौहान ने मजीद कहा कि हुकूमत किसानों के मफादात के तहफ़ और इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है कि खादों का इस्तेमाल सिर्फ ज़र्रई मकासद के लिए किया जाए।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा है कि पेपर अफशां होने का वाकया इंतहाई अफसोसनाक था, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। डीडी न्यूज़ के साथ एक खसूसी इंटरव्यू में जनाब प्रधान ने कहा कि दोबारा इम्तिहान का इनेकाद बगैर किसी खामी के मुनज़म और मुनासिब ढंग से किया जाएगा। उन्होंने इस काम को पूरा करने में हर किसी से ताउन की अपील की।
3: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
1: तलबा से खिताब करते हुए जनाब प्रधान ने उन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत उनकी तशवीश को समझती है। उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि उनके एतमाद को ठेस पहुँची है। उन्होंने कहा कि हुक्काम ने सख्त फैसला किया है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि किसी भी अहल तालिब इल्म का मुस्तकबिल इम्तिहान माफिया के हाथों में न पड़े या बेजाब्तगियों का शिकार न होने पाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट पेपर लीक मामले में होने वाली खामियों के लिए जवाबदेही पर जोर दिया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक अरादे की बेंच इस मामले पर दरखास्तों की समाअत कर रही थी, जिसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को एक मजबूत और खुद मुख्तार इदारे में तब्दील करने या मेडिकल दाखिले के इम्तिहान के इनेकाद के लिए उसकी तंजीम नौ करने की हिदायत की दरख्वास्त शामिल थी। बेंच ने मरकजी हुकूमत से इस मामले में हलफनामा दाखिल करने को कहा और इसकी समात जुलाई के दूसरे हफ्ते में करने का हुक्म दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को बताया कि हुकूमत नौजवानों के बारे में फिक्रमंद है और इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है कि इस मामले में कोई कोताही न हो। उन्होंने बेंच को यह भी बताया कि 21 जून को होने वाले नीट यूजी के दोबारा होने वाले इम्तिहान के लिए कुछ नए मैकेनिज्म बनाए गए हैं। दिल्ली हुकूमत ने ऐलान किया है कि नीट यूजी 2026 इम्तिहान के उम्मीदवारों को दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन डीटीसी की बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की जाएगी। ये इम्तिहान अगले महीने की 21 तारीख को मुनक़िद होंगे। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा है कि उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड दिखाकर डीटीसी बसों में मुफ्त सफ़र कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस दिन तलबा को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दिन उनके मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कर्नाटक के गवर्नर थावर चंद गहलोत ने आज बंगलुरु में वजीर आला सिद्धारमैया का इस्तीफा मंजूर कर लिया और वजरा की कौंसिल

फौरी असर से तहलील कर दिया। ताहम उन्होंने मुतबादिल इंतजाम न होने तक सिद्धारमैया से निगरान वजीर आला के तौर पर खिदमात अंजाम देने को कहा। वाइस एडमिरल अजय कोछर ने आज भारतीय बहरिया के 48वें नायब सरबराह का ओहदा संभाल लिया। ओहदा संभालने पर फ्लैग ऑफिसर ने नई दिल्ली में कौमी जंगी यादगार पर गुलहाय अकीदत नजर करके मुल्क की खिदमत में अजीम कुर्बानी देने वाले बहादुरों को खिराज अकीदत पेश किया। पुणे की बावकार नेशनल डिफेंस एकेडमी के साबिक तालिब इल्म रहे

0: किया जा सके।
1: वैसे ये मात्र एक निबंधकार नहीं अपितु पत्रकार और साहित्यकार भी हैं, परंतु आज हम उनके निबंधकार रूप को ही जानेंगे और उनके बारे में बातचीत करेंगे। नाम है उनका कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। विद्यालय की शिक्षा से लेकर कॉलेज के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं तक हमें निबंध लिखना पड़ता है। निबंध लेखन इसलिए आवश्यक होता है ताकि हम किसी एक विषय को अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकें, हम अपने मस्तिष्क का वैचारिक मंथन कर सकें, शब्दों को वाक्यों में सजाकर सुंदर रूप दे सकें। मन मस्तिष्क में विचार तो बहुत आते हैं, परंतु समय पे जब उसकी आवश्यकता होती है तो हम बोल नहीं पाते। कारण हम उन विचारों को समेट ही नहीं पा रहे होते हैं जो हमारे मन मस्तिष्क में पनपते हैं। यदि हम निबंध लिखना प्रारंभ करें तो हमारे विचार परिपक्व होने लगेंगे। तार्किकता से हम बहस नहीं सही बात रखना सीखने लगेंगे। शब्द भंडार बढ़ने लगेगा, व्याकरण शुद्ध होने लगेगा, बोलने की कला प्रभावी बन जाएगी। अतः निबंध लिखना पढ़ना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। श्रोताओं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर इस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त निबंधकार हैं। उनके निबंधों की विशेषता रही है कि वे आम बोलचाल वाले शब्दों को अपने निबंध में स्थान देते हैं। निबंध अपने अनुभवों को साझा करते हुए लिखे गए हैं जिसे पाठक भी जीने लगते हैं। कठिन विषयों को भी इतनी सरलता से लिखा है जिसे आम जन भी समझ अपने ज्ञान चक्षु खोल पाता है। उनके निबंध संग्रह में बूढ़ी काकी का विशेष स्थान है। यह गरीबी में भी स्वाभिमान के साथ जीना नहीं छोड़ती। इसे आत्मीयता से पढ़ने पर गला रुंध जाता है। उनकी जिंदगी लहराई रोते हुए व्यक्ति को हंसना सिखाती है और हारे हुए को उठना सिखा देती है। माटी हो गई सोना मेहनत की महिमा को दर्शाती है, तो उनके द्वारा रचित आदमी की पहचान इंसान के कपड़ों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है यह बताती है। दीप जले शंख बजे उनकी संस्मरणात्मक निबंध है। बाजे पायलिया के घुंघरू समाज पर व्यंग्यात्मक रूप से प्रहार करती है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने अपने निबंधों से इसकी विशेषता का परिचय कराया है। निबंध कोई भाषण या विवरण नहीं है, इसमें भी भावना है, व्यंग्य है और समाज को सही दिशा दिखाने की ताकत भी। श्रोताओं, संपादकीय के बाद अब समय हो चुका है जरा सोचिएगा। आज हम एक विशेष बात पर आपसे चर्चा करने वाले हैं। जब हम छोटे होते हैं तो बहुत सारे सपने देखते हैं, कभी ऐसे सपने जिनके पूरे होने की उम्मीद तक नहीं होती पर फिर भी हम उन्हें देखते हैं, और कभी कभी उन्हें पूरे करने के प्रयास में भी जुट जाते हैं। लेकिन समय बीतता है और हम बड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे उन सपनों को भविष्य में होने वाले फायदे से जोड़कर उसे या तो बाद के लिए छोड़ देते हैं या फिर जीवन से हटा ही देते हैं। परंतु मनुष्य बिना सपनों के जीवित रह ही नहीं सकता। सपने आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं, सपने हारे मन को फिर से जगाते हैं, सपने कुछ नया करने की राह दिखाते हैं, सपने दुखी मन को प्रसन्न करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए सपने अवश्य देखिए और उन्हें पूरा करने की कोशिश कभी मत छोड़िए। जरा सोचिए के बाद आइए अब सुनते हैं बिहार की प्रसिद्ध साहित्यकार स्वर्गीय उषा किरण खान से उनकी कहानी।
2: अन्नपूर्णा और विनय जी ने मिडिल स्कूल से साथी विदाई ली। अन्नपूर्णा रामदेव कन्या मध्य विद्यालय की प्रधानाचार्य और विनय जी सारंग मध्य विद्यालय के गणित शिक्षक दोनों खुशी खुशी विदा होकर अपने छोटे से दो कमरों वाले घर में लौट गए। घर के आगे पीछे बहुत ही छोटा खुला स्थान था जहाँ कुछ फूल पौधे लगे थे जो समय अभाव के कारण खाद पानी को तरसते रहते। आते ही विनय जी ने एक प्यार भरी नजर बगीचे पर डाली, सोचा अब सबसे पहला काम इन्हें ही संवारना है। हम अब इत्मीनान से जगा करेंगे, बागवानी करेंगे, किताबें पढ़ें, कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी। अन्नपूर्णा मुस्कुराई। आपके मुफ्ती छात्रों का क्या होगा, वे आते रहेंगे। विनय बाबू ने अपने बेटे की तरह अनेक जरूरतमंद छात्रों छात्राओं को मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाया, पर वर्ष में दो चार से अधिक नहीं वो लेते। उनके पढ़ाए छात्र सदा सफल रहते, यह भी नहीं था कि वे परीक्षण करके छात्र लेते, पहले आओ पहले पाओ का टेक था। जैसे इनका बेटा आईआईटी उत्तीर्ण प्रबंधन में महारत प्राप्त कर बड़ा अधिकारी बना, वैसे ही अन्य छात्र भी बैंक से लेकर इंजीनियरिंग, डॉक्टरी तक में प्रवेश पा गए। आज के जमाने में ये अजब

दंपति हैं। अन्नपूर्णा जी प्रिंसिपल रहती हुई अनेक विकासात्मक कार्य करती हुई अकिंचन रहीं। दूसरे लोगों की तरह पुस्तक, खेल सामग्री, इमारत निर्माण, फर्नीचर वगैरह खरीद में कभी हिस्सा न लिया। गणित के शिक्षक कोचिंग कर लाखों का वारा न्यारा करते सो भी न किया, मुफ्त में पढ़ाते रहे। बेटी को पढ़ाकर विवाह करने और बेटे को ऊंची पढ़ाई कराने में सारे प्रोविडेंट फंड वगैरह खाली हो गए। दोनों मनोयोग से अपने पुराने घर को संवारने में लग गए थे। फूल घास पेड़ लगाते विनय बाबू, घर के पर्दे सिलती बदलती, साग सब्जी उगाती अन्नपूर्णा, आजू बाजू की सहेलियों के लिए भी वक्त था। वर्ष भर सब ठीक रहता, बरसात में घर चूने लगता कई कोनों से। दोनों को जो अत्यल्प रिटायरमेंट का लाभ मिला उससे छत की मरम्मत कराकर सुकून तो हो गया, बाहर भीतर दीवारों पर साधारण चूना करवा पाए जिससे फील गुड तो हुआ। दिन सुख से गुजर रहे थे। स्कूल के पुराने साथी जब आते तो तरह तरह के उपाय सुझाते, यार विनय पुराना पलस्तर झाड़ कर नया करवा लो। अन्नपूर्णा जी आपका बेटा और बहू इतनी बड़ी नौकरी में है, उन्हें कैसा लगता होगा यहाँ आकर, कोई कहती। कब तक भाई साहब स्कूटर घसीटते रहेंगे, गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते, बेटा इतना बड़ा आदमी हो गया, नया फ्रिज तो ले ही लीजिए, किचन ठीक कर लीजिए, ये सब लोग कहते रहते। आगे पीछे का गलियारा 2.5 कट्ठे का मकान इस्तेमाल कर 3.75 कट्ठे का हो गया था। पड़ोसी मित्र ने शाइस्तगी से समझाया कि हम दोनों क्यों ना मकान बिल्डर को दे दें, कुछ आमदनी भी हो जाएगी। विनय बाबू को धक से लगा, यह ठीक रहेगा, जमीन चली जाएगी, आकाश में क्यों टंगे रहें। आम फल रहा है, फूल पत्ती शोभा बढ़ा रहा है, जामुन है, मोह लगा था, पर देख रहे हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है अगोरना तो कठिन हो गया। सोचता हूँ कहकर विनय जी चुप हो गए। क्या सोचा विनय बाबू, बार बार उनके मित्र आते और उनसे कहते, आप अच्छे विक्रेता हो सकते हैं, ऑडिटर थे आप, खरीद बिक्री मगर खूब समझते हैं। अरे मास्टर जी, सरकार में जो रहता है यही तो सीखता है, वे हंसने लगे। विनय बाबू ने अन्नपूर्णा जी से सारी बात बताई। अन्नपूर्णा जी पहले से जानती थी, उन्हें भी मोहल्ले की औरतों ने कहा ही था। नहीं, उन्होंने कहा, ऐसा विचार चलता है कोई बात नहीं, लेकिन आपको क्या लेना है नहीं लेना है ये तो आपके अपनी आर्थिक लाभ की बात है। तुम यही सोच रही हो? हाँ, मुझे तो अपना ही घर प्यारा लगता है। ठीक है, मैं अकेला क्यों सोचूं, तुम भी जब सोच लेना तो बताना, विनय जी ने कहा था। तब तक संजीव और बहू का फोन आ गया था। बहू ने कहा, अम्मा जी आपके लिए ही घर खरीदा है, रीता दी और जीजा जी को भी बुलाया है। तुरंत बेटी रीता का फोन आया, उसका बोलते बोलते गला भर आया, आज मेरा भाई संजीव बंगलोर में घर खरीद रहा है, अम्मा सब तुम्हारे सब्र का फल है। नहीं बेटी, ऐसा नहीं, अम्मा आप भले काले धागों का माला पहनती रहीं, कान कलाई सब में कांच और मोती पहनती रहीं, सारा गहना बेचकर संजीव को लायक बनाया, अब समय आया है, वह तो करेगा आपके लिए। बेटी के उछाह को लगाम लगाने की गरज से बात बदल दी थी। अन्नपूर्णा जी के लिए पीली दक्षिणी कांजीवरम की साड़ी बहू ने खरीदी थी, चूड़ियां खुद देकर आई थी सासू माँ, गले में, बाह में, कलाई पर और कान में हीरे और सोने के गहनों से उन्हें लाद दिया था, क्योंकि बहू के बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट माता पिता तथा संगी साथी आए थे। एहतियातन नंदा ने अन्नपूर्णा को नया सोने का कड़ा और हार पहना ही दिया था। बहू से इन्होंने कहा, इसकी क्या जरूरत है, अम्मा आप हमारी अम्मा है, ऐसे ही रहना है आपको। अब अम्मा सख चाहती रही, गृह प्रवेश की विधियाँ पूरी की, बेटी अपलक माँ को देख रही थी। पूजा समाप्त होने के बाद वह अपना नेक नेछावर लेकर लौट गई। एक हफ्ते बाद विनय बाबू ने बेटे से लौटने की चर्चा की। नहीं पापा, ये 4 कमरे का घर आप लोगों के लिए ही तो लिया है, कहाँ जाइएगा। हाँ घर तो है, पर जरा घर से हम सोच विचार के आए तो आप घर वहाँ का बेच लीजिए ना, हमारा भी कर्जा चुकाने में आसान हो जाएगा। विनय बाबू का कलेजा धक से रह गया। तो ठीक है, उसके लिए भी जाना होगा ना, यह कह के वो दोनों घर चले आए। एक दिन बरामदे से उतर रहे थे कि पैर उल्टा पड़ गया, मुड़ जाने से गिर गए, उठने में तकलीफ हो रही थी। जल्दी ही दो पढ़ने वाले बच्चे आ गए। आंटी जी आइए, एक चिल्लाया, पैर मुड़ गया है, उठ नहीं पा रहा हूँ, सहारा दे दो। दोनों छात्र सहारा देकर उठा रहे थे कि अन्नपूर्णा आ गई। स्थिर स्वभाव की अन्नपूर्णा भी घबरा गई,
तीनों ने उठाकर बरामदे में पड़ी कुर्सी

0: पर बिठा दिया। अन्नपूर्णा जी ने लगाने वाली दवा लगाई, लेकिन उसी वक्त पड़ोसी आए और उन्हें डॉक्टर के यहाँ ले गए। डॉक्टर ने एक्सरे करने को कहा और एक्सरे में हेयरलाइन फ्रैक्चर निकल गया। डॉक्टर ने प्लास्टर लगा ही दिया। सर, संजीव को खबर कर दिया जाए क्या? उन्हीं का छात्र डॉक्टर था जिसने कहा। क्यों, तुम हो ना, उसे इतनी छोटी बात के लिए क्यों कहोगे? मैं तो हूँ, पर वो बुरा न माने, उसका मोबाइल नंबर दें। डॉक्टर सुभाष ने पूरा इलाज अपने जिम्मे कर दिया। विनय जी को कभी पता नहीं चला कि डॉक्टर से संजीव की कोई बात हुई थी। एक दिन बेटी रीता किसी स्कूल में प्रैक्टिकल की एक्सटर्नल बनकर आई थी। घर आना स्वाभाविक था। पापा को प्लास्टर चढ़ा देखकर रोने लगी। आप लोगों से रोज बात होती है अम्मा, कहा क्यों नहीं? ऐसा क्या हुआ रीता, तुम कमजोर तो नहीं थी इतनी? पापा ने हंसकर कहा। माँ भी मुस्कुराती रही। मैं अब जाऊंगी ही नहीं। ऐसा नहीं होता है, तुम्हारा घर है, स्कूल है, स्कूल मेरे बिना चलेगा और घर भी। 4-6 दिन रीता रह गई। माँ पापा ने समझा बुझाकर विदा किया। रीता हर महीने आने का कहकर रुखसत हुई। लगभग 1 माह बाद बेटे का फोन आया। पापा कैसे हैं, प्लास्टर कटा? अच्छा, तो रीता ने तुमसे बता दिया? कोई खास बात थी नहीं, हंसकर बोले विनय जी। नहीं पापा, सुभाष भैया ने बताया था। अच्छा, डॉक्टर ने कह दिया? विनय बाबू की सारी चहक चुप हो गई। इसे पता था पहले दिन से और यह हालचाल आज ले रहा है। सुभाष ने मुझसे जिक्र तक नहीं किया। बेटे ने आने में असमर्थता जताई थी। उसका बड़ा कॉन्फ्रेंस बंगलोर में होने वाला था जिसका प्रबंध देखना था। चुपचाप सुनते रहे विनय जी। अगला हफ्ता प्लास्टर कटने, फिजियोथेरेपी करने में बीता। छड़ी लेकर फ्लैट में टहलने लगे विनय जी। सब कुछ पहले जैसा था, परंतु नीचे जाकर बागवानी का शौक खत्म सा हो गया था। बरामदे में बैठे तख्त पर वैसे ही बैठे रहते थे, कुर्सियां लगी थीं। विनय जी टहल घूम कर आए ही थे। बगीचे की जामुन की फुनगी विदा लेते सूर्य की आभा से अरुण हरित दिख रही थी। तभी पड़ोसी मित्रगण आए। कुशल छेम पूछा, तख्त पर बैठकर पहली बार हरे को सुनहरा फिर लाल होते देख रहा हूँ भाई, विनय जी ने कहा। शीर्ष की ओर देखो। पहली बार क्यों? सदा धरती की ओर देखता रहा। वृक्ष की जड़ें देखी, फुनगी की शोभा कहाँ देखी? बड़ी शहरी बात कर रहे हैं, गहरी भी है। इससे लगता है कि आप पूर्ण स्वस्थ हो गए हैं। बिल्कुल, सोचने का अच्छा वक्त मिल गया होगा। बिल्डर मात्र आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, नक्शा बनाकर बैठा है। हम लोगों को तब तक के लिए शिफ्ट करने के लिए एक फ्लैट भी खाली रखे हुए है। अब तो निर्णय ले लीजिए, मित्र ने कहा। मैं भी अपनी जमीन दूंगा मित्र, कल सुबह कागजात सौंप दूंगा, एग्रीमेंट लेकर बिल्डर को आने कह दीजिएगा, विनय जी ने कहा। मन पर से बोझ हट गया। विवाह के कुछ वर्षों बाद ही इस कॉलोनी का निर्माण हुआ था। बेटी स्कूल जाने लगी थी, बेटा गोद में था। अन्नपूर्णा जी की कमाई से घर चलता, विनय जी की सारी कमाई बैंक लोन में कट जाती। घर अपना हो गया था, जहाँ जामुन और आम अमरूद के पेड़ लगे थे, उड़हुल कनेर और हर सिंगार थे, संध्या बेली चमेली भी है। छोटे से आंगन और बगीचे वाला यह था अब बहुमंजिली इमारत का हिस्सा होगा, जहां गमलों में बोनसाई उगाए जाएंगे। परंतु यह रात विनय जी को गहरे सुकून की निःस्वप्न गहरी निद्रा दे गई।
1: यह कहानी अंदर से झकझोर देती है। जिन बच्चों की शिक्षा दीक्षा में माता पिता अपना सब कुछ त्याग देते हैं, जब वे बच्चे अपने स्वार्थ में उनके दिए संस्कारों को तिलांजलि दे देते हैं, तो अत्यंत दुख होता है। कुछ ऐसे ही भावों को व्यक्त करती ये कहानी अभी हम सुन रहे थे स्वर्गीय उषा किरण खान से। इस कहानी के बाद आइए अब सुनते हैं अभिलाषा कुमारी से उनकी कुछ कविताएं।
2: नमस्कार, अपने परिचय से प्रारंभ करती हूँ। नित नई नवेली आशा हूँ, मन की मैं ही अभिलाषा हूँ। नित नई नवेली आशा हूँ, मन की मैं ही अभिलाषा हूँ। हे काव्य प्रेमियों, याद रहे मैं कविता की परिभाषा हूँ। और आप सभी के समक्ष 2 नवगीत लेकर आई हूँ। पहले नवगीत का शीर्षक है करो न परिवर्तन की बात। करो न परिवर्तन की बात,

और अंतिम बंद में देखिए, इतना भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, परिवर्तन की बात तो करनी ही है। गति धीमी है हम लेकिन विचलित न तनिक होने वाले, गति धीमी

और प्रस्तुत करने जा रही हूँ दूसरा नवगीत। शीर्षक है न बोलूंगी मैं अब तुमसे, श्रृंगार रस का आनंद लीजिए। चलो जाओ जी सांवरिया, न बोलूंगी मैं अब तुमसे,

0: सांवरिया न बोलूंगी मैं अब तुमसे। धन्यवाद।
1: मधुर स्वर के साथ अभिलाषा कुमारी अपनी कविताएं हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रही थी। इन कविताओं के बाद अब आपसे विदा लेने का समय हो चला है, लेकिन श्रोताओं, यदि आप हमारे अंक से जुड़े कोई भी सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है feedback@aarpatna.gmail.com। तो श्रोताओं, अब आपसे विदा लेने का समय हो चला है, तो अपनी साहित्यिक साथी रानू सिंह को दीजिए विदा। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे साहित्यिक पत्रिका पर आधारित कार्यक्रम शब्द शिल्प। स्वर सहयोग रानू सिंह का और प्रस्तुति थी आकाशवाणी पटना की। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में प्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत थीम पर आधारित कार्यक्रम आज की रात।

आँखों की खामोश भाषा बिना शब्दों से कि सच्चा प्यार कह जाती है। आँखों की गहराई में मेरी पूरी दुनिया सिमट जाती है। आँखों की चमक हर अंधेरे को रोशन कर देती है। आँखों में बसे ख्वाब ही सच्ची मोहब्बत बन जाती है। आँखों का सुरूर सबसे गहरी चाहत की पहचान बन जाता है। आँखें तो मन का आईना होती है। आंखों में बसा प्यार भी दिखाता है और नफरत भी। जी हाँ श्रोताओं, आज का थीम हमने लिया है आंखें, तो आइए सुनते हैं आंखों के माध्यम से कुछ प्यार भरी बातें। मेरी आंखों में झांकने से पहले

ज़रा सोच लीजिए ऐ हुजूर, जो हमने पलकें झुका ली तो कयामत होगी, और हमने नज़रें मिला ली तो मोहब्बत होगी।

कोई आंखों आंखों से बात कर लेता है, कोई आंखों आंखों में मुलाकात कर लेता है। बड़ा मुश्किल होता है जवाब देना जब कोई खामोश रहकर सवाल कर लेता है।

समंदर में तुझसे वाकिफ हूं, मगर इतना बताता हूं, वो आंखें तुझसे ज्यादा गहरी है जिनका मैं आशिक हूं।

तेरी आंखों के जादू से तो खुद नहीं है वाकिफ, ये उसे भी जीना सिखा देती है जिसे मरने का शौक हो।

देखा है मेरी नजरों ने एक रंग छलकते पैमाने का, यूं खुलती है आँख किसी की जैसे खुले दर मैखाने का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत थीम पर आधारित कार्यक्रम फिल्म आज की रात। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए थोड़ी देर में प्रसारित करते हैं अगला कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं बाजार फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। मीर ताकी मीर की लिखी इस रचना को दर्ज दिया है खयाम ने।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं वारिस फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और इसे संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

श्रोताओं, अगला गीत हमने लिया है ब्लैकमेल फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में। शब्द हैं राजेंद्र कृष्ण के और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

PIR at 90. श्रोताओं, आराधना फिल्म का ये गीत सुनिए मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इसे संगीत से सजाया है स्टीव वर्मा ने।

श्रोताओं, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में आइए सुनते हैं कश्मीर की कली फिल्म का ये गीत। SH बिहारी की लिखित रचना को तर्ज दिया है ओ पी नैयर ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कश्मीर की कली फिल्म का ये गीत। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संकेत समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में प्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
2: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD News को दिए

साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज़रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कुचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कुचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने गुजरात को निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 215 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बनाए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।